मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हर सुबह की ये सुनहरी धूप उम्मीदों की किरणें साथ लाती हैं। धरती से उठती मिट्टी की सौंधी खुशबू हरी भरी प्रकृति का रंग निखार देती है और नीले आसमान में ऊंची उड़ानों के पंख फैलाए हर पंछी अपनी चहचहाहट से कानों में मधुर रस घोलते हैं। यही वो पावन समय है जब जिंदगी सारी उलझनों से दूर सुकून भरे माहौल में खुद से मुलाकात करती है। इस बेपरवाह पलों में करने आपसे मुलाकात, लेकर ज्ञान और मनोरंजन की सौगात। नमस्ते लखनऊ के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं, शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खबरों के साथ। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख

0: पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते, लखनऊ के सफर में स्वागत है आप सभी का। सुबह के 6:05 हुए हैं, करते हैं आज के कार्यक्रमों की शुरुआत कृषि चर्चा के साथ। आज का विषय फसल चक्र का चुनाव। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
2: शुभ प्रभात। किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों के वार्षिक क्रम व स्थानिक व्यवस्था को क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन हम खेती करने वाले लोग इसे यह समझ लेते हैं कि फसल चक्र कैसे हम अपनाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल चक्र की जो पद्धति है, वहां पर पाई जाने वाली भूमि एवं जलवायुगत कारकों को, जो कि फसल या फसलों के समूह के पोषण एवं उपयुक्तता तथा उगाने के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार तय होती है। हमारे स्तर पर उपज क्षमता एवं आर्थिक लाभ ही किसी क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाने के लिए प्रमुख कारक होता है। इसके अलावा अवस्थापना सुविधाएं, सामाजिक आर्थिक कारक के साथ साथ तकनीकी विस्तार भी क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। अवस्थापना सुविधाओं की बात करें तो सिंचाई, परिवहन, भंडारण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन के साथ साथ प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक आर्थिक जो कारक होते हैं उनमें वित्तीय व्यवस्था, कृषि जोत का आकार प्रकार और साथ ही साथ मालिकाना हक, श्रम की उपलब्धता एवं परिवार की खाद्य, चारा, ईंधन एवं वित्तीय स्थिति को समाहित किया जाता है। तकनीकी कारकों में उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियां, यंत्रीकरण, कृषि रक्षा सूचनाओं की प्राप्ति के साथ ही पहुंच निर्धारित की जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पैदा की जाने वाली कहीं भी जो फसलें वर्षों के अनुभव, परंपरा, लाभ की आशा, सिंचाई

0: संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादकता, व्यक्तिगत रुचि, संसाधन जोखिम, ओला हो या फिर कोहरा का हो, आर्द्रता हो, भूमि की विविधता और साथ ही साथ खाद्य एवं आय सुरक्षा की जो स्थिति है उसको भी क्रॉपिंग पैटर्न को निर्धारित करने के मुख्य घटक के रूप में हम शामिल करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन को फसल उपज के मुख्य जो मूल्य होते हैं वो दो तरह से प्रभावित करते हैं। एक तो फसलों की मूल्य समानता में परिवर्तन के कारण फसलों के क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है, दूसरे अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए अनिश्चित यानी कि ऊंचे मूल्य की अपेक्षा मूल्य स्थिरता से फसल की बहुलता होती है, अर्थात प्रति एकड़ अधिकतम अस्थायी तुलनात्मक लाभ का क्रॉपिंग पैटर्न निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटी जोत के किसान पहले अपने जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक खाद्यान्न पैदा करते हैं, उसके बाद नकदी फसल के बारे में सोचते हैं और बहुतायत से पूर्वांचल और अवध का क्षेत्र, काफी बड़ा क्षेत्र जो है उसमें यही पद्धति अपनाते हैं। यानी कि छोटी जोत के किसान बड़ी जोत के आकार वाले किसानों की अपेक्षा नकदी फसल में कम क्षेत्रफल रखते हैं, परंतु आजकल सीमित जोत के किसान भी अपनी सीमांत आर्थिक आय को सुनिश्चित करने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन कर विविधीकरण अपना रहे हैं। अब इस क्रॉपिंग पैटर्न में क्या कुछ प्रचलित है हमारे यहाँ, उस पर निगाह डालते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इसके प्रमुख कारण हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में अधिकतम विविधता पाई जाती है और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कृषि पर अधिकतम निर्भरता, छोटी जोत, भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव समाहित है। उत्तर प्रदेश में कई क्रॉपिंग पैटर्न अपनाए जाते हैं, जैसे कि धान गेहूं, धान चना, धान सरसों, मक्का गेहूं, मक्का चना, गन्ना गेहूं, ज्वार चना, मक्का सरसों, मक्का मटर और मक्का आलू। इसी तरह से जब हम नकदी फसल को इसमें समाहित करते हैं तब भी उसमें क्रॉपिंग पैटर्न को विविधता देनी पड़ती है। पानी की जो कम उपयोग क्षमता है या दक्षता है उसको समाहित करते हुए पानी के सीमित एवं कीमती होने के बावजूद इसकी उपयोग क्षमता बहुत कम है, इसलिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जिसका प्रमुख कारण है कि असमतल खेत में पानी के प्रयोग, सिंचाई का गलत ढंग यानी खेती के उन्नत क्षेत्रों में भी जब हम करते हैं तो फिर यह दोषपूर्ण होती है। दोषपूर्ण मूल्य निर्धारण जैसे कि बिजली एवं नहर सिंचाई के कारण अधिक सिंचाई हो जाती है तब भी खराब स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह से भूमि क्षरण भी होता है तो नहरी क्षेत्रों में जल निकास के अभाव में भूजल स्तर बढ़ने के कारण मृदा लवणता की समस्या पैदा हो जाती है, यह भी क्रॉपिंग पैटर्न पर काफी कुछ प्रभाव डालती है। सघनीकृत कृषि क्षेत्रों में पानी के अत्यधिक दोहन से जल स्तर गिर रहा है, इससे उत्पादन गिरने के अलावा गहराई से पानी निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में धान गेहूं फसल चक्र का अस्थायित्व संभव नहीं है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऐसे भी क्षेत्र जहां भूजल उपयोग की अत्यधिक संभावना होने के बाद भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। सिंचित उपजाऊ क्षेत्र का गैर कृषि क्षेत्रों जैसे कि उद्योग आवासीय क्षेत्र में जाना भी एक बड़ी समस्या है। इसी तरीके से हम देखें तो जो उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन की स्थिति है जो बहुत बड़े पैमाने पर है, खेत में अंतर्निहित क्षमता में कमी आ रही है।
1: फसल चक्र का चुनाव, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। आकाशवाणी लखनऊ से ये है नमस्ते लखनऊ का सफर, जहां बारी है अब कार्यक्रम सुविचार की। आज का विषय नरसिंह भगवान, स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का।
2: नरसिंह भगवान का नाम स्मरण करते अथवा सुनते ही हम सभी को बचपन में पढ़ी भक्त प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कथा याद आ जाती है। भगवान विष्णु का परम भक्त था बालक प्रह्लाद। उसके पिता हिरण्यकश्यप जो स्वभाव से ही दुष्ट और पापी थे, बालक प्रह्लाद पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाने के बावजूद उसके मन से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा मिटा न सके। नहीं, अपने पुत्र प्रह्लाद को मारने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठने की अनुमति भी दे दी ताकि वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। होलिका प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रह्लाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। तब हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को अपने भक्ति और चहुं ओर प्रभु ही हैं ये सिद्ध करने को कहा। भक्त प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि प्रभु सब जगह व्याप्त हैं,

इतना ही नहीं, वे तो इस महल के प्रत्येक स्तंभ में भी व्याप्त हैं। तब हिरण्यकश्यप ने प्रभु को मारने के लिए स्तंभ पर जोर से प्रहार किया और कहा जाता है कि तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार माने जाते हैं। नरसिंह अर्थात नर और सिंह, जिसका स्वरूप नर अर्थात मानव और सिंह अर्थात शेर का है। नरसिंह भगवान शक्ति, पराक्रम और अपने भक्तों की रक्षिका शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि नरसिंह भगवान वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा अर्चना प्रमुख रूप से भारत के दक्षिण प्रांत में वहां के वासियों द्वारा की जाती है। ये भी मान्यता है कि नरसिंह भगवान के इस स्वरूप में अवतरित होने का प्रमुख ध्येय पापी हिरण्यकश्यप का वध करना और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करना था। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमामयम। नरसिंह भगवान की कथा के बारे में ये भी कहा जाता है कि सनकादिक ऋषि के श्राप से कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम क्रमशः हिरण्य

0: में अवतरित होने का प्रमुख ध्येय पापी हिरण्यकश्यप का वध करना और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करना था। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्यु नमामयम। नरसिंह भगवान की कथा के बारे में ये भी कहा जाता है कि सनकादिक ऋषि के श्राप से कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम क्रमशः हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पड़ा। दोनों ही पुत्रों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना ही पशु, ना ही वो घर के अंदर मरे, ना घर के बाहर, ना ही उसे कोई दिन में मारे और ना ही रात्रि में। हिरण्यकश्यप को तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को अजय समझने लगा। इसी बीच उसकी रानी ने एक अलौकिक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वो बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा विष्णु नाम का जप करता रहता था। ये बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को नापसंद थी, क्योंकि वो विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। उसने भगवान विष्णु की पूजा करने पर महल में चारों ओर प्रतिबंध लगा रखा था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए भी उसने मना किया, लेकिन प्रहलाद ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु का अस्तित्व सिद्ध करने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा सुनकर उसने कहा कि प्रभु हर कण में विद्यमान है और आपके महल में भी मैं आपको उनके दर्शन करा सकता हूँ। यही वो बिंदु था जब भगवान विष्णु नरसिंह स्वरूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर ले गए। महल के खंभे से प्रकट होकर जब नरसिंह भगवान ने दुष्ट पापी का वध किया तो वो गोधूली बेला का समय था। प्रभु का स्वरूप न मानव का था, न ही पशु। वो स्थान न घर के अंदर था, न घर के बाहर। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसके प्रकोप और अत्याचार से संसार को मुक्त कराया और समस्त प्राणियों की रक्षा की। इसी प्रकार नरसिंह भगवान की शक्ति को संकट नाशिनी शक्ति माना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा हेतु इस संसार में तब तब अवतरित होते हैं जब जब कोई सच्चा भक्त उन्हें मन से पुकार उठता है।
1: नरसिंह भगवान डॉक्टर शिवा राकेश के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 6:15 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ में अब समय है भक्ति संगीत से ईश्वर अभिनंदन का। कार्यक्रम है आराधना।

अनंत अखंड अमर अविनाशी, कष्ट हरण है शंभु कैलाशी। शिव की महिमा अपरंपार है, शिव करते सबका उद्धार है। आइए शिव की आराधना से करते शुरुआत है।

कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है।

शिव सेवा कर फल सुत हो सोई, अबिरल भगति राम पद होई। शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। शिव सेवा साधन है और राम भक्ति साध्य है। शिव जी की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वो है श्री राम जी के चरणों में अविरल प्रेम।

ईश्वर कहते हैं धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो हर कर्म का सही फल देता है। वो ना कभी देर करता है और ना कभी गलत करता है।

इस भक्ति गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज आपने जिन कलाकारों को सुना वो हैं अनूप जलोटा, कविता सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल और पार्थिव गोहिल।

आकाशवाणी लखनऊ से जारी है भक्ति संगीत की ईश्वरमयी धारा। इस क्रम में आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार मन्ना डे और शोभा जोशी, संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:55 हुए हैं, सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7 बजे हैं नमस्ते लखनऊ के सफर में, अब बातें स्वास्थ्य और सेहत की। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय गर्मी के मौसम में डायरिया से बचाव। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, गर्मी के मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आज एक ऐसे ही संक्रामक रोग की हम बात करेंगे जिसे दस्त, अतिसार या डायरिया कहा जाता है। ये बहुत ही सामान्य पाचन संबंधी समस्या है। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी संक्रमण या पेट की खराबी का एक लक्षण मात्र है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए किसी को भी डायरिया होता है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। बार बार पतला या पानी जैसा दस्त आना, पेट में मरोड़ या तेज दर्द का होना, उल्टी या जी मिचलाना, बुखार आना, डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी के संकेत जैसे बहुत प्यास लगना, मुंह सूखना, कम पेशाब आना, चक्कर आना और अन्य गंभीर मामलों में यानी कि समय रहते अगर इसका इलाज ना किया जाए तो मल में खून या फिर म्यूकस आता है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। श्रोताओं, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायरिया के कारण क्या होते हैं। वायरल संक्रमण आपने सुना भी होगा, इसमें एक है रोटा वायरस, यानी कि ये एक ऐसा वायरस कहा जाता है जो बच्चों में दस्त का सबसे आम कारण है। इसे पेट का फ्लू भी कहते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण, ये एक ऐसा संक्रमण होता है जो दूषित भोजन या पानी से शरीर में प्रवेश करता है। श्रोताओं, गर्मी का मौसम है, फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम खाना तो बिल्कुल सही खाते हैं, घर का खाते हैं, पानी घर का पीते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल फूड पॉइजनिंग होती है बासी खाने से, खुले कटे हुए फल जो ठेले पर मिलते हैं उनके खाने से। मान लीजिए चाट पकौड़े खाने के कुछ लोग शौकीन हैं, ठेले से वो लेकर खाते हैं तो उसके खाने से हो सकती है, या फिर जल के सेवन से, यानी जो आप पानी पी रहे हैं वो प्रदूषित हो, साफ ना हो, शुद्ध ना हो। श्रोताओं, इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। मान लीजिए कोई अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहा है तो उससे भी उसे दस्त हो सकते हैं। श्रोताओं, कहने का मतलब ये है कि डायरिया गंभीर ना हो, यानी कि आपको उल्टी और दस्त बार बार हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं

0: और अपना इलाज सही से करें, इंतजार न करें। अगर बच्चों को ये समस्या है तो भी आपको जल्दी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी है। मान लीजिए किसी को भी उल्टी और दस्त होती है तो सबसे पहले तो आप प्राथमिक उपचार के तौर पर अगर घर में हैं तो ORS का घोल ले सकते हैं, यानी उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घोल है, ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। तरल पदार्थों में आप नारियल पानी, नींबू पानी, चावल का मांड, सूप और साफ पानी पीते रहें। खान पान की बात करें कि यानी इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, तो आप केला खा सकते हैं, चावल और दही का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, हल्की खिचड़ी खा सकते हैं। दही के बारे में इसलिए हमने जिक्र किया है क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। श्रोताओं, अब ये भी ध्यान देने की बात है कि हम क्या ना खाएं। मसालेदार भोजन, दूध से बने उत्पाद, कैफीन और अन्य ऐसे पदार्थ जो पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। अगर हम स्वच्छता की बात करें, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, घर परिवार में सबको साफ सफाई की आदत होगी, तो हम इस बीमारी से, जो इस समय संक्रामक रोग है डायरिया, इससे सकते हैं। इसके लिए खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोएं और शौचालय जाने के बाद अच्छी तरह से हाथों को साबुन से धोएं। श्रोताओं, डॉक्टर के पास आप कब जाएं? मान लीजिए आपको सुबह एक दस्त हुआ, उल्टी आई और फिर भी जी मिचला रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, दोबारा दस्त हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएं। इसके साथ अगर आपको तेज बुखार है, यानी कि 102 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा, मल में खून या काले रंग का मल आना, यानी कि ये ऐसी समस्या है जो रोग की गंभीरता को दर्शाती है, उसके पहले ही आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। श्रोताओं, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो 12 माह से कम के हैं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उनके लिए आप बिल्कुल इंतजार ना करें और ना ही अपना कोई इलाज करें। श्रोताओं, डायरिया के बारे में ये कहा जाता है कि अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। श्रोताओं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल घर में रखना बेहद जरूरी होता है। ये दस्त, उल्टी, लू या अत्यधिक पसीने के कारण शरीर में हुई पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को तुरंत पूरा करता है। ये निर्जलीकरण को रोकने, कमजोरी और चक्कर से राहत दिलाने और बच्चों में दस्त से होने वाली मौतों को रोकने में एक जीवन रक्षक उपाय है। श्रोताओं, आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। दीजिए आज की स्वास्थ्य चर्चा समाप्त करने की नीना सोनकर को अनुमति। नमस्कार।
1: गर्मी के मौसम में डायरिया से बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। अपने सेट पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए आज यानी 9 मई को आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में एक जानकारी। सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात्रि 10 बजे। साथ ही राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। हमारे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे वार्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक मोरल। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत होगी भेंटवार्ता AI से अंतरिक्ष तक, भारत के बढ़ते तकनीकी कदम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर विशेष इस विषय पर डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से भेंट करता होंगे प्रवीण कुमार। साथ ही सुनेंगे शिबा राकेश से विज्ञान समाचार। सुबह 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल में आज सुनेंगे शांति और अमेठी जिले की हलचल। उर्दू कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए आकाशवाणी रामपुर की पेशकश। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगी अंजुलि श्रीवास्तव। इनके स्वर में अवधि लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोक रंग में और दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के स्वर में भजन आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए भेंटवार्ता धान की सीधी बुवाई तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर

सीताराम कन्नौजिया से भेंट करता होंगी डॉक्टर सुशील कुमार राय। ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके अपने कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:15 पर, जिसमें चर्चा के साथ होंगी बातें शब्द एक गीत अनेक रिश्ता आंखें विषय पर। शाम 5:10 पर लेकर आएंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग, जिसमें आप सुनेंगे डीआर विनायक से कविता पाठ और साथ ही आज की बात। शाम 5:45 का समय कार्यक्रम नई उड़ान का, जिसके अंतर्गत शालिनी ओबी लेकर आएंगी, विषय होगा विमर्श, नीति निर्माण में भागीदारी के बिना लोकतांत्रिक विकास अधूरा है कैसे। इसके साथ ही होगी सामयिक चर्चा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर, महाराणा प्रताप जयंती, गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती विषय पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए नंद किशोर वर्मा की वार्ता जल संचयन से ग्रामीण समृद्धि, इसके साथ ही साथ होगी चर्चा प्रधानमंत्री आवास योजना पर। शाम 6:50 का समय कार्यक्रम खेती किसानी का, जिसके अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय, इसके साथ ही साथ होगी चर्चा और सुनेंगे लोकगीत। तो श्रोताओं, ये थी आज लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विशेष जानकारी।

पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कार्यक्रम विविधा हम लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार। आज विविधा में विषय विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।

सरहद के दायरों को पंछी नहीं जानते, मजहब कौन सा है दरिया नहीं पहचानते, जाति पाति जन्म के बंधन ये फलक नहीं मानते, ये पंछी तो आजाद गगन में बस घूमते हैं रहते। दोस्तों, जिस तरह पंछियों के गीत और उनकी बातें आपके रेडियो सेट से आपके कानों तक पहुंच रही हैं, ये बता रही हैं कि आज का दिन है खास, कुछ बहुत ही खास। ये दिन है उन चहचहाते हुए पंछियों के नाम जो जब घर को वापस आते हैं तो सुकून की एक नई कहानी सुनाते हैं हर बार। इन्हें हम कहते हैं प्रवासी पक्षी। ये वो पक्षी हैं जो भोजन, आवास और प्रजनन के लिए हर साल एक निश्चित मौसम में हजारों मील की लंबी और चुनौतीपूर्ण दूरी की यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये पक्षी आमतौर पर उत्तरी एशिया, यूरोप और ठंड प्रदेशों से भारत जैसे गर्म स्थानों पर सर्दियों में आती हैं और मौसम बदलने पर वापस लौट जाती हैं। और इन्हीं प्रवासी पक्षियों और उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता मनाने के लिए वर्ष में दो बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार यानी आज 9 मई के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया जाता है। आज हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी

पक्षी दिवस। ये दिवस उन खतरों को उजागर करता है जिनका सामना पक्षी अपने लंबी दूरी के प्रवास के दौरान करते हैं और उनके संरक्षण यानी कंजर्वेशन के लिए ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। दोस्तों, हर साल कम से कम 4,000 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी नियमित रूप से प्रवास यानी कि माइग्रेट करते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ पक्षी लगभग 15,000 मील या उससे भी अधिक की दूरी तय करते हैं। आपको बता दूं, सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला प्रवासी पक्षी

व्यक्त करता है। पक्षियों की उड़ान, उनके प्रवासी पैटर्न और विशेष प्रजाति के पक्षियों की झलक पाना, उनका अवलोकन करना अपने आप में प्रकृति की महान संरचना और कलाकृति को सराहने जैसा है। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक अलग विषय घोषित करता है जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रयासों में निहित विभिन्न मुद्दों को प्रकाश डालता है। इस वर्ष यानी साल 2026 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम है एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशन मैटर, यानी हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन मायने रखता है। और दोस्तों, अवलोकन तो जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि से आवास की कमी, जंगलों का कटना, पर्यावरण, मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले वो खतरे हैं जिनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाएं वैश्विक आयोजनों द्वारा पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रवास निवास की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई अभियान चला रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को भी अपनी तरफ से प्रकृति की इन अनमोल धरोहर को बचाना है, संभालना है और संरक्षित करना है, ताकि प्रकृति में निहित हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, मौसम और प्राकृतिक संरचना की मैत्री ये जो चक्र है सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि हर मन खुशी खुशी अपने अनमोल जिंदगी के लिए इस गीत को गुनगुनाता रहे, गा सके और सबके साथ इसे एंजॉय कर सके।

दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हालांकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आधिकारिक उत्सव दिवस प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन संगठन ये भी मानता है कि प्रवासी पक्षी अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर रुकते हैं, इसीलिए इसे अक्टूबर माह में भी मनाया जाता है और इस उत्सव को लचीला बनाया जाता है ताकि हर पक्षी और हर लोग इस दिवस को मना सके और साथ ही साथ प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को अपनी जागरूकता के साथ में बचा सके। इस कामना के साथ कि हर पंछी की उड़ान के साथ हम इंसान भी अपनी जिंदगी को आज़ाद हवा में, खुले आसमान में, बिना किसी सरहद, दायरे और दूरी की अपनी बाहें फैला कर जिए। आप सभी को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। विविधा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। उसके पहले कुछ संदेश।

0: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ।
2: भारतीय आर्काइव्स,
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार, शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया, जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
3: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
5: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
3: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।

0: प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: देवकाशो होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के

वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार, शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया, जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ के सफर में अब है बारी कार्यक्रम आज सुबह की, जिसे लेकर आएंगे हम बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी का स्वागत है।
1: जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं, जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। और उन रिश्तों का होना ही क्या जिसमें मतलब की मीठी चाशनी हो। रिश्ते तो वो ठंडी छांव होते हैं जो अंतर मन को सुकून दे, दिल को खुशी और मन के भावों को, जज्बातों को उड़ान दे।
0: और ऐसे ही रिश्ते की डोर में आपको हमसे बांधने लेकर ज्ञान और मनोरंजन का चटपटा सा फ्लेवर आज सुबह प्रोग्राम के एक और इंफोटेनिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शिखा।
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, सुप्रभात,
1: नमस्कार।
0: तो शिखा कैसी हैं आप और लखनऊ कैसे मिजाज हैं आपके? देखिए सुबह से तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन आज सुबह प्रोग्राम का जब वक्त आता है तो बहुत सारे विचार दिमाग में कौंधने लगते हैं, है कि नहीं?
1: जी बिल्कुल, कौंधने लगते हैं। और ये भी लगता है कि हमारे श्रोता भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या क्या खास होने वाला है आज इस कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल, और जैसा कि हमारी ये परंपरा है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं, तो अपने श्रोताओं को हम आज का सुविचार भी बता देते हैं। दोस्तों, ये एक जीवन जो है संघर्ष है, और संघर्ष ही जीवन को अनुभवों का अनमोल तोहफा भी देती है।
1: अनुभवों का स्वागत कीजिए, ना जाने कौन सा अनुभव जिंदगी बदल दे।
0: और हाँ, जब संघर्षों की बात

0: होती है तो संघर्ष करते समय ये तीन बातें अपने दिमाग में जरूर रखिए। पहली, अपना लक्ष्य क्या है। दूसरी, असंभव कुछ भी नहीं है। और तीसरी,
1: मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
0: तो बस अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को जागरूक भी रहिए, क्योंकि अगर आप जागरूक रहते हैं तो आपके लिए जिंदगी की राहों में आगे बढ़ना और मजबूती से अपने कदम को रखना संभव हो जाता है ना?
1: जी बिल्कुल। तो चलिए एक प्यारा सा ट्रैक भेज दें अपने श्रोताओं तक।

0: गीता दत्त की आवाज में यह गाना था श्रोताओं आर पार फिल्म से, और जिसका संगीत दिया ओपी नैयर साहब ने। और इस गाने के बारे में आपको बता दूं कि ये एक लैटिन गाने से इन्फ्लुएंस्ड है, और साथ ही साथ इस गाने में बहुत ही हल्के संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि अमेरिकन स्पैनिश मेलोडी कैजाज को भी शामिल किया गया है एक तरीके से। तो ये गाना अब आपने सुना अपने रेडियो सेट पर, और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह में। तो शिखा, आज हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन कौन सी बातें लेकर आई हैं?
1: जी, हमारे पास तो बातों का एक बहुत बड़ा सा पिटारा है हमारे श्रोताओं के लिए, लेकिन अब सबसे पहले बताते हैं कि आज का दिन खास क्यों है।
0: हाँ, बताइए।
1: तो आज है तीरंदाजी दिवस, और उसके बाद है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी। तो आपको बता दें, तीरंदाजी उसको करने के क्या होते हैं लाभ? जी हाँ, तीरंदाजी से एकाग्रता बढ़ती है। यह खेल लोगों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। तीरंदाजी से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीरंदाजी व्यक्तिगत या सामाजिक हो सकती है।
0: बिल्कुल, खेल कोई किसी भी प्रकार का हो, वो आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ एकाग्रचित बनाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ तीरंदाजी के जो बहुत सारे जो इसके बैड पॉइंट्स हैं, उसको भी हमें ख्याल रखना है, ताकि किसी को चोट ना लग जाए। स्पेशली हम बात करें पंछियों की, क्योंकि आज हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मना रहे हैं, तो कई सारे पक्षी जो हैं वो हमारी वजह से कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। हम जब पतंग उड़ाते हैं उनके धागों से, या फिर जो हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं, उनकी वजह से भी उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो हम अपनी तरफ से ग्रीनरी को जहां तक बढ़ावा देंगे, इनके लिए जीना आसान हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और हम लोगों ने कीर्ति सुना भी, एक कहावत भी सुनी, बड़े तीरंदाज बन रहे हो क्यों, कहते थे ना एक कहावत, क्या ये लोग यूज करते थे बोलने में, है ना। तो तीरंदाजी तो एक बहुत अच्छा मतलब है, खेल है। और
0: देखिए,

0: आपने कहावत की बात कही, तो ये सब बातें तभी दिमाग में आती है ना जब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और ज्ञान तब हमारे पास में आता है जब हम अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं,
1: और साथ ही हमारे साथ जब आप जुड़े रहते हैं तो हम भी आप तक एक से बढ़कर एक जानकारियां पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा है अनमोल खजाना, इस पर है अधिकार हर जन का। और जब बात आती है स्पेशल पीपल यानी कि दिव्यांग जनों की, तो उच्च शिक्षा उन तक भी पहुंचनी चाहिए। इस मिशन के साथ आज सुबह कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज एक बातचीत दिव्यांग जन हेतु उच्च शिक्षा अवसर और संभावनाएं विषय पर। और इस संबंध में डॉक्टर शकुंतला शर्मा पुनर्वास विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित संकाय के HOD डॉक्टर विजय शंकर शर्मा से बातचीत कर रही हैं रिंकी शर्मा। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार। शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग जन। आज के दौर में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन एक नई दिशा दे रही है, जहां हर बच्चे को समान अवसर भी मिल रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से जुड़ने और सही मार्गदर्शन के साथ एडमिशन पाने की प्रक्रिया को भी समझना आज बेहद आवश्यक है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित संकाय के विभागाध्यक्ष आदरणीय श्री विजय शंकर शर्मा सर। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैडम।
2: सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है?
3: देखिए, समावेशी शिक्षा जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, हम सभी का समावेश करते हैं। आप जानते हैं कि दिव्यांग जनों की शिक्षा से संबंध में ये बात देखा गया है कि उनके लिए तमाम तरह के विद्यालय हमें अपने समाज में और विश्व में देखने को मिलते हैं, जहां पर केवल एक ही प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति एक विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें हम लोग विशेष विद्यालयों की संज्ञा देते हैं। किंतु जब हम दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए ऐसे विद्यालय में उनको प्रवेश दें जो कि गैर दिव्यांग जनों के लिए बने हैं, अथवा ऐसे विद्यालय हम नए बनाएं जहां पर दिव्यांग जन और गैर दिव्यांग जन एक साथ पढ़ें, तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था को हम लोग समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहते हैं।
2: जी सर। सर, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वर्तमान समय में शिक्षा के क्या प्रमुख अवसर उपलब्ध है?
3: देखिए, जहां तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा से संदर्भ में जो हमारे पास उपलब्ध ऑप्शंस हैं, उनमें हमें ये जानना पड़ेगा कि दृष्टिबाधिता एक संवेदी दिव्यांगता है, जहां पर दृष्टि संवेदना का अभाव है। अर्थात जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो इंद्री है, जो सेंस है, वो विजन होती है, आई होती है। तो उस दृष्टि के अभाव में व्यक्ति को वो इनपुट नहीं मिल पाएंगे जो कि विजन के कारण उसे मिल सकते थे। किंतु अब टेक्नोलॉजी और जो विशेष शिक्षक गण हैं, उनकी सहायता से हम जो भी ऐसे इनपुट हैं, जो भी ऐसी जानकारियां हैं जिसके लिए विजन की आवश्यकता है, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी से और विशेष शिक्षकों के माध्यम से उसे कंपनसेट करते हैं। तो दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए भी वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि एक गैर दिव्यांग जन के लिए बनी है। अब उसको टेक्नोलॉजी हमने उपलब्ध करा दी, उसको हमने ऐसे शिक्षक अवसर प्रदान कर दिए, जैसे क्लासरूम में जो टीचर है उसको संवेदना है, उसको जानकारी है कि दृष्टिबाधित जनों को पढ़ाना कैसे है। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि आप दृष्टि दिव्यांग जन को भाषा पढ़ाना चाहते हैं तो भाषा पूर्णतया डिपेंड करती है आपके सुनने और बोलने पर, और दृष्टि दिव्यांग जन की सारी चीजें, दोनों चीजें ठीक हैं, तो वहां कोई समस्या नहीं आएगी। जब हम उसे लिखना और पढ़ने पर जाएंगे कि वो किस प्रकार से उस भाषा को लेखन में कन्वर्ट करे और उसे देखे जो उसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उसी दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उनका प्रयोग करके जो भी मटेरियल आपके सामने है हम उसे पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए अलग से हमको कुछ व्यवस्थाएं यदि हम कर दें अपने विद्यालयों में, खासतौर से टेक्नोलॉजी और स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था, तो वह भी बाकी जो गैर दिव्यांग जन है उन्हीं की तरह सामान्य विद्यालय, जिसे आप कहते हैं, जिसमें गैर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बना है, उसमें रह करके वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है।
2: जी सर, लगभग सभी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, और ऐसे में

0: हमारे बहुत सारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अब उनका सपना भी है उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का। तो अगर कोई बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो एडमिशन के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या आप कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं?
1: मैं आपको बताऊं कि जब भी हम लोग 12वीं क्लास पास करके जब हम प्रवेश के लिए अवसर तलाशते हैं तो आज की डेट में हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम है CUET। जैसे आप जानते हैं जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, पहले तो ये सुविधा केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए थी, लेकिन आजकल कई स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी एक कॉमन एंट्रेंस कराती है जिसके फॉर्म काफी पहले भरे जा चुके हैं। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने वो फॉर्म भरे भी होंगे, तो जो उसकी डेटशीट भी आ चुकी है 11 मई से लेकर के 30 मई तक वो परीक्षाएं होंगी। उन परीक्षाओं में जो प्राप्तांक आपको प्राप्त होंगे उसके आधार पर आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है उसकी वेबसाइट पर अपने CUET के अंकों को रखते हुए अप्लाई करिए। वहां आपको सभी जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको मौका मिलेगा और आप जान लीजिए कि हमारे विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों में 50% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं और बाकी की 50% सीटें गैर दिव्यांग मतलब दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। अब प्रयास ये भी चल रहा है कि हम लोग जल्दी ही जो विद्यार्थी नहीं किसी वजह से CUET का फॉर्म भर पाए दिव्यांगजन, उनको हम लोग इस प्रयास में है कि या तो मई माह में या जून माह में हम उन्हें भी मौका देंगे कि वो हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकें।
0: सर, उच्च शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से कोर्स और करियर विकल्प उपलब्ध हैं, अगर हम अपने विश्वविद्यालय की बात करें या फिर सरकार द्वारा प्रदत्त कोर्स की बात करें? तो
1: देखिए, उच्च शिक्षा पूरी तरह से सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए खुली हुई है। अब हमें ये सोच समझ के एडमिशन लेना होता है कि जिस उच्च शिक्षा के जिस भी पाठ्यक्रम में हम प्रवेश लें वह हमारे लिए नौकरी देने वाला हो। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बच्चा एडमिशन तो जैसे दृष्टिबाधित बच्चा है वो एडमिशन तो फाइन आर्ट के कोर्स में ले सकता है, पढ़ भी सकता है, किंतु उसके आधार पर उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ये सुझाव रहता है या भी रहती है कि ऐसे तमाम पाठ्यक्रम जिसमें हमारे लिए रोजगार की संभावनाएं हो वो समस्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति और अन्य जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो अधिकृत हैं। तो कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम, BA का पाठ्यक्रम हो, BBA का पाठ्यक्रम हो, BCOM LLB हो, लॉ हो, कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए संभावना है कि आप अच्छा विकल्प तलाश सकते हैं, रोजगार के विकल्प तलाश सकते हैं, तो आप किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है और वो शिक्षक बनना चाहता है तो वो कभी भी श्रवणबाधित विद्यार्थियों का शिक्षक नहीं बन पाएगा, तो ऐसे में उसको ऐसे कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए जो कि श्रवण बाधिता के क्षेत्र में टीचरों का प्रिपरेशन करता है, जैसे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट में कभी वो एडमिशन ना ले, BEd में एडमिशन न ले जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए बना हो, बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो जितनी भी सहायक सामग्री, जितनी भी पाठ्य वस्तु अवेलेबल है वर्ल्ड में, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है वो IAS भी बन रहे हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति अच्छे अच्छे जो कोर्ट्स हैं उनमें वकील भी बनते हैं, और अभी कुछ दिनों आपको पता चलेगा कि एक दृष्टिबाधित बालिका है वो जज की कुर्सी पे बैठेगी, मतलब अभी उसने अपना क्वालिफाई कर लिया है। तो हमें देखते हैं कि वो सारे पाठ्यक्रम जिसमें विजन न होने के कम कंपनसेशन पॉसिबल है, कोई भी पाठ्यक्रम वह दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकता है।
0: सर, क्या सरकार की ओर से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष योजनाएं या स्कॉलरशिप उपलब्ध है जिनका लाभ छात्र उठा सकते हैं?
1: बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं। आप देखेंगे अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कॉलरशिप्स के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल बना दिया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आप उसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो भी, क्योंकि ये जो चीज है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों की तरफ से प्राप्त होती है, तो जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जैसे मान लीजिए आप जिस भी स्टेट के हैं, मैं यूपी की बात करूँ, यूपी के बाहर की बात करूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भी कोई विद्यार्थी बाहर के किसी राज्य से हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आता है और उसे राज्य की स्कॉलरशिप चाहिए तो उसे अपने राज्य में अप्लाई भी करना पड़ेगा, अपने पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी होती है, बहुत मिलती भी है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फीस है वो फ्री है, उनका अकोमोडेशन यानी हॉस्टल फ्री है और नॉमिनल चार्जेस और जो वैसे चार्जेस होते हैं जो इसको जैसे आप टूट फूट मरम्मत

0: यानी कि केवल वही लगता है, इसके अलावा भोजन इत्यादि सब उनका फ्री है। ये सारी चीजें हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात, देखिए मैं इस बात से बड़ा प्रसन्नता और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे एक किसी भी विद्यालय में यदि आप पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली आप पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद समाज में ही जाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय में पहले से ही उसे गैर दिव्यांग लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे उनसे सहयोग लेना है, कैसे उनको सहयोग प्रदान करना है, वो डे वन से ही हम उनको इनपुट देते हैं, क्योंकि रहना उसे उसी सोसाइटी में है। तो वो सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे विश्वविद्यालय में है, और इसीलिए गैर दिव्यांग दिव्यांग दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो उनको एक ज्यादा अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सोसाइटी में कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है वो मिलता है। इसलिए शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय इस मामले में एक बहुत रोल मॉडल की तरह कार्य कर रहा है।
1: सर एक और सवाल, आपने बताया कि विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चे और साथ साथ में सामान्य बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं, तो एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है दोनों बच्चों के लिए एक जैसी है या जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें किसी तरह की सुगमता प्रदान की जाती है एडमिशन प्रक्रिया के तहत?
0: क्योंकि 50% रिजर्वेशन है, इसीलिए यदि बच्चे को किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो हमारे विश्वविद्यालय में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमने एक खासतौर से स्पेशल एजुकेशन में आर्ट्स में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, वहाँ पर हमने हेल्प डेस्क स्थापित की हुई है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, यदि आप हमारे ऑफिस में आते हैं तो हम उन बच्चों का फॉर्म इत्यादि भर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति या बाकी दिव्यांग व्यक्ति भी टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि अपना मोबाइल का प्रयोग करके ही वो सारे फॉर्म भर लेता है, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं भर पाता है तो हम उसे वो सुविधाएं अपने विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराते हैं।
1: सर अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर अक्सर चिंतित देखे जाते हैं?
0: उनकी चिंता बड़ी वाजिब है, और जैसे हम लोग गैर दिव्यांग बच्चों के माता पिता हैं वैसे जैसे हम चिंता करते हैं वैसे उनको भी चिंता करना एक अच्छी बात है। हमारा केवल यही उनसे आह्वान है कि हम उनके बिना कुछ नहीं है। यदि वो अपनी जागरूकता विश्वविद्यालय में आकर के देते हैं और उनका कुछ प्रयोजन हमारे विश्वविद्यालय में सार्थक बन करके आएगा तो बच्चे को हम और ज्यादा अच्छी दिशा दे पाएंगे। यह बात न केवल हायर एजुकेशन में बल्कि जो विद्यालयी शिक्षा है वहां पर भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना अभिभावकों के दिव्यांगजनों की शिक्षा को उनको रोजगार उपलब्ध कराना वो संभव नहीं है, मतलब संभव तो नहीं, बहुत कठिन कार्य है। तो जैसे ही कहते हैं ना कि एक से भले दो और बोल की वो 11 बन जाते हैं, तो अभिभावक और विशेष शिक्षक और शिक्षक यदि तीनों आपस में मिल जाएं तो दिव्यांगजनों के शिक्षा और पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा हम लोग मिलकर के प्रयास कर सकते हैं और वहां पर सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए उनका हमें बड़ा आवश्यकता होती है, उनसे हमारी बड़ी आशाएं होती हैं, तो उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
1: अंत में आप समाज और जो छात्र अब उच्च शिक्षा के साथ जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे शिक्षा का दायरा और अधिक समावेशी बन सके?
0: समाज में हम लोगों को ये देखना होगा कि दिव्यांगजन भी समाज का एक हिस्सा है। हाँ, कुछ कार्य करने में असमर्थता है लेकिन सब कार्य नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है। केवल हमें उनकी जो उनके अंदर शक्तियां हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनको पहचानने की जरूरत है, और यदि हमने उनकी क्षमताओं को पहचान लिया तो हम उन्हें समाज में एक बहुत अच्छे स्थान पर देख सकते हैं, और जब उनकी तरक्की होगी तो हमारे देश की तरक्की होगी, ऐसा मेरा मानना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों हमारे साथ थे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से।
2: दृष्टिबाधित संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष श्री विजय शंकर शर्मा सर,
1: जिन्होंने समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों के अधिकार और उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको नई दिशा और प्रेरणा मिली होगी।
3: तो शिखा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने सुनी है और अपने श्रोताओं तक भी पहुंचाई, आपका क्या कहना है?
4: जी, मेरा भी यही कहना है कि इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों ने सुनी और हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, सुना होगा तो आज इस जानकारी को सुनकर खुश तो हुए होंगे कि कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं और क्या क्या होने वाला है
3: और इससे हम कितना लाभ उठा सकते हैं।
4: जी बिल्कुल।
3: तो फिलहाल लाभ उठाने वाली बात कहिए, देखिए एक संगीत और गीत का जो माहौल है वो भी होना चाहिए।

0: ये है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। देखिए मौसम जो है इस वक्त करवटे ले रहा है, सर्द हो रही है, गर्म भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और ये जो मौसम है ना वो कई सारी तकलीफें अपने साथ में लेकर आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इस मौसम में आपको खासकर अपना और अपने छोटे बच्चों का और जितने हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: चलिए तो इसी बात पे हम मौसम का हाल जान लेते हैं। हमारे कार्यक्रम में हमारे मौसम विज्ञानी आते हैं, मोहम्मद दानिश सर, सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD के। तो उनसे जानकारी लेते हैं कि आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल।
2: नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
3: नमस्ते, मैं अच्छा हूँ।
2: स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे द वेरी इंफरटेनमेंट प्रोग्राम आज सुबह में। तो बताइए सर, कैसा रहेगा आज हमारे लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का हाल?
3: देखिए, लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, दिन में अच्छी धूप खिली थी, लेकिन मौसम जैसा कि अभी खुशनुमा बना हुआ है, तापमान अपने सामान से कम है, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन ओवरऑल अगर कहे तो बहुत ज्यादा गर्मी का सबब नहीं रहेगा
2: जी।
3: मतलब धूप निकलेगी लेकिन जो मई में चिलचिलाती धूप पड़ती है वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा मौसम खुशनुमा रहेगा।
2: क्या बात है।
3: और शाम को रात को भी मौसम अच्छा ही रहेगा, तो कुल मिला के कहे तो 2-3 दिन मौसम थोड़ा खुशनुमा रहेगा, हालांकि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा, तो लेकिन कोई ऐसा लू वगैरह का कोई अलर्ट नहीं है, तो ये सिलसिला आने वाले अगले 3-4 दिन तक बना रहेगा। उसके बाद जैसे कि पश्चिम विक्षोभ आ रहा है तो थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिन मौसम खुशनुमा रहेगा, हालांकि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा।
2: धन्यवाद सर आज सुबह कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मौसम के बारे में।
3: ओके, धन्यवाद।
2: नमस्ते सर।
1: जी देखिए कितनी अच्छी जानकारी मोहम्मद दानिश जी ने हम लोगों को दे दी है कि अभी तो हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज का दिन कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा, लेकिन इन्होंने हम लोगों को जो संदेह था वो दूर कर दिया है कि आज का भी दिन जो है वो रहने वाला है बहुत खुशनुमा। आप कहीं भी बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, मोस्टली बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अगर नहीं बहुत दूर जा पा रहे हैं तो ज़रूर आसपास जाने का प्लान बनाएं।
0: और साथ ही साथ अब इस कार्यक्रम में एक गाना भी हो जाए
1: जी, तो एक प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत जो भी आप सुन रहे हैं बेस्ड है राग पीलू पर, जो अपनी हल्की चंचल और अर्ध शास्त्रीय प्रकृति के लिए जाना जाता है, जो इस गीत के हास्यपूर्ण और दार्शनिक भाव के लिए आदर्श बनाता है।
1: और ये गाना जो लिया था हमने फिल्म अलबेला से लिया था, जिसमें भगवान दादा की आवाज़ है और इसके संगीत निर्देशक रहे हैं सी रामचंद्र जी। तो इतने खूबसूरत और इतने मज़ेदार गाने के साथ में देखिए हम

0: आगे बढ़ते जा रहे हैं, कार्यक्रम का समय हो रहा है वाइंड अप करने का। शिखा, हम तो यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि मौसम हो, किस्मत हो, बात हो, विवाद हो, इन सब में अपनी को आप जरूर व्यस्त रखें, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत को मस्त रखें।
1: जी, और साथ सेहत को तो मस्त रखे ही रखे, और साथ में हर पल जिंदगी का खूब अच्छे से जिए।
0: बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ में कि आपका दिन बड़े ही अच्छे से शुभ मंगलमय बीतेगा, अब आज सुबह कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति
1: और अपनी रेडियो दोस्त शिखा को।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। इसी के साथ ही नमस्ते लखनऊ का सफर अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का

0: खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव डपड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को

0: निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान, जमा पूंजी

0: छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह

धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर RN रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि RG खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और आलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नज़रियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी।

0: तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि IUML ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली IUML ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायत नामा नहीं दिया है। एक और हैरान कन वाकया यह है कि AMMK पार्टी के लीडर TTV दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायत नामा पेश किया है जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद MLA हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानी स्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी TVK भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता VCK की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असम्बली आ गए हैं जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकामात तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं जिनकी 4 दहाइयों से ज़्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफ़ी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 125,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भाई के भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी जब मंदिर में अजीम शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुज पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज़ से गैर कानूनी इकदामात को कानूनी जवाब हासिल होगा बजाय इसके कि इससे तनाज़े को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवज़ा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
2: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाज़रानी के लिए ख़तरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अमरीकी

0: फौजों ने मुत्तहदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फजाई हमलों में बंदर खमीर सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फजाई निज़ाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महाजाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज में सवार भारतीय अमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाकया करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है, जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज़ दो जहाज़ों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाकयात के बावजूद सिफारती ज़राए ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है, जिनमें चीन और हांगकांग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हथियार और शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामे निगार से।
2: अमरीका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वो ईरान के फौजी सनअती ठिकाने के खिलाफ इकतसादी कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके। महकमे ने कहा है कि वो एयरलाइंस समेत ऐसी किसी भी गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वो उन गैर मुल्की माली इदारों पर दूसरे दौर की बंदिशें आयद कर सकता है जो ईरान की कोशिशों में मदद दे रहे हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आज़ाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं। माहिरीन का कहना है कि महकमे ख़जाना की इस कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुज और इलाकाई इतिहादियों में जहाज़ों की आमदोरफ्त में धमकी देने की ईरान की सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई करना है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी माहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह जंगबंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस माहदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन में केरलम, माहे, तकरीब, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा U17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
0: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में BJP कानून साज पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में 11 बजे होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बरतरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का उंसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमारती आदाद शुमार जारी किए। DRDO ने मकामी ग्लाइड हथियारों के निज़ाम तारा का कामयाब तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इंसदाद दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के 5वें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और कार्यक्रम जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, ये है आपके मेल आपके गीत। इस कार्यक्रम में आपके मेल और आपके पसंदीदा गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार।

भैया, बाहर बारिश गिर रही हो या नहीं, लेकिन यहाँ पे मेल की ढेर सारी बारिश हो रही है। और इन ढेर सारी बारिश में हमने कुछ बूंदों को इकट्ठा किया है, जिसमें कि मेल शामिल कर लिया है हमने कार्यक्रम में। पहले पहले गीत के लिए ये है दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराजा, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ग्राम लखन गांव पोस्ट मलके गांव डिस्ट्रिक्ट रायबरेली उत्तर प्रदेश से अंशिका शिवा, शारदा सिंह मास्टर जी, देवता दीन मास्टर जी, बेनी नाई जी, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, मिर्जा तुरा बेग, पप्पू पासी, हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान और मियांगंज जिला उन्नाव से संदीप राठौर। और आप सबके लिए पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसे हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए से। और इस गाने के गायक कलाकार हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, लता मंगेशकर। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो चलिए प्यारे प्यारे इस गीत को हम सुनते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं, जो है आपके मेल आपके गीत।

तो दोस्तों कैसी लगी कार्यक्रम की शुरुआत? आई होप कि बहुत आप एंटरटेन कर रहे होंगे इस कार्यक्रम को। तो फटाफट आप जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ पहली बार, तो नोट कर लीजिए हमारा पता, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com, और इस पते पर भेजिए जल्दी जल्दी अपने मेल और सुनिए अपनी पसंद के गीत अपने के साथ में। और अब कार्यक्रम का अगला गाना पहुँच रहा है आपके रेडियो सेट पर। हाँ, थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि पहले हम ले रहे हैं नाम उन श्रोताओं का जिनके मेल को हमने कर लिया है शामिल। ये हैं सरगुजा मैनपाट से सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा, आसमा थापा, कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बलोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अलकबीर, गाँव व डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, सांडे जनपद हरदोई से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मलाल नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरहेकर। और आपके रेडियो सेट पर पहुँच रहा है अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और फिल्म है साजन।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और ये कार्यक्रम है आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम का अगला गाना पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर हमारे इन श्रोताओं के मेल के साथ में और ये है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर मोहम्मद उमर डावर राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरिशी मोइन अंसारी तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा और निवान शर्मा एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव खुराना एस के पप्पी चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे जयश्री मेहत्रे अंजलि करवा बाला साहेब करवा ग्राम कुरियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से मुदित राजपूत विजेंद्र पाल राजदूत राजपूत अनवी राजपूत सुनीता राजपूत शोभा राजपूत दीपा राजपूत राम फेरे राजपूत कपिल राजपूत प्रांजल राजपूत और रमा राजपूत ग्राम पंचायत कालीगांव से श्री सुधाकर राजे जाधव डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव कुमार संचित वायाल कुमार प्रथमेश देशमुख कुमारी प्रणाली देशमुख कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख और आपके रेडियो सेट पे पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज में नाचे मयूरी फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: आपके पत्र आपके मेल @gmail.com ये है पता, जहां आपको भेजना है अपना मेल और सुनना है आपको अपने पसंद के गीत। फिलहाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपने मेल के साथ इस कार्यक्रम में जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित, गांव फ्रासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी।

डुबड़ी पुष्पेंद्र कुमार डूडी, बलिया उत्तर प्रदेश से फतिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, डब्बू वली बेलदार, शिमला हिमाचल प्रदेश से वली उल्लाह, डब्बू उल्लाह और रेशमा नाज और बेबी अंसारी डोम, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, पटना बिहार से याकूब अस्मा कुरैशी, यूसुफ आसमा कुरैशी, सरफुद्दीन अस्मा कुरैशी और वसीम आसमा कुरैशी, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहारी, बस स्टैंड लखनऊ से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। और पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर हमारे कार्यक्रम का ये अंतिम गाना जो है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, बोल आनंद बख्शी के और संगीत राजेश रोशन का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत के साथ ही आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति को। नमस्कार। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए शांति और अमेठी जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अमेठी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का।
2: शामली जिले में जिलाधिकारी आलोक यादव ने गेहूं खरीद की कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। डीएम ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जनपद में 30 मार्च 2026 में कुल 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद जारी है। इसमें खाद्य विभाग के 4, पीसीएफ के 16, पीसीयू के 6 और भारतीय खाद्य निगम के 3 केंद्र संचालित है। अब तक जिले में 1934 किसानों से 7,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में बताया कि अब तक 1455 किसानों को 1526 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाने चाहिए। केंद्र प्रभारियों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी होगी। शामली जिले के ग्रामीण अंचल की गली मोहल्लों और बाजारों को बिजली कटौती के दौरान भी दूधिया रोशनी से जगमग रखा जाएगा। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर योजना के तहत जिले को कुल 275 सोलर लाइटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पूरी परियोजना के लिए 59,11,675 रुपए का बजट निर्धारित किया है। परियोजना अधिकारी यूपी नेड़ा आर बी वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए तय की नई कार्य योजना के तहत जिले की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा जहां 150 सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। योजना के तहत लगाई जाने वाली प्रत्येक लाइट की कीमत 21,497 रुपए तय की गई है। ये लाइटें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। 12 वोल्ट और 18 वाट की इन लाइट्स में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा जिससे अगले 5 वर्षों तक इनकी कार्य क्षमता की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें लाइट खराब होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक केंद्रों और बाजारों के लिए 125 सोलर लाइट का एक अलग लक्ष्य मिला है। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां दुकानों की संख्या अधिक है और जहां बस स्टैंड और सार्वजनिक चौक स्थित है। शामली जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली घरों पर लंबे समय से जमे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिशासी अभियंता ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मी अपनी गृह क्षेत्र या एक ही स्टेशन पर वर्षों तक तैनात नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी सौरभ पाठक ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसके निवास स्थान वाले क्षेत्र के एसटीकेवी फीडर या सब स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। शामली में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 358 कीटनाशी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश अनुसार सभी विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली IPMS पोर्टल पर पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिले के 900 में से 358 विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 28 दिनों के भीतर पंजीकरण और डेटा फीडिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इन लाइसेंसों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। वेस्ट यूपी का शामली जिला, जिसे दुनिया अब तक केवल सुगर बाउल के नाम से जानती थी, वहाँ अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जिले के प्रगतिशील किसानों ने केवल गन्ने पर निर्भरता छोड़ खेती के विविधीकरण को अपना लिया है। अब शामली के खेतों में गन्ने की मिठास के साथ सरसों की पीली चादर और दलहन की महक एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रही है। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की तस्दीक करते हैं। साल 2023 तक जिले में तिलहन का रकबा महज 650 हेक्टेयर था, जो वर्तमान साल 2026 में 10 गुना बढ़कर 7,000 हेक्टेयर पार पहुंच गया है। अकेले रबी सत्र में सरसों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। मृदा सुधार के लिए किसान अब उर्द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जिला कृषि विभाग के संवाद और इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को जाता है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव की टीम ने चौपालों और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को नई किस्मों और फसल चक्र की जानकारी दी। किसान अब इंटर

0: क्रॉपिंग यानी सह फसली खेती के जरिए एक ही खेत से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। गन्ने के बीज, सरसों और आलू उगाकर लागत कम की जा रही है, वहीं पॉपुलर के पेड़ और आम के बाग किसानों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन गए हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया।
1: जनपद शामली में दलहन तिलहन निर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की सह फसली खेती तथा दलहन तिलहन की खेती के अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान तथा उनके द्वारा वितरित निःशुल्क मिनी किट तथा उच्च गुणवत्ता के बीज की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमेठी जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का।
3: जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण, व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जो दिनांक 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित होगी। इसके पश्चात 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का विस्तृत कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अर्पित गुप्ता ने स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए पोर्टल बहुभाषीय, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन, ओटीपी सत्यापन, पता दर्ज करना, मानचित्र पर लोकेशन चिन्हित करना तथा प्रश्नावली भरकर SC ID प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वगणना से फील्ड कर्मचारियों का कार्यभार कम होगा तथा डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी सीधे नागरिकों द्वारा भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया 24/7 उपलब्ध रहेगी, जिससे व्यस्त एवं प्रवासी परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, प्रगणक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जन जागरूकता हेतु मीडिया, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए दिवसवार कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग दिनों में प्रशासन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला समूह और अन्य वर्गों को जोड़कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन एवं शहरी वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए समन्वय के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र या परिवार छूटने न पाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा किया गया। यह कार्यशाला महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, रिटायर्ड महिला शिक्षकों एवं महिला समूहों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जनपद में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाराणसी स्थित कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में

0: जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उपस्थित रहे। प्रसारण उपरांत जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में नामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नामांकन अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
4: 870-001-4242।
5: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
6: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
5: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
7: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी लखनऊ। और श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य। इस विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक मोरल। इसके साथ ही शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता AI से अंतरिक्ष तक, भारत के बढ़ते तकनीकी कदम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर विशेष इस विषय पर डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से भेंट करता होंगे प्रवीण कुमार। विज्ञान और किसान, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। आज इस कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता धान की सीधी बुवाई तकनीक, इस विषय पर डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 9:30 हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी रामपुर की पेशकश।
1: आपका आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का समीन आदाब। समीन बज़्म, ये सच है कि दुनिया में मौजूआत की कमी नहीं है, शर्त ये है कि वो नज़र चाहिए जो इनका इंतखाब कर सके, जो इन्हें गिरफ्त में ले सके। क्योंकि सामीन फिक्र ख्याल की आमेजिश से तजुर्बा तख्लीकी तजुर्बा बन जाता है जो अफसाना कहलाता है। जी हाँ सामीन, जिंदगी के किसी भी गोशे पर मुनहसिर होता है। बसा अवकात ये गोशा इतना जामे होता है कि उसमें पूरी जिंदगी अपने नशेबो फराज के साथ सिमट आती है। समीन इसी ख्याल के जेरे असर अपने अफसाने को सामीन के सामने पेश करने की कोशिश की है आज की अफसाना निगारा नुसरत शमसी ने। तो आइए समाप्त करते हैं उनका अफसाना सफेद पैराशूट।
2: मुझे सफेद रंग इस हद तक पसंद है कि मैंने कभी जिंदगी में कोई दूसरा रंग पहना ही नहीं। या यूं कह लो कि जब से होश संभाला तब से मेरा बचपन कितना रंगीन गुजरा इसका मुझे इल्म नहीं। हाँ, जब से मेरी माँ ने मुझे सफ़ेद पैराशूट की कहानी सुनाई, उन्होंने इस रंग को मेरे अंदर जैसे जमा सा कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, और वो इतना पुख्ता रंग चढ़ाया कि फिर मैं ज़िंदगी भर सफ़ेद रंग में ही अपनी दुनिया बसा बैठा। जब मैं 3 साल का था तो मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, जिसकी हल्की हल्की छवि मेरे जहन में है, उनका चलना, उठना, बैठना, आवाज़ देना, प्यार करना, मेरे कपड़े बदलना, मेरी ज़िदें पूरी करना, मेरे काले होते दांतों की फिक्र, हर सुबह ब्रश कराते वक्त समझाना, अगर मेरा शू निकल जाता तो सुबह सुबह मुझे नहला धुला कर तैयार करना, ये सब मुझे हल्का हल्का याद है। शक्ल इसलिए नहीं भूल पाया कि ज़माना कैमरे का था। हाँ, तो जब मैं 3 साल का था कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। अब वो अक्सर अक्सर काम करते लेट जाया करती, फिर वो जल्दी जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाने लगी। कभी उनके हाथ में सुई लगी होती तो कभी सर में पट्टी बंधी होती। रफ्ता रफ्ता वो लगातार बिस्तर पर रहने लगी। मैं और मेरी बहन, जिसकी उम्र 5 साल के करीब रही होगी, अब हमें कभी दादों और कभी नानों के यहाँ रहना पड़ता। अब जब भी मम्मी की तबीयत बेहतर होती है और हम दोनों के करीब होती, हमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाया करती। कभी जंगल और जानवरों की, कभी परियों की, कभी फरिश्तों की, कभी नबियों की। फिर उन्होंने एक बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ किस्म की कहानी सुनाना शुरू कर दी, जिस सुनकर मैं और मेरी बहन बहुत हैरान हुए। वो कहानी उन्होंने फिर हर रोज़ सुनाना शुरू कर दी, जैसे उस कहानी के किरदार बन गए। अब हम वो कहानी मम्मी को सुनाया करते थे। इन दिनों हम तीनों बहुत ही खुश रहा करते थे, हालांकि मम्मी की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब उन्हें कई कई दिन डॉक्टर के यहाँ रहना पड़ता था, लेकिन जब भी उनके करीब जाते मुस्कुराकर हमारा जहन बदलने लगती और बातें करते करते किसी न किसी तरह हमारी बातों का इख्तिताम सफ़ेद पैराशूट वाली कहानी पर होता। हाँ, उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए मम्मी हर रोज़ कुछ नई बात शामिल कर देती। वो कहानी कुछ यूँ सुनाया करती थी कि बच्चों, एक नई कहानी सुनो, जैसे हमारी ये ज़मीन है और आसमान है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमारे लिए और ज़मीन और आसमान यानी दूसरी दुनियाएं बनाई हैं। जिस तरह हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी गाड़ी, बाइक या जहाज़ पर सफ़र करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। जिस तरह पानी में बगैर तैराकी का लिबास पहने हम तैर नहीं सकते और अलग किस्म के कपड़े पहने बगैर हम तैराकी नहीं कर सकते कि डूब जाने का ख़तरा होता है, बिल्कुल उसी तरह उस दुनिया में जाने के लिए सफ़ेद पैराशूट पहनना पड़ता है। जाने वाले को एक ख़ास किस्म के बेड पर लेटना पड़ता है, वो नहा धोकर सफ़ेद पैराशूट पहनता है, उसे खामोश भी रहना पड़ता है और आँखें भी बंद रखना पड़ती हैं। फिर एक और ख़ास जगह होती है, जैसे जहाज़ों के उड़ने की जगह ख़ास होती है, बिल्कुल वैसी ही उसका भी एक मैदान होता है और उस दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। सब लोग मिलकर उससे उस मैदान में छोड़ आते हैं, फिर अल्लाह ताला सफ़ेद परों वाले फरिश्ते को गाड़ी लेकर भेजते हैं और लोग वहाँ दूसरी दुनिया में जाकर रहने लगते हैं। हम दोनों बहन भाई मम्मी का मुँह हैरत से तका करते। फिर मैंने हैरानी से पूछा, फिर ये कि हो सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद वहाँ उस दुनिया में रहने चली जाऊँ? हमें लेकर जाएंगी? मेरी बहन ने मासूमियत से पूछा। नहीं नहीं, वहाँ छोटे

0: से नहीं जाते तो फिर आप हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, उसने फिर सवाल किया। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि बिल्कुल आप जैसे मेरे बच्चे वहाँ भी हैं, बल्कि उनके नाम भी यही हैं जो अभी तक मेरे बगैर रह रहे हैं। अब मैं उनके साथ रह लूँगी। आप लोग पापा को तंग नहीं करना, रोना धोना बिल्कुल मत, और जो मैं समझाती हूँ उसे याद रखना और अच्छा इंसान बनना, खूब पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनकर दिखाना। मैं वहाँ की दूरबीन से देखती रहूँगी। हो सकता है आप लोग अच्छे बच्चे बने रहें तो मैं वापस आ जाऊँ, पर मेरी एक शर्त है, इस बार मैं शक्ल बदल कर आऊँगी। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? ये भी तो देखना है कि मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि नहीं। वो मुस्कुराकर हमारे पेटों में गुदगुदाती तो समझ गए ना, मेरे दोबारा आने पर मुझे अच्छे बच्चे बने हुए मिलना और खा पी कर थोड़े बड़े भी हो जाना। अशु, तुम तो मुँह से निकाल लेना, बड़े हो जाना पापा की तरह, वो फिर गुदगुदाती। और हाँ, ये टॉप सीक्रेट है, अभी किसी को बताना मत। वो हमारे कान में फुसफुसाती और फिर सीने से लगाकर भींच कर प्यार करती। जब वो हमें अलग करती तो लगता कि रोई हैं, लेकिन वो तो मुस्कुरा रही होती थी। इस कहानी ने मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहने लगा कि कब वो दिन आएगा और मम्मी जाएंगी उस दुनिया में, जहां बहुत खूबसूरत पार्क होंगे, तितलियां होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, पेड़ होंगे और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजा करेंगी। आखिर वो दिन भी आ ही गया। मम्मी ने एक दिन अचानक ही आँखें बंद कर ली। उनके हाथ की लगी हुई सुई निकाल दी गई और एक सफ़ेद चादर उन्हें उड़ा दी गई। मैंने चुपके से अपनी बहन के कान में कहा, क्या मम्मी आज दूसरी दुनिया में जा रही हैं? उसने मुझे देखा और कहा, लग तो रहा है, लेकिन किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट है, मम्मी ने मना किया था। तो फिर सब रो क्यों रहे हैं? और क्या आज हमारे घर मम्मी के जाने की दावत है? पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। दादी ने मुझे बुलाकर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनाया और बड़े प्यार से समझाया कि अशु बेटा, मम्मी अल्लाह मियाँ के पास जा रही हैं, अब नहीं आएंगी, उन्हें प्यार कर लो और देख लो। पता है, मुझे सब पता है, मम्मी ने मुझे सब बता दिया था। मैं उनका हाथ छुड़ाकर भाग गया क्योंकि मुझे लोगों के हुजूम से घबराहट होने लगी थी। फिर वो सब होने लगा जो मम्मी ने कहानी में सुनाया था। कई घंटों की तैयारी के बाद उन्हें सफ़ेद लिबास, जिसे वो दूसरी दुनिया में जाने का पैराशूट कहा करती थी, पहनाया गया और लोग इकट्ठा होकर उन्हें उस मैदान में ले आए। मैं भी पप्पा की उंगली पकड़े साथ साथ था। अब मुझे तजस्सुस था उस जगह को देखने का जहाँ से फरिश्ते उन्हें लेकर दूसरी दुनिया में जाते। ये तजस्सुस बिल्कुल उसी तरह का था जैसे कोई बच्चा जहाज़ देखने की तमन्ना करता है कि वो कैसे उड़ जाया करता है। वहाँ की भीड़ में मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहा था और फिर कामयाब भी हो गया। सबकी टांगों के बीच से घुसकर मैं बिल्कुल उनके करीब हो गया। पप्पा बराबर हिचकियों से रो रहे थे और मैं हैरानी से उनका मुँह तके जा रहा था कि मम्मा को तो कहानी सुना कर गई थी और फिर ये सब। कुछ अरसे बाद, जैसा कि मम्मी ने कहा था मैं वापस आऊँगी, वो आ भी गईं, लेकिन उनकी शक्ल भी बदल गई थी और वो खुद भी। फिर भी मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी बहन जो अब 9 साल की होने को आई थी, चुप चुप सी थी। मैं सुर्ख जोड़े में लिपटी अपनी मम्मी के पास घुसा चला जा रहा था और चाहता था कि वो पहले की तरह भींच कर मुझे सीने से चिमटा लें। ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरी रूह को वो सुकून न मिला जिसकी उसे तलाश थी। मम्मी की शक्ल भी बदल गई थी, साथ में काफ़ी बातें भी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी थी। गुजरते वक्त के साथ मुझ पर मेरी माँ की बनाई हुई कहानी खुलती गई और उसके सुनाने का मकसद भी समझ में आता गया। वक्त गुजरता गया और हम जवान हो गए। मेरी बहन की शादी हो गई और मेरी भी, लेकिन मेरी ज़िंदगी से सफ़ेद रंग ना निकल सका। मेरी दुल्हन नीलो भी सिल्वर कलर के जोड़े में मेरे सफ़ेद पेंट वाले कमरे में मुझसे मिली थी और मेरी शादी का सूट भी सफ़ेद शेरवानी का ही था। मम्मी की सुनाई कहानी का मकसद पूरा हो चुका था और मैं एक कामयाब खुशबाश इंसान और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। नीलो बहुत अच्छी हमसफ़र साबित हुई। उसके साथ से ज़िंदगी ने कई रंग धनक देखे जिनकी रोशनी ने मुझे अंदर तक नूर से भर दिया। नीलों के साथ ज़िंदगी का सफ़र कहीं हसीन तो कहीं खारदार तो कहीं नर्म मिट्टी पर चलते गुजरता चला गया। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी ज़िंदगी की शाहरा उसे हम सफ़र के साथ रंगीन थी, लेकिन फिर भी इस सफ़ेद रंग को अपनी ज़िंदगी से ना निकाल सका। सफ़र की मुसाफत के भी 40 पड़ाव गुजर चुके थे। अब ना जवानी रही थी और न पूरा बुढ़ापा, लेकिन सफ़र अभी बाकी था कि एक दिन अचानक ही नीलो मेरा साथ छोड़ गई। मम्मी की सुनाई कहानी मेरे घर में फिर शुरू हो गई और मेरी आंखों के सामने 65 साल पुरानी कहानी रील की तरह चल पड़ी और मैं अपनी नीलो का पैराशूट निकाल कर उसे बाहर दे आया।
1: सफ़ेद पैराशूट। अभी आप समाप्त फरमा रहे थे नुसरत शमसी से उनका अफसाना

0: संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार। घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार। सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार। ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज की अवधि लोकगीत कलाकार अंजुलि श्रीवास्तव। इनके स्वर में सबसे पहले आइए सुनते हैं देवी गीत।

अंजुली श्रीवास्तव के स्वर में सोहर के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। अंजुली श्रीवास्तव के स्वर में अवधि लोकगीत आप दोपहर 2:45 पर हमारे कार्यक्रम लोक माधुरी में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 10 बजे हैं फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्ररोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सुबीर सेन की आवाज में आस का पंछी फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 10:10 हुए हैं, सुनिए न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना आज से 15 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। श्री मैककेना कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार को वे भारतीय खाद्य आयातक मंच और एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मंगलवार को श्री मैककेना वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और CII द्वारा आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्री पीयूष गोयल ने 30 जनवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 4 वर्षों में विकसित देशों के साथ 8 मुक्त व्यापार समझौते FTA किए हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति GDP भारत की तुलना में काफी अधिक है। ग्रेटर नोएडा में ICAI वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंट्स को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि FTA पूरे यूरोप को कवर करते हैं, जिसमें 27 देशों का यूरोपीय संघ और 4 देशों का EFTA शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही चिली के साथ एक FTA करने वाला है, जिससे देश के विकास और औद्योगिक जरूरतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के एक अत्यंत अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय है। इस अवसर पर भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन भी उपस्थित थे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने कोस्टा रिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति और सरकार को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और जनसेवा में सफलता की कामना की। श्रीलंका के कंके संथुराई और भारत के नागपट्टिनम के बीच चलने वाली एक यात्री नौका शुक्रवार रात इंजन खराब होने के कारण कई घंटों तक समुद्र में फंसी रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नौका दोपहर लगभग 2:30 बजे कंकेस्थुराई से रवाना हुई थी और उसे लगभग 4 घंटे में नागपट्टिनम पहुंचना था। 144 यात्रियों को ले जा रही ये नौका के इंजन में नागपट्टिनम तट से लगभग 2 समुद्री मील दूर कल्लर के पास खराबी आ गई। भारतीय अधिकारियों और स्थानीय मछुआरों को नौका की के लिए भेजा गया, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बंदरगाह पर वापस लाया गया। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के देशों को विश्व स्तरीय तकनीक तक पहुंच देना चाहता है, ताकि वे विरोधी देशों पर निर्भर न रहे। अमेरिकी विदेश विभाग की उपसहायक सचिव बेथनी मॉरिसन ने अमेरिका भारत AI और उभरती प्रौद्योगिकियों फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के तेजी से विकास के साथ स्पष्ट नियम और सुरक्षा जरूरी है। तकनीक का उपयोग खुलेपन, सुरक्षा और आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि AI क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ रही है और भारत अमेरिका सहयोग से दोनों देशों को वास्तविक फायदे मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनी

0: कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने 10 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान को घेरने की नई कोशिश की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के साथ संघर्ष

0: देशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के साथ संघर्ष के बाद ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। यहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस वजह से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी देखी जा रही है। ईरान बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है और हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन बना सकता है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने तथा लेबनान में सरकार की पूर्ण संप्रभुता बहाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया में हंता वायरस के 2 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं, एक स्पेन में और दूसरा दक्षिण अटलांटिक महासागर के दूरस्थ द्वीप ट्रिस्टन दा कुन्हा में। ये मामले एक लग्जरी क्रूज जहाज से शुरू हुए संक्रमण से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक इस वायरस से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आम लोगों के लिए जोखिम कम है और ये वायरस आसानी से नहीं फैलता। संगठन के अनुसार जहाज पर मिले कुछ मामले हंता वायरस के इंडीज स्ट्रेन से जुड़े हैं, जो इस वायरस का एक ऐसा प्रकार है जो इंसानों के बीच फैल सकता है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के फोंग यू झू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कोंग चियांग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिराट का सामना करेंगे। फुटबॉल में भारत ने कल चीन में लेबनान को 4-0 से हराकर एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत के लिए प्रतिका बम्मन ने 2, अलवा देवी, सिंजाम और जोया ने 1-1 गोल किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप है आकाशवाणी लखनऊ के साथ। नए तराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से लेकर आएंगे हम, बस कुछ ही पल।

0: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
1: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
0: एक ऐसा कार्यक्रम
1: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
0: विकास की बातें, संगीत की मिठास
1: और एक नए भारत की आवाज।
0: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
1: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है नए तराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम चांद मेरा दिल इस फिल्म के इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ। आवाज राघव चैतन्य और जोनिता की है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत सचिन जिगर का।

चित्रपट से कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह को फिल्म एक दिन में। बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत राम संपत का।

ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं ए आर रहमान को। फिल्म में है तेरे इश्क में बोल इरशाद कामिल के हैं और ये गाना पहुंच रहा है चित्रपट से कार्यक्रम में आपके रेडियो सेट पर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: चित्रपट से कार्यक्रम में स्वागत है आपका फिर एक बार। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नेहा कक्कड़ और फरहान साबरी को फिल्म एक दीवाने की दीवानियत में। बोल समीर अंजान के हैं और संगीत DJ चेतस और लीजो जॉर्ज का है।

विशाल मिश्रा का लिखा गीत, उनका सजाया संगीत और उन्हीं की आवाज, यानी विशाल मिश्रा के स्वर में उनका लिखा हुआ और उनका संगीतबद्ध किया हुआ गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बैड न्यूज से। कार्यक्रम है चित्रपट से।

आदित्य रिखारी और श्रेया घोषाल की आवाज को अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है पति पत्नी और वो दो, बोल कुमार के हैं और संगीत रोचक कोहली का।

0: आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से और समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: चित्रपट से कार्यक्रम में आइए, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भूत बंगला फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसमें आवाज है जावेद अली, श्रेया घोषाल और पृथ्वी गंधर्व की, बोल यतीन्द्र मिश्रा के हैं और संगीत प्रीतम का।

मातृभूमि। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना, निहाल ताउरो और अंकोना मुखर्जी की आवाज में, बोल समीर अंजान के हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का।

मधुवंती बागची और सचिन जिगर की आवाज़ को सुनवा रहे हैं हम। फिल्म है थम्मा, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत सचिन जिगर का।

और अब आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है चित्रपट से कार्यक्रम का अंतिम नजराना, फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी से। और इसमें आवाज है शेखर रवजियानी, श्रुति पाठक और विशाल ददलानी की। बोल अन्विता दत्त के हैं और संगीत अभिजीत नलानी का।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं और अब शुरू होने जा रहा है आपका फोनिंग इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम में आज आपसे बात करूंगी मैं शिखा दुबे और कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बात करने के लिए नोट कर लीजिए हमारा फोन नंबर है 0522-223-8825। आपकी कॉल्स का हमें है इंतजार। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी,
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमेल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी पूरन जी, क्या हाल है आपके?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, और थोड़ी बहुत अगर हाल खराब भी हो जाए तो अगर आकाशवाणी लखनऊ पे अगर पहला कॉल मिल जाए तो वो सब कुछ हाल चाल दूर उड़ जाता है और हम खुश हो जाते हैं मैडम।
0: जी हाँ, कॉल लग जाती है, अपने पसंद का कोई भी काम अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी होती है। तो पूरन जी बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा बोल राधा बोल, वो गाने के बोल है आ जाना प्रोग्राम आकाशवाणी लखनऊ बिना दिल नहीं लगे गाने के बोल।
0: जी हाँ, आकाशवाणी लखनऊ को सुने बिना दिल नहीं मानता पूरन जी, लेकिन गाना बोल राधा बोल फिल्म का है और आपने इसमें अपनी पंक्तियां भी जोड़ दी तो बहुत खुशी की बात है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी अपनी पसंद का गीत सुनिए।
1: हेलो

0: कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और आइए देखते हैं कौन से कॉलर हमसे जुड़े हैं।
1: नमस्कार
0: जी नमस्ते, अपना नाम बताएं।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी
0: आप सड़क पे हैं क्या?
1: जी मेरी दुकान बिल्कुल रोड के किनारे पे है।
0: अच्छा,
1: तभी का काम करता हूँ, कपड़े सिलता हूँ मैं, और आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, तो काम करते करते फोन लगा देता हूँ, तो बाहर निकलते आवाज आ जाती है।
0: जी हाँ, वही आवाज आ रही थी, तो चलिए आपका ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से अपना गाना बता दीजिए। जी गाना बताइए।
1: हेलो,
0: हाँ हाँ हेलो।
1: हाँ, फिल्म का नाम है खूबसूरत, मेरा एक सपना है, देखो तुझे सपने में।
0: तो सुनवा दें आपको, आपका जो सपना है वो सुन लीजिए गाने में, ठीक है?
1: जी मैं
0: जी
1: पूनम जी और अविनाश जी के साथ सुनना चाहता हूँ।
0: जी चलिए, आप सभी आनंद उठाइए इस गीत का। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और आइए अब अपने अगले कॉलर से हम बात करते हैं। हेलो
1: जी, दीदी को नमस्कार।
0: जी नमस्ते, कौन बोल
1: जी,
0: रहे हैं?
1: आवाज बहुत ही कम आ रही है आपकी।
0: आवाज कम आ रही है, अब देखिए।
1: हाँ, अब बढ़िया आई।
0: अच्छा अच्छा, और बताइए, नाम बताएं अपना।
1: जी दीदी, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी रामबाबू जी, क्या हाल है भोपाल के?
1: जी दीदी, हाल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। धूप खिली हुई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मियों का आनंद ले रहे हैं।
0: चलिए बढ़िया है।

0: गर्मी का भी आनंद लेना बहुत जरूरी है ना, जब पसीना।
1: किसानी में तो हर मौसम का आनंद ही लेते हैं, बारिश का भी आनंद लेते हैं, सर्दी का भी, गर्मी का भी, सभी प्रकार के मौसमों का आनंद ही लेता है किसान।
0: नहीं चलिए, ये बहुत मतलब हम क्या कहें, कितनी तारीफ करें इस बात की कि हमारे किसान सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम को वो फेस करते हैं, है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो बताइए कौन सा गाना आपको सुना दें।
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है जाल और गाने के बोल है ए मेरे दोस्तों घर मोहब्बत करो। दीदी कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा जो मेरे साथ फोन लगाने में हेल्प कर रहे थे।
0: अच्छा चलिए, नाम ले लीजिए।
1: जी दीदी।

0: ये कौन सा गाना आपको सुना दे?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है जाल और गाने के बोल है ए मेरे दोस्तों अगर मोहब्बत करो। दीदी कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा जो मेरे साथ फोन लगाने में हेल्प कर रहे थे।
0: अच्छा चलिए नाम ले लीजिए।
1: जी दीदी हमारे साथ बैठे हैं वीर सिंह जी राजपूत जी, हन्नान सिंह जी, गुलाब सिंह जी और केसरी सिंह राजपूत जी सुन रहे हैं मांगीलाल चंदेल जी। दीदी दीदी आपके लिए
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दोस्त मिलके इस गाने का
1: हमारी पूनम दीदी के लिए रहेगा कानपुर से
0: जी। चलिए आनंद लीजिए इस गाने का, ठीक है? फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: किसान का काम है अपना।
1: अच्छा, तो इस समय क्या चल रहा है खेत में?
0: अभी समय तो खाली है, इस समय तो बस यही शादी ब्याह।
1: अच्छा, ये समय शादी ब्याह निपटाने का हो जाता है ना, कि इस समय खेतों में कोई बुआई और कोई फसल नहीं खड़ी होती है?
0: जी, कुछ थोड़े दिनों के बाद में यही धान की नर्सरी की जाएगी।
1: चलिए, आपके माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ पता चल जाता है ना।
0: जी,
1: तो लालमणि जी बताइए, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: जी, मूवी है खानदान। और फिल्म के बोल रहे
1: जी,
0: तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो।
1: चलिए, बहुत खूबसूरत सा गाना आपने सेलेक्ट किया है, तो सुनवा दें।
0: जी, सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से डेडिकेट रहे।
1: जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और एक बार फिर से हम अपना फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं, हमारा नंबर है 0522-223-8825। और कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं शिखा दुबे। और अगर आप भी हमें फ़ोन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो हमें फ़ोन ज़रूर करिए। आइए देखते हैं अब हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
1: मैं संगम नगरी प्रयागराज से लालमणि बोल रहा हूँ।
0: जी संगम नगरी से लालमणि जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैम यही खेती।

0: और आइए अब देखते हैं कौन से कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। हाल
0: जी सतीश जी, क्या हाल हैं?
1: चाल बढ़िया हैं आप? मेरे हाल चाल बढ़िया हैं, आपके भी हाल चाल बढ़िया हैं। इसलिए आपका प्रोग्राम भी सुन रहा था, अच्छा लग रहा है। आपसे मेरी इतनी मैं प्रासम नाम

0: मैं कॉल लगाने बेस्ट रहे थे मेरे कॉल अब।
1: अच्छा, इसका मतलब शुरू से आपने नहीं सुना हमारा प्रोग्राम ना?
0: अरे मैडम जी, मैं आपका कॉल लगाना और लोहे चना चबनो बराबर है।
1: जी, सही कह रहे हैं।
0: लगाना बहुत तो, कॉल लगाना उनकी खीर है उनकी।
1: मतलब प्रोग्राम शुरू हो जाता है, आप लोग फोन लगाने में व्यस्त हो जाते हैं, सुन नहीं पाते।
0: लगाना उनकी खीर है
1: जी,
0: बहुत पापड़ बेलने पड़ते तब कॉल लगती है। सही कह रहे मैडम जी। और जब आज नहीं विश्वास नहीं होगा तो आप भी कभी कोई अनाउंसर आएगा तो आप भी ट्राई मारिए तो आपको पता लग जाएगा।
1: नहीं, हम जानते हैं, हम जानते हैं सतीश जी कि बहुत मुश्किलों से फोन लगता है तो।
0: हाँ, क्योंकि बहुत श्रोता लाइन पे लगे रहते हैं, जब जिनकी घंटी पहुंची सुमन पे या फिर यूट्यूब पर रिसीव होगी, समझ लो भाई कॉल लग गई। और अजानों में तो घंटी जाती है एक संग, तो ऐसे अभी ऐसा होता है।
1: तो चलिए, आपको हम अपनी पसंद आप बता दीजिए ताकि और लोग।
0: मैडम जी, मेरी किन से बात हो रही है? तो आपने नाम नहीं बताया।
1: जी, हमने नाम बताया, मेरा नाम है शिखा दुबे।
0: अच्छा, शिखा दुबे। हाँ, तो आपसे बहुत पुराने अनाउंसर आए और बहुत। और मैडम जी, आपके आरजी नहीं आती है? मैडम पहले आरती मैडम आती थी युगवाड़ी वाले में, तो वो अब नहीं आती है।
1: चलिए, हाँ, अभी आप हमसे बात करिए, है ना, और बताइए अपने पसंद का गाना।
0: बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा था, उसे भी मैडम सही थी, लेकिन जो आप लोग जो बढ़िया से बात कर रहा हूँ। मैं तो आपके स्टूडियो आए थे, आप तब मिली नहीं थी।
1: अच्छा,
0: मैं मिली थी पूजा विमल है।
1: तो सतीश जी, अगर आप इस तरह से हमसे लंबी लंबी बातें करते रहेंगे तो बाकी लोग बेचारे वो भी कॉल लगा रहे हैं।
0: मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो घर के खाने में जैसे करिंदे हैं, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये तो हो ही जाए खाने में। ये तो मौसमी खाना है, तो इनका गर्मी में लाभ उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। सेहत के लिए पानी पीना चाहिए, ज्यादा नहीं।
1: जी, बहुत सही सलाह आपने हमारे सभी श्रोताओं को दी। और अब जल्दी से गाना भी बता दीजिए।
0: सही सलाह देता हूँ, पशु हैं, पक्षी हैं, तो इनको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि गर्मी मौसम में है।
1: जी बिल्कुल, अब आप जल्दी से गाना भी बता दीजिए।
0: मैडम जी, मैं तो गाना तो बता रहा हूँ, मूवी के नाम है दिलवाले, बस दिलवाले का है, दिल फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। ओ प्रिया प्रिया, ओ कच्छ, मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम जी।
1: अब आपसे इतनी लंबी बात हो गई, अब मित्रों से कहिए।
0: एक सेकंड मैडम जी, नहीं रुक जाओ। तो आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, और अवनाश सिंह और राकेश शिमला सिंह, और उसके बाद हैं ओमका सीतापुर से सुनील है। और मैडम जी, आपने कभी बचपन में कबड्डी खेली?
1: अब हम ये बातें फिर किसी दिन करेंगे, अभी हम आपको गाना सुना दें क्योंकि बाकी लोग भी लाइन पे हैं। तो फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में हमारे अगले श्रोता क्या कहना चाहते हैं आइए जानते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, जिला इटावा पोस्ट कर रही हूँ, लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। दीदी
0: जी, राहुल कुमार जी, स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। हेलो
1: जी,
0: जी राहुल जी, क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं दीदी, घर पे रहता हूँ, जरा से दिखाई नहीं देता है, और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, उर्दू से अपना टाइम काटते हैं।
0: नहीं नहीं, तो चलिए, टाइम क्या काटते हैं, बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलती रहती है रेडियो के माध्यम से, है ना?
1: जी सही बात है, लेकिन रेडियो तो कई दिनों से सुन रहा हूँ, कम 2001 से रेडियो सुन रहा हूँ, तब से मेरा इतना साधन हो गया है कि रेडियो छोड़ने का मन ही नहीं करता हमारा, इतना अच्छा लगता है हमको।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी रेडियो के माध्यम से मिल जाती है ना, और अपनी पसंद।
1: आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है।
0: जी हमें तो आपकी आवाज बिल्कुल साफ मिल रही है, अब देखिए ठीक मिल रही है? हाँ हाँ, आवाज मिल रही है,
1: आवाज बहुत स्लो आ रही है।
0: अच्छा, नहीं नहीं, हमने तो अपना पूरा वॉल्यूम कर रखा है। चलिए राहुल जी, आपको आपकी पसंद का जो गाना है वो हम सुनवा दे रहे हैं। आपने कहा था नदिया के पार फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश हमसे करी है, तो आपको सुनवा देते हैं।
1: कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं, दो तीन तीन चार बार।
0: चलिए ले लीजिए नाम।
1: फूलचंद बाल भाई साहब हो गए, पूरन वर्मा जी हो गए, और दिनकर सिंह जी हो गए, और मांगेला चंदील भाई साहब हो गए, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, और सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: कार्यक्रम में इस समय हमसे जुड़े हैं देवी शंकर जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: जी, देवी शंकर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो
1: मैडम जी,
0: जी जी आवाज हमारी में।
1: देवी शंकर शुक्ल सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य आदर्श इंटर कॉलेज दशणी फतेहपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी आप प्रधानाचार्य हैं। हेलो
1: हाँ
0: जी
1: हाँ, मैं 2014 में रिटायर हुआ।
0: अच्छा अच्छा, आप रिटायर हो गए हैं, तो कैसा रहा आपका ये अध्यापन कार्य का जो ये अनुभव रहा, ये कैसा रहा?
1: ठीक रहा, संतोषजनक रहा।
0: संतोषजनक रहा, बच्चे जो आपके पढ़ाए हुए हैं वो आगे निकल जाते हैं, तो कभी मिलते हैं तो
1: बहुत बहुत लड़के आगे निकल चुके हैं।
0: बड़ी खुशी होती होगी। अरे वाह, तो बड़ी खुशी होती होगी आपको कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज
1: बच्चे जो है पुत्र के समान होते हैं। तो जो है खुशी तो बहुत होती है
0: जी। आपने बहुत अपनी जिंदगी का बहुत बहुमूल्य समय बच्चों को पढ़ाने में निकाला, और आज बच्चे आगे बढ़ के आपको भी प्रणाम करते होंगे कि हमारे गुरु जी हैं, है ना?
1: जब भी मिलते हैं जब
0: जी। तो देवी शंकर जी बताइए, कौन सा गाना आपको सुनवा दें?
1: मेरा गाँव मेरा देश का जो है, आया आया टरिया पे कोई चोर।
0: ठीक है, तो सुनवा देते हैं आपको।
1: हाँ हाँ, धन्यवाद
0: जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और आइए देखते हैं आप हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हम सलमान सिंह बोल रहे हैं बामोरी से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: मैम, हम 6 महीने से लगा रहे हैं, वो आज लगा है।
0: अच्छा, 6 महीने से लगा रहे हैं
1: भाई? 6 महीने से ट्राई कर रहा है, आज लगा है अचानक में।
0: अरे,
1: आज हम लगावे की सोच नहीं रहे थे।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, लो थोड़ा और बात कर लीजिए।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल, हम आपसे बात करेंगे। 6 महीने से आप कोशिश कर रहे हैं। हेलो।
2: हेलो मैडम जी, मैं तो बहुत संत हूँ।
0: अच्छा, आप क्या नाम बता दें अपना?
2: हाँ, गेंदा है।
0: क्या है?
2: गेंदा। गेंदा,
0: गेंदा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत और प्यारा सा नाम है आपका, गेंदा, है ना?
2: हाँ ना, खा रहे थे हम।
0: हाँ हाँ,
2: देरानी जेठानी दो ही खा रहे थे।
0: अच्छा अच्छा,
2: खाना।
0: हाँ हाँ, तो इसी में फोन लग गया आज, 6 महीने बाद लग गया फोन।
2: हाँ, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे।
0: चलिए, आपकी मेहनत सफल हुई और हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोग इतने इतने लंबे समय से ट्राई करते रहते हैं फोन करने के लिए, ना?
2: हेलो।
0: हाँ हाँ, तो गेंदा जी बताइए कौन सा गाना सुना दें?
2: वही बार सुना दो, ससुराल गेंदा फूल।
0: अच्छे, ससुराल गेंदा फूल। अरे वो तो हमें तो जो आपके साथ थे में थे उन्होंने तो दूसरा गाना बताया था, है ना? तो चलिए अभी ये वाला गाना सुन लीजिए, अगली बार आपको जो आप कहेंगे वो सुनवा देंगे। हाँ चलिए, हम सुनवा दे रहे हैं आपको। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी कोशिश करी इसके लिए हृदय से धन्यवाद।
2: ओके।

0: और आइए अब देखते हैं किसका हमसे बात करने को दिल कर रहा है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार। राधे राधे मैम जी।
0: जी राधे राधे, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: जी आशुतोष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। और बताइए त्रिपुरा।
1: धन्यवाद मैम, आपने मेरे को प्रोग्राम में शामिल किया।
0: अरे हम तो अपने हर श्रोता को शामिल करना चाहते हैं कब, लेकिन जो है फोन लाइन जब बिजी रहती है ना तो आप लोग की कॉल्स नहीं लग पाती हैं, है ना?
1: बिल्कुल मैम जी। और काफी दिन बाद में आज प्रयास किया, फोन लग गया मैम जी।
0: अरे चलिए, आपने भी काफी दिनों बाद प्रयास किया, और इससे पहले जो हमारे श्रोता थे उन्होंने 6 महीने से वो लगातार कोशिश कर रहे थे और आज उनकी कॉल लगी, बहुत खुशी होती है।
1: मैं बेस्ट नहीं करूंगा।
0: हाँ जी,
1: काफी श्रोता प्रयास कर रहा है।
0: जी जी,
1: तो मैम जी आज मुझे सुना दीजिए। 1986 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है सड़क से सुंदर। गाने को गाया है संगीत का दो देवी, लता जी और आशा जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी जी ने और लक्ष्मीकांत तारीलाल जी ने सुर से सजाया मैम।
0: अरे वाह।
1: मैं 2-4 दोस्तों को याद करना चाहता हूँ क्योंकि काफी दिन बाद मेरा फोन लगा है।
0: जी जी, कर लीजिए याद।
1: मैम आप सुनेंगे पूरन वर्मा जी, राम बाबू शर्मा जी, रमेश प्रजापति जी और पूनम जी, भगवान जी, गणेश दास जी, गंगाधर जी, देवी शंकर जी और केसरी सिंह राजपूत जी और नेटवर्क सारे सुन रहे मैम जी।
0: जी त्रिपुरा से आशुतोष जी, आपने हमें कॉल किया और अपनी पसंद बताई, हम आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के हमारे अंतिम कॉलर कौन हैं, आइए जान लेते हैं। हेलो
1: रेखा जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में, और बताइए।
1: थैंक यू सो मच रेखा जी। मैं बताऊँ
0: जी,
1: अभी जो पिछले कॉलर का कॉल था उससे पहले जो गेंदा जी का कॉल आया था,
0: हाँ हाँ
1: जी, उनको हम सलाम करते हैं क्योंकि 6 महीने से वो ट्राई करते रहे, उनका कॉल आज जाके आकाशवाणी लखनऊ में लगा।
0: जी जी,
1: इससे देखिए कि आप आकाशवाणी लखनऊ के कितने श्रोता है और कितना प्यार करते हैं आकाशवाणी लखनऊ को।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि आप सबका ढेर सारा प्यार हमको मिलता है, और कितने कितने लंबे अंतराल पे मतलब कोशिश आप लोग करते रहते हैं लगातार, और तब जाके कहीं फोन लग पाता है ना।
1: जी सीता जी, मैं बताऊँ आपको, जब मैंने शुरुआत करी थी ना आकाशवाणी लखनऊ को कॉल लगाने के लिए, तो बताऊ मैं आपको, मुझे भी करीबन 3 महीने का वेट करना पड़ा तब जाके मेरा कॉल लगा था यहाँ पे। जी उसके बाद में जब मैं एक बार मेरा कॉल लग जाने के बाद में दीप्ति जी से मेरी बात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो फिर से मेरा कॉल का सिलसिला शुरू हुआ आकाशवाणी लखनऊ के लिए।
0: चलिए बहुत, तो अभी कितने दिन बाद आपने लगाया है फोन?
1: जी मेरा तो मतलब हफ्ते 2-3 दिन 4 दिन में लग जाता है शिका जी, लेकिन जब शुरू समय मैंने लगाना शुरू किया था ना, उस समय करीबन 3 महीने से रेगुलर डायल किया, उसके बाद मेरा कॉल लगा था।
0: तो प्रेम सिंह जी, थोड़ा थोड़ा समय दे दिया करिए दूसरे कॉलर्स के कॉल के लिए भी, है ना। जैसे आपका लग
1: शिका जी, एक बात और है, कॉलर को अगर समय देंगे ना तो उसमें हमारी थोड़ी ऐसा होगा जैसे कि

0: बार बार हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। हम तो तहे दिल से मतलब आकाशवाणी लखनऊ को चाहते हैं, तो हमारा तो ऐसा प्यार है लखनऊ के लिए कि हम तो रुक ही नहीं सकते।
1: चलिए
0: जी
1: ठीक है
0: बिल्कुल
1: प्रेम सिंह जी, चलिए बताइए, नहीं तो आपका गाना नहीं सुनवा पाएंगे। गाना बताइए कौन सा सुनना है।
0: जी, फिल्म मकाना में बंटवारा और गाने के बोले सारे वास्ते डोला, नैन मेरे जागे जागे, मेरे नैन हमेशा आकाशवाणी लखनऊ के लिए जागते हैं, वो मेरा दिल हमेशा लखनऊ के लिए धड़कता है, मैं आकाशवाणी लखनऊ का दीवाना हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको हम ये गाना सुनवा देते हैं।

बंटवारा फिल्म के इस अंतिम गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त शिखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नव धड़कन देश की, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। तो बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं आशा फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। बोल है आनंद बख्शी के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब आपको जो गीत हम सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है अखियों के झरोखे से, इस फिल्म से लिया है, और आवाज़ है हेमलता की, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान

0: करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से।

0: लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत से सजे कुलवंत जाने के बोलों को दादा फिल्म में, आवाज यशुदास की।

आइए अब सुनते हैं कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ में कल की आवाज़ फिल्म का गीत, संगीत नदीम श्रवण का, शब्द रचना समीर की।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ, जो है धड़कन देश की। सदाबहार नगमे, जी हाँ, वो नगमे अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो छेड़ जाते हैं दिल के तारों को। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं राजकुमार फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल है शैलेंद्र के, संगीत शंकर जय किशन का।

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में शिकारी फिल्म का गीत। संगीत जीएस कोहली का, शब्द रचना है फारूक कैसर की।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

आइए अब सुनते हैं नौशाद के संगीत से सजे शकील बदायूनी के बोलों को फिल्म लीडर में। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म से। आवाज़ है महेंद्र कपूर की, संगीत ओपी नैयर का, बोल SH बिहारी के।

इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एन एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है।

इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप समवेत स्वर में देशगान सुन रहे थे। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही देर में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मग़रबी बंगाल में बीजेपी के पहले वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उहदे और राजदारी का हलफ लिया। मरकज़ी वज़ीर दाखला अमित शाह की मौजूदगी में कल कोलकाता में हुई बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में जनाब अधिकारी को बिला मुकाबला लीडर मुंतखब किया गया था। हलफ बरदारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर जेपी नड्डा, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़राए आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा मुतअद्दिद रियासतों के वज़राए आला और सीनियर लीडरान मौजूद थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़ेर एहतमाम दूसरी ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब योगी इस मौके पर एक सोवेनियर भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि यह मुकाबला मुल्क भर से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाड़ियों के दरमियान हम आहंगी, दोस्ती और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को मज़ीद तकवीत देगा। रियासत में 7 मई से डिजिटल मर्दुम

0: महामारी के तहत पहले मरहले की खुद गिनती शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल मरदमशुमारी के पहले मरहले को ऑनलाइन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी अमल है और इसमें हर शहरी की शिरकत इंतहाई ज़रूरी है। इस दौरान नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना मरदमशुमारी फॉर्म ऑनलाइन भरा। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर, काबीनी वजीर कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी कल खुद गिनती का अमल मुकम्मल किया। उत्तर प्रदेश के इलाकाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशंस ने कल यूनिसेफ के तआवुन से लखनऊ में यूनिसेफ के दफ्तर में सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन पर बेदारी और सलाहियत साजी के सेशन का इनेकाद किया। तकरीब में रियासत के चीफ प्रिंसिपल मरदमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने वजाहत की कि खुद शुमारी मरदमशुमारी 2027 की एक बड़ी इख्तरा है, ये मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज आज और कल 18 मजामीन में लेक्चरर ग्रेड के 624 ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहान करा रहा है। दो शिफ्टों में होने वाले इस इम्तहान में तकरीबन 4,64,605 उम्मीदवार शामिल होंगे। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि तमाम इम्तहान मराकज़ के कमरों और अहम मकामात को AI पर मबनी CCTV कैमरों से लैस किया गया है और उन्हें ज़िला कंट्रोल रूम और कमीशन के मरबूत कंट्रोल कमांड रूम से मुंसलिक किया गया है। इम्तहान के तकद्दस से समझौता करने वालों और नकल माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद ज़िला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में ख़ानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट, मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को ख़त्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वजीर AK शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: महकमा मौसमियात ने आज मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने कई जगहों पर तेज़ हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज़ लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ़ाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम है तैयार। सब श्रोता पंचन का ममता के नमस्कार। जल संकट के निकारी विकल्प, जल संरक्षण के लेके संकल्प। हाँ श्रोता पंचो, पानी जौन हमरे सबके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखो, हमार देही माँ आधा से ज्यादा मने 70%

ये से बना है। और ये जो हमार पृथ्वी है ना, वहो जले पटकी है, मने चारों ओर यह जले जल। पंचो मने ही एक बरिया खाना के बगैर रह सकत है, मूल पानी के बगैर ना ही। और हम ही मनुष्य न खाली नहीं, बलुक हरहा गोरु चिरैया चिंगूर और कयू जीव जंतु सब जल पर निर्भर है। और देखो दिन ब दिन जल संकट बढ़ते जाते हैं, मने ई एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। और कई स्थानन पर ई जल संकट के भयानक परिणाम भी हम सबका

और देखो दिन ब दिन जल संकट बढ़ते जाते है, मने ये एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और कई स्थानन पर ये जल संकट के भयानक परिणाम भी हम सबका देखे का मिलत हैं और सुने का भी मिलत हैं। मने दूर दूर से बहनी होरी लाइन लगाए के पानी भर भर लौती हैं, तब घर के सगरी टहल निपटावत हैं, खाए पिए के साथे पानी से कई काम होत हैं, मने बर्तन चौका कपड़ा लत्ता साफ सफाई सब सम्मा जो है सगरी जो है काम पनिए के है। मुला यहाँ भी लापरवाही से बहुत पानी भे बेजा हो जात है, तो यह के संरक्षण के बुद्धिमता से यह के उपयोग के निवारक उपाय हम सबका जानब बहुत जरूरी है। तो इके उपाय के विषय में आगे भाई बात करब, मूल पहले हम श्रोता पंचन के फरमाइशी फिल्मी गीतन और ईमेल उपाती की ओर बढ़ चली। कहे कि आज तो माह के दूसरा शनिवार है, शब्द गीतन एक के दिन जी माँ हम आप सबका आपके फरमाइश के फिल्मी गीत सुनवाई थे और आज के शब्द है रिश्ता और आँखें। तो श्रोता पंचो जैसा कि काल मात्र दिवस है, तो चलो यह जो है दिवस का समर्पित की जो है हम फिल्मी गीत आप सबका सुनवाई। और जी माँ देखो रिश्ता और आँखें सब आई हैं, तो आप सब पंचो देखो आज जो पाती आई है वह माई शब्द शामिल है और यही भाव शामिल हैं। तो आप सब चलो पहले पाती भाई जल्दी से ईमेल पढ़ लीन जाए। तो चलो देखो देखा जाए कि पहली ईमेल की आवा है, तो ई है नीलिमा द्विवेदी बहनी के, जो नावा है ग्राम व पोस्ट महुलारा तहसील राम स्नेही घाट जिला बाराबंकी से। और दूसरा ईमेल आवा है ग्राम भीमापुर पोस्ट बाबूपुर गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी से। और भेजे वाले हैं श्रोतापंच सरिता मिश्रा, राजकुमार मिश्रा, नितिन मिश्रा, श्रद्धा मिश्रा। ई सब श्रोतापंचन के फरमाइश है जय विक्रांता फिल्म के गाना सुने के, जी के बोल हैं रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तो पंचो आनंद उठाओ आप सभी गीत के।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ श्वेता पंचो, महतारी पूत बिटिया के रिश्ता तो सबसे सुंदर होते हैं, सबसे निराला होते हैं। तो अब श्वेता पंचो, फिर से जल संरक्षण के उपाय के बारे में जाना जाए तो देखो, ज्येष्ठ के महीना और गर्मी तो हीन है, मुला बीचे कुचे इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न का कहा जाए तो या नाराज आंधी तूफान और वाके साथ बरखा सब हो जाता है, जिसे गर्मी से राहत तो मिलत है मुला नुकसानों बहुत होते हो जाते हैं, कहूँ बिरवा गिरे की खबर मिलत है तो कहूँ बिजली के तार पंचो, जिसे जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ई तो बात भई भई प्राकृतिक आपदा के जीमा बहुत सावधानी रहे राखे की जरूरत है, चाहे वो बिरवा भई बिरवा तरे ना ठाड़ होए और ना भई खंभा वंभा के लगे ठाड़ होए और ना अपन वाहन हुआ ठाड़ कीन जाए, है कि नहीं भाई, हमार सावधानी हमार सुरक्षा है। और अब फिर से जल संरक्षण के बात कीन जाए तो भाई पंचो, जल संरक्षण के खातिर तो सबसे पहले जागरूकता मने पानी के महत्व का जाना बहुत जरूरी है। जब महत्व का जानब तो उपाय भी करब। बरखा के जल संरक्षित करे खातिर छत पर बरखा के जल पाइप द्वारा भूमि में पहुँचावे के इंतजाम हो चाहिए। जल के पुनः उपयोग मने घरन माँ जोन पानी इस्तेमाल होता है ना, वह के निकासी खेतन के ओरिया कह देख चाहिए। और जो गाड़ी घोड़ा धोवे में पानी जो मने इतना बर्बाद करत है वो ना करे के चाहिए। नलन के घर में जो नल लाग होते हैं वो के टोटी के जो निगरानी रखें कि कहूँ टपका टपका तो ना ही है, कितना पानी बर्बाद होता है। और हाँ देखो, कहते ना जब पानी टपकत है तो कहते हैं पैसा बहुत जो है खर्च होता है, तो यह के ध्यान रखियो तो बहन भाई बचत हो ही पाई है कि नहीं। और हाँ देखो, घर में हाथ धोवे समय बेरिया जो है कपड़ा छाँटत बेरिया बहनी हो रही बड़ा पानी बर्बाद हो जाते, ध्यान नहीं दे पाओ, मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के करा जाते, हो जाते कभो कभो, तो इका हमका सबका ध्यान रखे का है। और ग्रामीण भाई बहन देखो, आधुनिक सिंचाई विधि द्वारा पानी का बचा सकते हैं। और भाई जागरूकता के बात करी तो भाई जल प्रदूषण का हमका सबका बहुत ध्यान रखे कि जल प्रदूषण ना हो, इके खास ख्याल रखे का चाहिए। ये तो बात भाई जल संरक्षण के उपाय के। और अब फिर से श्रोता पंचन के ईमेल और पाती पढ़ा जाए तो ईमेल आवा है दिल्ली से, भेजे वाले हैं तुषार गरिमा भानु विक्रांत और विकास शांतनु अनुग्रह और सौम्या शिखा और देखो और एक पाती और आई है जो डाक द्वारा आई है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, जिका भेजिन है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये सब है चंदा है तू मेरा सूरज है तू गाना सुने के फरमाइश की हीन है, फिल्म है आराधना से और संगीतकार हैं SD बर्मन। तो चलो आनंद उठाओ ये गीत के।

तो पंचो देखो भाई, आपन लड़का बच्चा भाई सबका चंदा और सूरज लागत है, और कई अरमान उनके खातिर हम सब सजाई थे, है कि नहीं। जैसा कि भाई देखो बताए हैं कि काल मात्र दिवस है, तो यह मात्र दिवस के अवसर का ध्यान में राखी के फरमाइश भी आई हैं। जानो तो पंचो, आज काल लड़का बच्चा कहूँ ना कहूँ अपने नौकरी चाकरी की जिम्मेदारी में जूझत भय, महतारी बाप के तरफ ध्यान नहीं दे पावत हैं। तो इस सब दिवस उनके निस्वार्थ प्रेम त्याग और परिवार व समाज में उनके योगदान का सम्मानित करे खातिर मनावा जात है। एक माँ का उके महत्व का जनावा जात है और उके आभार व्यक्त करे के दिन बनावा गवा, और सब लड़का बच्चा बड़े प्रेम से यह का मनावत है। और पंचो, हर मातारी अपने लड़का बच्चा खातिर कुछ भी कह सकत ही, मने अपने प्राण के त्याग भी। अभी हाल माँ देखे देखो पंचो, जबलपुर माँ बरगी बांध माँ एक गंभीर क्रूर हादसा माँ एके उदाहरण भी देखे का मिला, जीमा महतारी अपने लाल का बचावत बचावत दुइनों अपन जान गंवाए दीन, उनका शत शत नमन है। तो पंचो, यह मेर के एक ईमेल और आवा है, जोन बलरामपुर से आवा है। भेजे वाले हैं उदय, पवन, हरिओम, शशांक, मनी और ऋषि। और भाई देखो, ये सब रंग दे बसंती फिल्म के गीत जिके बोल हैं लुका छिपी बहुत हुई सुना चाहत हैं। तो चलो आप सब सुनो यू गीत।

हाँ श्वेता पंचो, महतारी के प्रेम निस्वार्थ और निश्चल होते। श्वेता पंचो, ये मातृ दिवस महतारी और के औलाद के बंधन और समर्पण का दर्शावत है। और दूसरे रविवार का ये मातृ दिवस मई माह के दूसरे रविवार का मनावा जात है कि जौन लड़का बच्चा अपने महतारी के अवहेलना करत है ना, उनके अंदर माँ के प्रति जागरूकता आवे और माँ भी अपनी औलाद के प्रेम और सम्मान का देख के खुश हो जाए, उका आशीष दे। पंचो, महतारी बाप तो भाई हर परिस्थिति में अपने औलाद के भले चाहत हैं और आशीषें देते हैं।

तो हम तो यह कहब माँ के कदर करे कचही और कोशिश करे उके लगीजे रहें। तो चलो अब फिर से अगली पाती का शामिल कीन जाए कार्यक्रम में, जौन आई है महादेव घाट अमलेश्वर से भेजे वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और ईमेल आवा है लखनऊ से भेजे वाले श्रोतापंच है सिद्धांशु, सत्यम, सौरव, अमन, आदित्य और आकाश। सभी जानवर ई सभी जानवर फिल्म के गाना सुना चाहते हैं जिके बोल है पास बुलाती है, और अलका गायक हैं अलका याग्निक और सुनिधि चौहान। तो चलो सुना भाई जाए भाई ये गीत।

अपन जो देखो एक ईमेल और आवा है अभी तुरंत है, तो भाई ये आवा है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। भेजे वाले हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और एक पाती आई है डाक द्वारा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से। भेजे वाले श्रोतापंच हैं रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, चुटकी, शरद एवं पूरा माखीजा कुटुम्ब। ये सब कोनों भी फिल्म के गीत सुना चाहते हैं। तो जैसा कि भाई मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हम गीत सुनवा रहे हैं, तो कहे ना इनका ऐसे कुछ सुनवावा जाए। फिल्म तारे जमी पर बोल है मैं कभी बतलाता नहीं, गायक हैं शंकर महादेवन। तो चलो सुनो ये भावपूर्ण गीत।

हाँ श्रोता पंचो, आज के कार्यक्रम की बिरिया हो गई है समाप्त, तो यह कामना के साथ है कि सब महतारी उनके संतान स्वस्थ रहें और सुखी रहें। यह कामना के साथ है ममता सक्सेना का आज के कार्यक्रम से देव आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। पत्र और ईमेल पर आधारित इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये पहला पत्र मेरे पास आया है राजेश कुमार मिश्र, राकेश कुमार मिश्र, अनुराग मिश्र, अभिषेक मिश्र, आस्था, अंजलि, केसरी मिश्र का, नहरपुर सेमरी, पुरुषोत्तम नगर, सुल्तानपुर से। आप सभी ने अपनी फरमाइश भेजी है फना फिल्म के इस गीत के लिए, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने, संगीत से संवारा है जतिन ललित ने और गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

और ये फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर की। आप सभी सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

और ये मेल हमारे पास आया है किसान रेडियो क्लब ग्राम लौहा मितौली जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी का। और आपने लिखा है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखते हैं वही किस्मत के धनी कहलाते हैं। इन्होंने लिखा है, आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और सलामी फिल्म का गीत सुनने की इन्होंने फरमाइश करी है, जिसे गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और बोल हैं मदन पालके। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

रवि कुमार, राहुल रवि, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुर कीरत राहुल, गुर शबद सिंह राहुल, आप सभी ने कस्बा बराडा, ज़िला अम्बाला, हरियाणा से हमें अपनी फरमाइश भेजी है। आप सुनना चाहते हैं ज़िंदगी और तूफ़ान फिल्म का गीत, जिसे गाया है मुकेश ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिबो।

0: আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है।

0: रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।

0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्देश लेफ्टिनेंट

0: जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाई अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में धान की सीधी बुवाई तकनीक विषय पर डॉक्टर सियाराम कनौजिया से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अब रबी की कटाई मड़ाई के बाद आप खरीफ की तैयारी में होंगे। खरीफ में जहां आपको रोपाई के बजाय धान की सीधी बुआई करनी है, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर के वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर सियाराम कनौजिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं किसान भाई बहन, क्योंकि रोपाई की लागत अधिक होती है उत्पादन के बनस्पत, तो धान की सीधी बुआई है क्या और ये आज के दौर में आवश्यक क्यों?
2: सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो वर्तमान परिवेश है खेती का, मुख्यतः जो खरीफ का सीजन है, जो धान की रोपाई जहाँ पे हम करते हैं, आज के समय में धान की रोपाई बहुत महंगी होती चली जा रही है, क्योंकि उस समय हमारे जो है मजदूर भाई हैं उनकी भी उपलब्धता नहीं हो पाती है, साथ ही साथ जल प्रबंधन भी बढ़िया नहीं हो पाता। इस तरह से जो हमारा उत्पादन लागत है वो बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी की जो दशा है, भौतिक दशा, वो भी खराब होती चली जा रही है। बार बार हम पलेवा करके जो रोपाई वाला धान लगाते हैं, उससे मिट्टी के अंदर जो है एक हार्ड परत हमारी बनती हुई चली जा रही है, जिससे अगली जो फसल हमारी है वो बहुत अच्छी विकसित नहीं हो पाती है। तो एक विकल्प के रूप में हमारे पास धान की सीधी बुआई करके हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: और चूंकि जलवायु परिवर्तन का दौर है, तो इसमें एक अच्छी तकनीक है
2: जी। जलवायु परिवर्तन आपने नाम लिया है, इससे जो हमारा रुपाई वाला धान होता है उसमें एक गैस, जो मीथेन गैस होती है, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, उससे हमारा जो है वायु प्रदूषण होता है या प्रदूषण होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन सीधी बुआई करते हैं तो मीथेन गैस भी हमारी धान के खेतों से बहुत कम हो जाती है, इससे हमारा प्रदूषण भी कम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ धान की सीधी बुआई करनी है तो सबसे उपयुक्त समय क्या है?
2: उपयुक्त समय जो हमारा धान की सीधी

0: का है वो 20 मई से लेकर के 25 जून तक अगर हम उसकी बुआई कर लेते
1: यानी
0: हैं,
1: मानसून के पहले
0: पहले मानसून के पहले।
1: उन्नत प्रजातियां धान की सीधी बुआई के लिए कौन कौन अच्छी हैं?
0: वैसे जो सामान्य प्रजातियां हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन अगर मध्यम से लेकर कम दिन वाली जो प्रजातियां हैं जिनकी वृद्धि थोड़ा तेजी से होती है, उन प्रजातियों का अगर हम चयन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा उपयुक्त होता है।
1: तो इसमें खेत का चुनाव और खेत की तैयारी महत्वपूर्ण है?
0: हाँ, इसमें खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पहले एक बार अगर सिंचाई करके खेत को छोड़ देते हैं,
1: यानी पलेवा कर ले,
0: पलेवा कर लें, पलेवा करने से कई लाभ होता है। एक तो
1: या
0: खरपतवार,
1: अगर बारिश हो जाती है गर्मी की,
0: जी बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। उससे होता क्या कि हमारा खेत जो एक बार उसमें खरपतवार जो जमने होते हैं वो जम भी जाते हैं, और उसके बाद जब ओट आ जाती है, सही जो स्थिति आती है उस स्थिति में जुताई करके तैयारी करके हम उसी स्थिति में सीधी बुआई कर देते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब इसमें बीज दर क्या होगी?
0: हाँ, मुख्य बात तो इसमें ये रहे कि खेत का समतल होना बहुत ज़रूरी है। अगर खेत समतल रहेगा तो उसमें हम बढ़िया से बुआई करेंगे तो उसका अच्छा फायदा हमें होगा। जहाँ तक बीज दर की बात है, जो किसान भाई सामान्य प्रजाति लगाते हैं तो उनको कम से कम 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ की दर से बीज डालना पड़ेगा,
1: अच्छा,
0: और यदि हाइब्रिड लगाते हैं तो 5-6 किलोग्राम बीज पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है।
1: यानी 10 किलो प्रति एकड़ धान की सीधी बुआई
0: जी,
1: जो सामान्य
0: सामान्य
1: प्रजातियां हैं,
0: प्रजातियां हैं,
1: और 5 से 6 किलो जो हाइब्रिड
0: हाइब्रिड
1: संकर
0: प्रजातियां, जी
1: प्रजातियां।
0: संकर प्रजातियां।
1: तो इसमें कोई खास मशीन का उपयोग होता है डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी, मशीन वैसे अगर किसान भाई के पास सीड ड्रिल है तो उससे भी बुआई कर सकते हैं, जीरो सीड ड्रिल है तो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष मशीन अभी जो है धान की सीधी बुआई का, DSR मशीन उसको बोलते हैं,
1: जी,
0: जो है
1: यानी डायरेक्ट सीडेड
0: राइस,
1: राइस।
0: जी वो बहुत ही अच्छी मशीन है, उसका उपयोग हम इसमें बुआई के लिए कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब जब सीड कंफर्टी ड्रिल होगा तो एक में बीज होगा, एक में उर्वरक भी
0: जी
1: होगा,
0: जी एक में बीज होगा, एक में उर्वरक होगा।
1: तो इसमें बुआई में कुछ खास तरीका अपनाना होगा?
0: तरीका ये अपनाना है कि खेत जो हमारा हो वो समतल हो और पर्याप्त नमी हमारे खेत में बुआई के समय होनी चाहिए,
1: और लाइन से लाइन की दूरी?
0: और लाइन से लाइन, चूंकि हम मशीन से यदि बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर हमारी बन जाती है। और ये जो DSR मशीन है इसमें एक विशेष प्रकार का समायोजन होता है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे पौध से पौध की दूरी भी निर्धारित कर देता है।
1: अच्छा,
0: जी, इससे लगता है कि हमारा धान जो है एकदम रोपाई की तरह दिखता है,
1: एक एक दाना,
0: एक एक दाना, और लगता है, और लगता है कि ये धान हमारा रोपाई वाला ही धान है।
1: और आगे चल करके उसमें टिलरिंग
0: और
1: अच्छी
0: हाँ,
1: होगी?
0: बहुत अच्छे कल्ले निकलते हैं और कोई मतलब देख करके नहीं भाप सकता है कि ये रोपाई किया हुआ धान है या सीधी बुआई किया हुआ धान है।
1: और लागत बहुत कम?
0: लागत लगभग 4,000 से लेकर के 4,500 रुपये पर एकड़ तक की लागत हमारी जो है कम देखी गई इस बुआई की विधि से,
1: DSR तकनीक
0: DSR
1: से।
0: तकनीक से।
1: तो डॉक्टर साहब फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा कब कैसे प्रयोग करनी है?
0: देखिए, यदि मशीन से बुआई हम करते हैं और उपयुक्त नमी पे अगर हम करते हैं, मिट्टी में उपयुक्त नमी पे, उस समय दानेदार खाद जो हमारी हो उसी खाद का हम प्रयोग हमें मशीन में करना है।
1: चाहे DAP या
0: हाँ,
1: NPK।
0: NPK कर लेते हैं या DAP कर लेते हैं। उसमें हमारी नत्रजन की जो मात्रा है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 15-20 किलोग्राम हमारा पोटास,
1: प्रति
0: ये
1: एकड़
0: प्रति एकड़ की दर से ये हमारा आएगा, जिसमें से आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो हमारी होगी और बाकी पूरी फास्फोरस और पोटास, उस समय हम अपने सीड ड्रिल में डाल करके बुआई के समय खेत में डालते हैं।
1: और फिर जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा है उसका प्रयोग?
0: और शेष नाइट्रोजन की मात्रा जब 1 महीने की फसल हमारी हो जाए तो एक टॉप ड्रेसिंग के रूप में, और उसके बाद जब हमारे बालियां निकलने वाली होती हैं उस समय फिर एक टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं।
1: डॉक्टर साहब जहाँ भी धान की सीधी बुआई की तैयारी है तो बीज शोधन भी महत्वपूर्ण है, और क्या पानी में भिगोना भी पड़ेगा बीज को?
0: जी, ये अच्छी बात है। अगर बीज शोधन करते हैं और 24 घंटे तक अगर उसको पानी में भिगो लेते हैं, भिगोने के बाद में उसको पानी निथार करके छाया में सुखवा करके, और हमारे पास कार्बेंडाजिमैन को जेब की जो दवा है वो 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें मिला करके बीज शोधन करते हैं तो जो शुरुआती रोग लगते हैं उससे हम मुक्ति पा जाएंगे।
1: डॉक्टर साहब जब धान की सीधी बुआई कर रहे हैं तो रोपाई के वनस्पत खरपतवार भी अधिक उगेंगे, तो खरपतवारों का प्रबंधन धान की सीधी बुआई में कैसे हो?
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किसान भाई जो हमारे सीधी बुआई नहीं करते हैं उसका मुख्य कारण यही रहा है कि खरपतवारों की अधिकता होती है। परंतु अब किसान भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इस तरह खरपतवार नाशी हैं जिनका प्रयोग करके हम

0: खरपतवार प्रबंधन करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतनी है, शुरुआत में ही किसान भाई को जिस समय बुआई करते हैं, बुआई करने के 48 घंटे के अंदर पर्याप्त नमी पर पेंडी मिथिलीन नाम की दवा 1 से 1.5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके बढ़िया से अगर इसका हम छिड़काव कर देंगे तो शुरुआती जो खरपतवार आते हैं वो खरपतवार नहीं जमेंगे और हमारी 1 महीने तक लगभग फसल हमारी खरपतवारों से मुक्त हो जाएगी।
1: और फिर खड़ी फसल में भी कोई खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं?
0: उसके बाद 1 महीने की जब फसल हमारी हो जाए, हमें दिखाई पड़ जाए खरपतवार, तो उस समय हमारे पास तमाम खरपतवार नाशी हैं, उसमें से आपका बिस्पायरी बैग सोडियम साल्ट जो आपका
1: पोस्ट इमरजेंस
0: के उसमें, या खरपतवारों की स्थिति या खरपतवारों के प्रकार पे हाँ। उस समय जो भी दवाएं रिकमेंड की जाए उस दवा का ला करके जो है छिड़काव करके खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: बहुत ही स्वागत रहेगा किसान भाइयों को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर के सीधे हमसे मिलते हैं तो उनको हम पूरी जानकारी देते हुए उनका पूरा सहयोग करेंगे। यदि नहीं आ पाते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लें, मेरा मोबाइल नंबर है 9450 31 34 71 9450313471 9450 31 34 71।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों को?
0: हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि कम से कम जिन किसान भाइयों के पास 2 एकड़ 3 एकड़ खेत है तो कम से कम 1 एकड़ खेत को अपनी सीधी बुआई के प्रयोग के तौर पर इस वर्ष देख लें। उसके बाद उनको खुद पता चल जाएगा कितना हमको इस पे लाभ मिल रहा है और अगली वर्ष वो अपनी सीधी बुआई में अपने और अन्य क्षेत्र को भी परिवर्तित कर सकते हैं।
1: यानी धान की रोपाई तकनीक में जो लागत लग रही है उसकी बचत के लिए किसान भाई बहन इस बार खरीफ में धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाएं और इसकी बुआई का समय मानसून के पहले है।
0: जी जी,
1: और ढेर सारी उन्नत कृषि तकनीक की बात आपने की, किसान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर सियाराम कनौजिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर सियाराम कनौजिया ने धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में जो भी जानकारी आपको दी है उसे आप अमल में ज़रूर लाएंगे। डॉक्टर सियाराम कनौजिया से बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय, और इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आज शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हम जानकारी आपको दे दें। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आनंद उठाइएगा अनुराधा पौडवाल के गाए भजनों का।

हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे वार्ता सुनिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक मोरल।

शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी से प्रवीण कुमार की भेंटवार्ता। विषय होगा एआई से अंतरिक्ष तक भारत के बढ़ते तकनीकी कदम। साथ ही सुनेंगे डॉक्टर शीबा राकेश से विज्ञान समाचार।

0: शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता जल संचयन से ग्रामीण समृद्धि। वार्ताकार होंगे नंद किशोर वर्मा। शाम 6:50 पर ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य विषय पर डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम में भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से OB रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मिट्टी की सोंधी महक से महकते लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अंजुलि श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत। आरंभ करते हैं देवी गीत से। बोल है कामना पूर्ण करो माई।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अंजलि श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत, और आइए अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में सिंगार गीत।

खन के कंगनवा झनन बोले झांझ। अभी आपने सिंगार गीत का आनंद उठाया अंजलि श्रीवास्तव की आवाज़ में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत खेमटा। बोल है निहुर निहुर कैसे बुहारू अंगनवा।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में आज आपने आनंद उठाया अंजलि श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीतों का। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर था, 747 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, बस कुछ ही पलों में।
1: साथ में शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपा।

0: रखेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर था, 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत भारती आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विज्ञान जगत कार्यक्रम होगा 7:31 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आधारित भेंटवार्ता AI से अंतरिक्ष तक, भारत के बढ़ते तकनीकी कदम विषय पर डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रवीण कुमार की भेंटवार्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य डॉक्टर अशोक मोरल की ये वार्ता प्रसारित होगी हिंदी कार्यक्रम में 8:00 से। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम का सुनेंगे युवा तरंग अब से कुछ ही पलों में 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा 5:45 पर, जिसमें विमर्श के अंतर्गत आप सुनेंगे शालिनी की OB पर आधारित कार्यक्रम नीति निर्माण में भागीदारी के बिना लोकतांत्रिक विकास अधूरा है कैसे। जल संचयन से ग्रामीण समृद्धि पर नंद किशोर वर्मा की वार्ता प्रसारित होगी लोकायतन कार्यक्रम में 6:30 पर। ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य पर डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 पर। शाम अवध कार्यक्रम होगा 7:45 पर। अनुराधा पौडवाल के गाए भजनों का आनंद लीजिएगा 8:10 पर सुगम संगीत में। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 10 मई 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल 10:00 सुनिएगा रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 पर सुनिएगा सामयिक चर्चा, उर्दू कार्यक्रम होगा 9:30 पर। रेणु शर्मा के गाए अवधि लोकगीत सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम में 9:50 पर। और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर श्रोता अपनी पसंद के लोक गीत सुनेंगे 10:00 से 10:10 और 10:10 से और 10:20 से 11:00 तक। लोक झनकार कार्यक्रम होगा 4:30 पर, जिसमें कल सुनिएगा राजेश कुमार गौतम व साथी के गाए भोजपुरी लोकगीत, भूमि शोधन के जैविक उपाय के बारे में डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी देंगे कृषि चर्चा कार्यक्रम में 6:05 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा 7:00, जिसमें कल का विषय है मदर्स डे, जानकारी देंगी नीना सोनकर। पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा वादन हम आपको सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बालमंच दिन में 12:00 से, जिसमें सेफ्टी टिप्स के अंतर्गत सुनिएगा सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम पर विकास सिंह यातायात उप निरीक्षक से ममता उपाध्याय की भेंटवार्ता। आज इतवार है, कार्यक्रम होगा दिन में 1:15 पर, जिसमें कल सुनिएगा झलकी सफाई के कमाल, आलेख प्रतिभा त्रिपाठी का है और निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता अतीश कुमार श्रीवास्तव। अक्षयवट कार्यक्रम होगा दिन में 1:30 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर मातृत्व एक अक्षत शक्ति विषय पर अर्जुन अवार्ड।

रचना गोविंद, सेवानिवृत्त कार्यकारी निर्देशक भारतीय खेल प्राधिकरण से डॉक्टर अलका चौधरी की भेंटवार्ता। भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन पर डॉक्टर आशीष कुमार पांडे जानकारी देंगे। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। संस्कृत कार्यक्रम होगा दिन में 3:15 पर। हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम होगा दिन में 3:30 पर। कल का विषय है कैसा हो हमारा आहार और कैसी हो हमारी थाली। जानकारी देंगी सुश्री मृदुल विभा, वरिष्ठ डाइटिशियन KGMU लखनऊ। कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुभाष खन्ना। दिव्यांगों हेतु कार्यक्रम संकल्प प्रसारित होगा 4:00, जिसमें कल जानिए क्या है अदृश्य दिव्यांगता। हीमोफीलिया विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, हेमेटोलॉजिस्ट KGMU लखनऊ से मनीष कुमार की भेंटवार्ता। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा तरंग 5:10 पर। और 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। लोकायतन कार्यक्रम में 6:30 पर सुनिएगा लोक भाषा अवधि कहानी पाठ। शीर्षक है कहू कम कहू ज्यादा। कहानीकार हैं लायक राम मानव। मेंथा उत्पादन में हरक चंद वर्मा की सफलता की कहानी सुनिएगा। खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एसपांडे और नीना सोनकर की होगी। डॉक्टर प्रवीण कुमार का हास्य काव्य पाठ हम आपको सुनवाएंगे हिंदी कार्यक्रम में 8:00 से। शाम्य अवध कार्यक्रम होगा 7:45 पर। 8:10 पर सुगम संगीत में कल के हमारे कलाकार होंगे अवतार सिंह। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुने युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाओं की धड़कनों से जुड़ा कार्यक्रम युवा तरंग और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनुष्ठा। दोस्तों, सुबह की पहली किरण, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट, ये सिर्फ आवाज़ें नहीं बल्कि प्रकृति का खूबसूरत संगीत भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें से कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हज़ारों किलोमीटर दूर देशों से हमारे यहाँ सिर्फ मौसम के बदलने पर आते हैं? जी हाँ, इन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के मौके पर हम बात करेंगे इन खास मेहमानों की, जो हमारी प्रकृति, आज़ादी और संतुलन का संदेश देते हैं। लेकिन बदलता पर्यावरण, बढ़ता प्रदूषण और कम होते जंगल अब इनके सफ़र को मुश्किल बना रहे हैं। दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी ये खूबसूरत परिंदे भी आसमान में यूं ही उड़ते नजर आएंगे। तो आज के इस खास अंक में हम जानेंगे प्रवासी पक्षियों से जुड़ी रोचक बातें, उनका सफ़र और क्यों है उनका संरक्षण ज़रूरी। मगर उससे पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों अब वक्त है शब्दों और भावनाओं से सजे काव्य पाठ का। चलिए सुनते हैं डी.आर. विनायक की आवाज में ये प्रेरणादायक काव्य पाठ।
1: नमस्कार, मैं डी.आर. विनायक आज आकाशवाणी लखनऊ से। मैं एक रचनाकार के रूप में जीवन के अनेक अनुभवों और सीख को अपनी इन कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी दो कविताएं, जिनके नाम मेहनत और नसीहत है, सभी जानते हैं जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। जिस तरह मेहनत के बगैर कोई फल नहीं, उसी तरह मेहनत के बिना जीवन नहीं। इस कविता में जीवन को सही रास्ता देने में और परिश्रम के महत्व का संदेश शामिल है। उम्मीद करता हूँ मेरी यह दोनों रचना आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो कविता पाठ करने जा रहा हूँ, उस कविता का नाम है मेहनत। जब मेहनत करेंगे तभी तो सारे काम बनेंगे। जब मेहनत करेंगे तभी तो सारे काम बनेंगे। बिन मेहनत सब बेकार, सारे अरमान रहेंगे बेकरार। जब मेहनत करेंगे तभी तो

सारे काम बनेंगे बिन मेहनत सब बेकार, सारे अरमां रहेंगे बेकरार। सभी चाहते हैं करना बेहतरीन नाश्ते, सभी चाहते हैं करना बेहतरीन नाश्ते, फिर क्यों घबराते हो मेहनत करने से, फिर क्यों घबराते हो मेहनत करने से, मेहनत करने से ही खुल जाएंगे खुशियों के रास्ते। अगर ऊंचाई तक जाना है, अगर ऊंचाई तक जाना है और जीवन को चमकाना है, तो चल कटीले रास्तों पर, तो चल कटीले रास्तों पर।

0: रहे मेहनत का आलाप, दूर हो जाएगा अंधेरे का विलाप। रटता रहे मेहनत का आलाप, दूर हो जाएगा अंधेरे का विलाप। आलस की बांसुरी क्यों बजाना, आलस की बांसुरी क्यों बजाना। मेहनत का करते हो क्यों बहाना। अच्छी डगर पकड़ जा सारथी, अच्छी डगर पकड़ जा सारथी। पा जाएगा खुशियों का खजाना। पग पग रास्ते चलता जा, पग पग रास्ते चलता जा। कठिनाइयों का गीत गाता जा, पग पग रास्ते चलता जा। कठिनाइयों का गीत गाता जा, पीछे मुड़कर ना देख कभी, आगे का रास्ता बनाता जा। खौं खौं करे खराब होवे गला, खौं खौं करे खराब होवे गला। आलस है जीवन की बुरी बला। बिन कोशिश ना होवे कोई भी काम, बिन कोशिश ना होवे कोई भी काम। जो करे मेहनत वो बनाए दुनिया में अपना नाम। आखिर डी आर विनायक यही कहता, आखिर डी आर विनायक यही कहता। आलस छोड़ जो मेहनत करता, आलस छोड़ जो मेहनत करता। वही रहता सदा सुखी और विभिन्न खुशियां पाता। श्रोताओं, अब मेरी दूसरी कविता है नसीहत, जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नसीहत, नसीहत मतलब की सीख। सीख देना और लेना दोनों ही बड़ी बात। समय के अनुसार मनुष्य इन चीजों से दूर रहता है। मैं इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि सलाह देना और लेना अच्छी बात है। जीवन में इसका महत्व बहुत जरूरी है। लीजिए अब आपके सामने दूसरी कविता, जिसका नाम है नसीहत, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पता नहीं इंसान के अंदर क्यों है इतना क्रोध, पता नहीं इंसान के अंदर क्यों है इतना क्रोध। हर वक्त हर बात पर, हर वक्त हर बात पर क्यों करता है इतना विरोध। सामने आकर अच्छी बातें करता है और पीठ पीछे बुरी बातें करता है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता कौन है अपना कौन है पराया। सामने आकर अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं। जरा सा इंसान कुछ कह दे, जरा सा इंसान कुछ कह दे तो कर देते हैं बवाल, जरा सा इंसान कुछ कह दे तो कर देते हैं बवाल। उन्हीं इंसान की बात पर कोई नहीं उठाता सवाल। इंसान इंसान को अपना समझकर, इंसान इंसान को अपना समझकर उन पर करता है विश्वास। सबने मिलकर, सबने मिलकर इंसान का ही कर दिया वनवास। इंसान इंसान से कुछ नहीं चाहता, इंसान इंसान से कुछ नहीं चाहता, चाहता है केवल सहारा। इंसान इंसान से कुछ नहीं चाहता, चाहता है केवल सहारा। यदि इंसान दे देता सहारा, यदि इंसान दे देता सहारा तो आज इंसान नहीं रह जाता बेचारा। यदि इंसान दे देता सहारा तो इंसान नहीं रह जाता बेचारा। हर इंसान एक दूसरे से बराबरी करता है, हर इंसान एक दूसरे से बराबरी करता है। जाने क्यों जरा सी कामयाबी से एक दूसरे से जलता है। हर इंसान एक दूसरे से बराबरी करता है, जाने क्यों जरा सी कामयाबी एक दूसरे से जलता है। भले ही इंसान इंसान को अकेला छोड़ देते हैं और जानते हुए भी दिल को तोड़ देते हैं। एक रास्ते से दूसरे रास्ते में मोड़ देते हैं, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में मोड़ देते हैं। अच्छे इंसान ही इंसान को आपस में जोड़ देते हैं। अगर इंसान ज्यादा बना ले धन, अगर इंसान ज्यादा बना ले धन, इंसान ही इंसान का बन जाता है दुश्मन। अगर इंसान ज्यादा बना ले धन, इंसान ही इंसान का बन जाता है दुश्मन। आजकल सब कुछ यही चलता है, आजकल सब कुछ यही चलता है। आखिर डी आर विनायक यही कहता है, जीवन का संघर्ष अनमोल है, समय का चक्र गोल है, हर किसी का अलग अलग रोल है, साफ नियत ही मिठास का गोल है। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। उम्मीद है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कविताएं आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।
1: दोस्तों, ये था डी आर विनायक द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ जो अभी आपने सुना। और अब माहौल को थोड़ा सा शुरू से सजाने का समय हो गया है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद खास दिन की, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। ये दिन हमें उन नन्हे मेहमानों की याद दिलाता है जो हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक देश से दूसरे देश आते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा पक्षी बिना किसी नक्शे, बिना किसी GPS के आसमान की अनगिनत राहों पर पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन, साहस और संतुलन का एक सुंदर संदेश भी है। सर्दियों के मौसम में भारत के कई हिस्सों में साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो और बार हेडेड गूस जैसे प्रवासी पक्षी दिखाई देते हैं। ये पक्षी मौसम, भोजन और सुरक्षित पर्यावरण की तलाश में लंबी यात्राएं करते हैं। लेकिन आज बदलता पर्यावरण, बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जल स्रोतों का कम होना इनके अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो बीज फैलाते हैं, कीड़ों को नियंत्रित करते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल कितना ज़रूरी है। कभी सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाट से होती थी, लेकिन आज शहरों के शोर में वो आवाज़ कहीं खोती जा रही है। ऐसे में हमारी छोटी छोटी कोशिशें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, जल स्रोतों को सुरक्षित रखना और पक्षियों के लिए दाना पानी रखना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमें यही संदेश देता है कि अगर हमें प्रकृति का संगीत सुनते रहना है, तो हमें इन पक्षियों और इनके घर यानी कि पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण में अपना छोटा सा योगदान हम ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है आपको एक और गीत सुनाने का। सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अगर एक सुबह अचानक पक्षियों की चहचहाहट सुनाना बंद हो जाए तो सोचिए हमारी सुबह कितनी सूनी लगने लगेगी। पक्षी सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे जीवन और पर्यावरण का भी एक अहम हिस्सा है। कभी गौर कीजिएगा, आसमान में खुलकर उड़ते पक्षी हमें आज़ादी का एहसास दिलाते हैं। कोयल की मीठी आवाज़ हो, बारिश से पहले मोर का नृत्य या फिर गौरैया की चहचहाहट, हर पक्षी अपने साथ प्रकृति का एक अलग रंग लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, आज कई पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और शहरों का विस्तार उनके घर छीनता जा रहा है। गौरैया, जो कभी हर आंगन में दिखाई देती थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में हमारी छोटी छोटी कोशिशें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। घर की छत या बालकनी में पानी रखना, पेड़ लगाना,

या पक्षियों को सुरक्षित माहौल देना, ये सब कदम उनके लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि जब पक्षी सुरक्षित रहेंगे तब प्रकृति की मुस्कान भी बनी रहेगी। तो आइए आज हम सब मिलकर ये वादा करें कि अपने आसपास इस खूबसूरत दुनिया और इन नन्हे परिंदों का ख्याल ज़रूर रखेंगे। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है युवा तरंग का आज का सफ़र आपको पसंद आया होगा और हमारी बातें आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होंगी। याद रखिए, ज़िंदगी में सीखना, मुस्कुराना और आगे बढ़ते रहना ही सबसे ज़रूरी है। बस खुद पर भरोसा रखिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त अनुष्ठा को इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान और मैं हूं आपका साथी आनंद मिश्रा। साथियों, देखते हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी में जैसे कुछ हमें सीखना होता है तो क्या हम किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। हम लगभग हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ख़ासकर अगर आप बहुत साइलेंट मोड में या बहुत ही अंदरूनी मोड में अगर आप जाएं और तब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आपको लगता है कि हमें प्रकृति जो है वो बहुत कुछ सिखाती है और प्रकृति से जितना हम सीख सकते हैं उतना हमें सीखना चाहिए। अब देखिए ना, बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह हम उठते हैं और छत पे टहल रहे हों या बाहर टहल रहे हों तो पक्षियों की आवाज़ कितनी सुनाई देती है, चिड़ियों की आवाज़ चहचहाट सुनाई देती है, लेकिन कई बार मन में ये सवाल तो आता है कि ये लोग रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं। कभी कदार तो ऐसा लगता है कि हमने इस चिड़िया को या इस पक्षी को पहले कभी देखा ही नहीं, यहाँ पे जो आजकल दिख रही है कुछ नई लग रही है और मौसम के अनुसार ये कुछ बदलता रहता है। तो हमें ये सीखना है कि आखिरकार हमें प्रकृति सिखाना क्या चाह रही है। दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ प्रकृति से ही नहीं सीखते हैं, हम देखते हैं अक्सर जो लोग पढ़ाई करते हैं वो किताबों से सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास में इतना कुछ किया है हमारे लिए कि उन इतिहास में जो लोग पहले से हमारे लिए, समाज के लिए जो कुछ देकर गए हैं उनसे हम सीखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लगभग समाज के हर व्यक्ति से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और आज हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज केवल एक विषय पे बात करना बहुत कम हो जाएगा, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है कि प्रकृति के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको याद करने का दिन है। और देखिए, आज वैसे तो हम लोग तिथि के अनुसार आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मना रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और हमारे महान कवि और साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने जो कुछ हमें अपने विचारों के माध्यम से या समाज को दिया वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी व्याख्या करना सिर्फ आज के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, सालों साल सदियों तक उसकी व्याख्या की जाएगी। और केवल उनकी ही बात की जाए तो मुझे लगता है ना काफ़ी हो जाएगा। बाकी और भी हमारे इस दिन के विशेष में कौन लोग हैं जिनका योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रहा है, हमारे समाज के उत्थान के लिए रहा है, तो उनको याद करना भी ज़रूरी है। और देखिए, जब हम वीरों की बात करते हैं, जब हम अपने स्वाभिमान की बात करते हैं, तब एक नाम बहुत अनायास एकदम हमारी ज़ुबान पर आ जाता है, वो है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक ऐसे वीर योद्धा रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, और कहीं ना कहीं उनकी कहानियां जो है वो हमें यही सिखाती हैं कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और सबका सम्मान है, लेकिन समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें संदेश दिया, जो हमें सिखाया, वो आज बहुत प्रासंगिक है। शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने की और समाज में उन्होंने बताया कि जब तक शिक्षा व्यवस्था और जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक समाज विकसित नहीं होगा, और यही वजह है कि महात्मा गांधी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। और देखिए, जब आप समाज में आगे बढ़ते हैं, जब आप सामाजिक व्यवस्था से जुड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं या कोई हमें सहयोग करने वाला नहीं है, कई बार हम टूट जाते हैं, तब वैचारिक क्रांति आपको आगे बढ़ने में सहयोग करती है। और मुझे लगता है कि तब महान कवि जिनका हमने पहले जिक्र किया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी एक रचना जो है वो हमें बहुत प्रेरित करती है और वह है एकला चलो रे। जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए कहा, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ आज के समय में आत्मनिर्भरता का भी एक संदेश देती है। तो मुझे लगता है कि जब आपको कभी अकेला महसूस हो, जब लगे कि हम टूट रहे हैं, तब आपको ये गीत भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी रविंद्रनाथ टैगोर से ही प्रेरित है।

0: अकेला चलना है, लेकिन जब आप अकेले चल रहे हों तब ये जिम्मेदारी आप निभाएं कि आप बाकी लोगों को आप जरूर साथ लेकर चलें। अकेले चलने का मतलब ये कभी नहीं है कि हमें ही अकेले चलना है। आप जब रास्ते पर अकेले निकलें तो ये जिम्मेदारी निभाएं कि भले ही आपका लोगों ने साथ ना दिया हो, लेकिन आप लोगों को लेकर आगे चलेंगे और उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा समाज जो है वो तभी आगे बढ़ता है जब अलग अलग लोग अपने अनुभव अपने काम से बेहतर बनने का या बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने देखा है ना कि कोई गांव की तस्वीर देखिए बदलने में जुटा हुआ है, कोई समाज में बराबरी और सम्मान की आवाज़ उठाने में जुटा हुआ है, कोई शिक्षा व्यवस्था के जरिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और कोई ऐसा है जो बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए लगातार काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नीति निर्माण में भागीदारी के बिना क्या लोकतांत्रिक विकास अधूरा है? और अगर है अधूरा तो कैसे ये अधूरा है? ये सवाल अपने आप में बड़ा है, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी रेडियो साथी शालिनी जी ने तमाम संभ्रांत लोगों से बातचीत की, और इस बातचीत के माध्यम से उन्होंने इस सवालों के जवाब तलाशने की एक कोशिश की है, जिससे आप भी जुड़िए।
1: लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन का ये कथन आज भी हमें एक सवाल की ओर ले जाता है। अगर जनता की भागीदारी ही न हो तो क्या लोकतांत्रिक विकास सचमुच पूरा हो सकता है? नीति निर्माण में भागीदारी के बिना लोकतांत्रिक विकास अधूरा है, कैसे? इसी सवाल के जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं उन लोगों के बीच जहां अनुभव है, संघर्ष है, सुझाव है और बदलाव की उम्मीद भी। इस विशेष विमर्श में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं देश के पहले डिजिटल गांव लतीफपुर की पूर्व प्रधान श्वेता सिंह, वरिष्ठ ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट रुद्राणी छेत्री, जो न सिर्फ ट्रांसजेंडर के सम्मान और अधिकारों के लिए 25 वर्षों से आवाज उठा रही हैं, बल्कि भारत सरकार द्वारा संचालित देश भर में 12 शेल्टर होम में से एक को दिल्ली में मैनेज कर रही हैं। राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षिका डॉक्टर रचना सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ में जुड़ रहे हैं बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा। तो आइए सुनते हैं लोकतंत्र की उन आवाजों को जो विकास को सचमुच जन भागीदारी का रूप देती हैं।
2: ये लोकतंत्र है जो बोलेगा।
3: तो श्वेता जी से हम जानते हैं कि नीति निर्माण में भागीदारी से लोकतांत्रिक विकास संभव है, तो ये संभव कैसे किया आपने?
4: नमस्कार, थैंक यू शालिनी जी। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। जब मैं शादी करके गांव गई तो उस समय महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब थी। सारी शर्म महिलाओं के घूंघट में ही थी, पर सारे नियम कानून घर के अंदर, लेकिन सड़क पे पानियां भरी रहती थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था।
3: तो अपने गाँव की तस्वीर बदलने के लिए ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा हर तरफ हुई?
4: मैं प्रधान चुन के आई थी तो सबसे पहले हमने अपने गांव का 5-year प्लान बनाया, और देश में पहली बार हमने अपनी ग्राम पंचायत की पंचवर्षीय कार्य योजना का गठन किया, जिसमें हमने 42 करोड़ के कामों को चुना। ऐसा देश में पहली बार हुआ था कि किसी गांव के प्रधान ने पहले ही साल में 5 साल की कार्य योजना तैयार कर ली थी कि उसे हर साल अपने गांव को स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलपमेंट करना है। 5 साल का मास्टर प्लान बनाने के समय हमें नक्शों की आवश्यकता हुई। चूंकि मैं कंप्यूटर से इंजीनियरिंग किया हुआ था, हमने अपने पूरे गाँव में टोपोग्राफी मैपिंग से गाँव का नक्शा तैयार किया। जब हम लोग गाँव का नक्शा बना रहे थे उस समय यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर जी को मेरा मास्टर प्लान बहुत अच्छा लगा। हमने उन्हें दिखाया कि कैसे हमने टोपोग्राफी मैपिंग करके अपने गांव का नक्शा बनाया हुआ है, तो वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए हमारे काम से कि उन्होंने दिल्ली में पंचायती राज विभाग के मंत्री से हमारी मीटिंग कराई, हमारे गांव के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाना कि हमने कैसे नक्शे बनाए, कैसे क्या किया। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जो स्वामित्व योजना का उद्घोष किया था, जो स्वामित्व योजना बनी, वो कहीं ना कहीं हमारे गांव की देन है। दूसरी बात ये है कि हमारे गांव में एक मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हम लोग एजेंडा तैयार करते हैं कि कैसे गांव को आगे बढ़ाना है। तो उन्हीं सब एजेंडों को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत भवन सबसे पहले हमारे गाँव में बना। हमारे गाँव में हर चीज डिजिटल था।

0: कपड़ों का गांव पेपरलेस के नाम से फेमस था, पेपरलेस पंचायत लतीफपुर। जो हमने पंचायत भवन बनाया तो इसकी शुरुआत हमने की कि गांव के लोग को अपने छोटे छोटे से काम के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। तो हमने क्या किया था, जो पंचायत भवन बनाया था उसी में सब लोग बैठते थे। हमने गांव का 2 दिन तय कर दिया था, जिस दिन गांव सेक्रेटरी जी हमारे गांव में बैठेंगे। डिजिटल को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो हमने अपने गाँव का लतीफपुर के नाम से एक डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। अगर गाँव के लोग को कोई भी समस्या हो तो वो उस ग्रुप में मैसेज करता था और हम उसकी समस्या का निदान तुरंत करते थे।
1: महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आपने गांव में क्या-क्या किया?
0: मैं प्रधानी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए थी। लोग कहते हैं ना शहरों में वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट। शादी के बाद जब मैं गांव गई तो मुझे लगा सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत तो गांव में है। तो प्रधानमंत्री जी ने समूह शुरू किए और मुझे ये आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो महिलाएं कल को कुछ नहीं करती आज वो खुद का रोजगार कर रही है। छोटे छोटे से गृह उद्योग, आज की डेट में अगर आप हमारे गाँव जाए तो हर महिला सक्षम है।
2: दोस्तों, गांव की चौपाल से उठी आवाज नीति का हिस्सा बनने लगे तभी लोकतंत्र जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तभी पूरी होती है जब समाज का हर वर्ग खुद को उसमें शामिल महसूस करे।
3: नीतियां धरी रह जाएंगी बिना इनकी भागीदारी।
1: रुद्रानी जी, आपका नई उड़ान में स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि 25 वर्षों से आप ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो सबसे ज्यादा हैं और जिसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है?
4: नमस्कार शालिनी जी, आपके बेहतरीन काम के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जो आपने सवाल पूछा ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप भी काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको समझ आता है कि जो हमारी भागीदारी रही है, भागीदारी भारत आजाद हुआ है तब से नहीं है, हमारी भागीदारी आप इतिहास खोलोगे उसमें भी रही है। अलग अलग नीतियों में, राजदरबारों में हमें उन रत्नों में रखा जाता था जहां से हमारे विचार विमर्श लिए जाते थे, क्योंकि हम दो तरफा सोच सकते थे एज अ ट्रांसजेंडर व्यक्ति। तो अभी भी जो हाल फिलहाल में आप देखोगे पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नालसा जजमेंट आया, नालसा जजमेंट से पहले हमें सुना गया, हमें समझा गया और उस हिसाब से हमारे लिए नीतियां बनाई गई, उस नीतियों पे भी और बेहतरीन काम कर रहे थे और कर सकते थे। पर जो 2026 में हुआ यहाँ पे बिल्कुल हमें निकाल दिया गया, हमसे कोई सलाह नहीं दी ली गई, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। उससे ये प्रॉब्लम है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि एक आइडेंटिटी ये है जो दिल की आइडेंटिटी है और अपने मन की आइडेंटिटी शरीर की आइडेंटिटी नहीं है। और सरकारों को ये बात समझना इतना मुश्किल हो गया है, उन्होंने हमसे बिना पूछे हमारी बिना सलाह ली ये फैसला लेके आए हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है।
1: क्योंकि आप लोग लंबे समय से अपनी बातों को ऊपर तक पहुँचाते आए हैं और तभी शायद नालसा जजमेंट आया था, पहले नालसा बिल पास हुआ, नालसा जजमेंट आया और बिल बना, तो उस वक्त भी तो नीति निर्धारण में आप लोगों से सलाह हुई, तो ये अचानक से उस सलाह को तो बिल्कुल काट छांट के आउट कर दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन आपको नजर आते हैं?
4: देखिए, रीजन तो अभी तक मैं भी और समुदाय के बाकी लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ऐसा कोई भी किस्सा नहीं आया, ऐसी कोई भी कहानी नहीं है, ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पे जो ये सारी चीजें ये लेके आए हैं वो ट्रांस कम्युनिटी में उन्होंने कुछ गड़बड़ी पैदा करी हो। जैसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि जबरन किसी को किन्नर बनाना, ऐसा नहीं होता, ऐसा है तो कौन से रिकॉर्ड है, कहते हैं जबरदस्ती बच्चों के साथ ऐसा करते। देखिए, बच्चों से भीख मंगवाया जाता है सड़कों पे, आप देख छोटे छोटे बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, प्रोस्टिट्यूशन में, देह व्यापार में डाला जाता है। आपने कभी किन्नर बच्चों को देखा है ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए? नहीं। ऐसा ये तो बहुत ही अनर्गल बातें उनको जैसी लगी है उन्होंने क्या किया। और अभी तक जितना हमें समुदाय में पता है, क्योंकि नालसा जजमेंट से पहले हर स्टेट में बातचीत होती थी, फिर वो सारे स्टेट के लोग नेशनल फोरम में आके अपनी सलाह देते थे, फिर वो जाता था मंत्रालय, जाता था रिकमेंडेशन, फिर वैसे काम तो था। इस बार ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ, तो हम सब एज अ कम्युनिटी ऑफ ट्रांसजेंडर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों किया गया, उनके हिसाब से ये असली नकली उनके दिमाग में किसने डाला है, क्योंकि जितना बजट भी पिछले साल था वो भी वो नहीं खर्च कर पाए। तो आप समझने की कोशिश करें कि इतने ट्रांसजेंडर तो है ही नहीं कि ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं आपके एस्टिमेशन से, आप तो उनको भी सर्विस नहीं दे पाए जो ऑलरेडी जितना बजटेड था। तो आपको बहुत ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सरकार बहुत कंफ्यूज हो गई है, उनको किसी तरीके से ये समझाना होगा कि समुदाय के लिए आप फैसला नहीं ले सकते जब तक समुदाय की भागीदारी उस नीति निर्माण में ना हो।
2: दोस्तों, रुद्राणी की बातों को सुनकर हम कह सकते हैं कि समाज

0: का कोई भी वर्ग अगर अपनी बात कहने से वंचित रह जाए तो लोकतंत्र की तस्वीर अधूरी रह जाती है। भागीदारी ही वो पुल है जो समानता और सम्मान को जोड़ता है।
1: रचना जी, आपका भी बहुत स्वागत है नई उड़ान के हमारे सेगमेंट में जहां हम बातचीत कर रहे हैं।
2: बहुत धन्यवाद मैम यहां पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए। मैं यहां कहना चाहूंगी मैम कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का एकमात्र माध्यम है। कहा गया है कि अगर आप किसी राष्ट्र का पतन करना चाहते हैं तो आप वहां से शिक्षा को हटा दीजिए। तो जब हम शिक्षा की नीतियों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें ऐसी नीतियों का निर्माण हो जो इनको काम ग्राउंड लेवल पे करना है वो लोग उन नीतियों के निर्माण में जुटे। तो इसके लिए हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में टीचर्स को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें हमारी NEP 2020 की तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इसमें भी सभी शिक्षकों से सुझाव मांगे गए थे। सभी शिक्षकों के सुझाव जो अच्छे थे जिनका वृहद पैमाने पर एक इम्पैक्ट आ सकता था उन सभी को सुझावों को लेते हुए का निर्माण किया गया मैम। अभी जब विकसित भारत 2047 के अंतर्गत सुझाव देने की बात आई थी तो हम लोगों को आमंत्रित किया गया था और हम लोगों ने मैम वहां पर अपने सुझाव रखे थे। जैसे आज AI का जमाना आ गया और बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पकड़ने लगे, इसके लिए मैम हम लोगों ने सुझाव दिया था कि बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर किया जाए और बच्चों को योग और संस्कार से जोड़ा जाए। ठीक है, AI का समय है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। बच्चों की जो शुरुआती उम्र होती है ये उनके बौद्धिक विकास की उम्र होती है। अगर हम बहुत ज्यादा AI और फोन के माध्यम से उनको पढ़ाने और सिखाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दुष्प्रभाव पड़ेगा उसमें मैम। तो अभी जो ये उम्र है छोटी उम्र, इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा परिवेश से सीखने की जरूरत है और बच्चे मोबाइल कितनी देर देखें इसकी सख्त निगरानी जो है वो शिक्षकों को करनी चाहिए और उनके घर के अभिभावकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कितनी देर मोबाइल देख रहे हैं।
1: रचना जी, आपने ऐसा क्या बेहतर किया राज्य स्तर पे सम्मानित टीचर के रूप में आपको सम्मान मिला?
2: जब हम किसी विद्यालय की तरक्की की बात करते हैं तो हम वहाँ पर तीन चीजों को मुख्य तौर पे देखते हैं, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी और समुदाय। मैंने समुदाय को अपने साथ शामिल किया है जो कि एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चों के नाम तो लिख जाते हैं लेकिन कुछ उनकी घरेलू समस्याओं की वजह से और कभी कभी जीविकोपार्जन की वजह से उपस्थिति उनकी नियमित हम नहीं सुनिश्चित कर पाते। तो वहाँ पर मैंने अपने विद्यालय में मैंने कुछ नवाचार ऐसे किए जिसके माध्यम से मैंने अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ा। जैसे मेरा एक नवाचार मैम दैनिक अभिभावक सहभागिता था जिसमें हम प्रतिदिन असेंबली में 5 अभिभावकों को जोड़ते आ रहे हैं। तो जब हमारे अभिभावकों का जुड़ाव हमारे विद्यालय के साथ हो जाता है तो कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने लगती है। समस्या जो है हमारी छुट्टियों में इस नवाचार के माध्यम से इसका समाधान हमने किया। तो शायद मैम यही कुछ वजहें थी जिसकी वजह से मुझे राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका परिणाम हमारा विद्यालय जो है वो उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पर राज्य में है मैम।
1: लेकिन क्या इस तरीके को और भी जगह अपनाने के लिए प्लानिंग्स में लाया गया?
2: बिल्कुल मैम, जब ये नवाचार मैंने शुरू किया तो उसी समय एक SCERT की पत्रिका नवोन्मेष आ रही थी। तो नवोन्मेष पत्रिका में उन्होंने कुछ नवाचारों को मांगा जिसमें मैंने भी अपना ये नवाचार भेजा और ये नवाचार सेलेक्ट हुआ राज्य स्तर पर और इस नवाचार को नवोन्मेष पत्रिका में स्थान दिया गया। साथ ही सभी विद्यालयों में इस तरह के नवाचार के लिए बोला गया।
1: तो इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देता है मैम।
0: चलिए अब जान लेते हैं कि बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्र जी क्या कहते हैं।
3: मैम, बच्चों के लिए हम लोगों की प्लानिंग रहती है, बेसिक नीड्स हैं, इनके लिए हम लोग जोर देते हैं क्योंकि बेसिक नीड जो है ना, इसे एजुकेशन है, उनका स्वास्थ्य है, ये बेहतर रहे। सर्वोत्तम बाल हित पे जो अगर हमसे सजेशन मांगे जाते हैं तो क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं तो सबसे ज्यादा चुनौतियां हम लोगों के पास आती है कि बच्चों को एजुकेशन की सबसे बेस्ट रहेगा, स्किल में इनको कुछ सिखा दिया जाए। कुछ ऐसे परिवार है या कुछ ऐसे बच्चे है जो स्किल में भी काफी अच्छा, ऐसे कंप्यूटर बनाना है या कुछ ऐसा क्राफ्टिंग का कोई काम है तो बच्चे ज्यादा डेवलप करेंगे क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ लोगों को बेसिक जरूरत है।
1: अगर आपकी प्लानिंग में आपके सजेशंस ना जाएं तो आपको लगता है कि ये जो बच्चों के इस तरह के विकास हैं ये अधूरे रह जाएंगे?
3: सजेशन तो हम लोगों के जाते जरूर है क्योंकि हम लोग ग्रास रूट पे काम करते हैं।
1: अगर हम सलाह और सुझावों की आपसे बात करें, आपका क्या सुझाव रहेगा कि प्लानिंग में क्या और चीजें जोड़ी जाएं जिससे बच्चों के विकास पर बेहतरी की तरफ हम बढ़ सकते हैं?
3: जो गांव के लोग हैं आज भी इतना जागरूक नहीं है, सबसे पहले जागरूक करना इनको जरूरी है। इतनी जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं इसके बावजूद भी जागरूकता की कमी है।
1: हाउस हेल्पिंग के क्षेत्र में महिलाएं घरों में काम करती हैं, इसमें बच्चियों को भी साथ में ले जाती हैं, काम करवाती हैं जबकि उनकी पढ़ने की उम्र है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैडम, इसमें आज की डेट में जो चीजें अब है अब बहुत ही कम पाई जाती है क्योंकि अगर ऐसे कोई प्रकरण आते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों के लिए तो हम लोग योजनाओं से बच्चों को जोड़ते हैं।
1: क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे समाज के उन तमाम लोगों को जो कम पैसे में काम करवाने के लिए

0: बच्चियों को घर में घरेलू सहायक के रूप में रखते हैं।
1: मैं तो मैम इतने कहना चाहूंगा, ये कानून अपराध है। अब छोटी बच्ची है तो उसे कतई काम ना कराए, और ये इसमें बाल श्रम के अंतर्गत आता है, इस पे कार्रवाई होगी। मैम प्रत्येक जिले में टोल फ्री नंबर है 1098, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। या आप जिला प्रशासन है, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई बनी हुई है प्रत्येक जिले में, आपके 75 जिलों में, तो ये संबंधित तक सूचना पहुंच जाएगी और उस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग करते हैं।
2: दोस्तों, हमारे आज के इस विमर्श में शामिल सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र की आवाज बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रयास हम सबको करना होगा, बल्कि जो हम सोच रहे हैं वो जमीन तैयार करके दिखाना भी होगा।

तो साथियों, शालिनी जी के द्वारा की गई बातचीत के माध्यम से हमने ये जाना कि आखिरकार नीति निर्माण में सबकी भागीदारी क्यों जरूरी है और लोकतांत्रिक विकास के लिए ये कितना जरूरी है। समाज के लिए ये भी जरूरी है कि जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है उसमें विकास लगातार होते रहने चाहिए। राज्य सरकार लगातार रोजगार के माध्यम से और विकास कार्यों के माध्यम से लगातार इस पर ध्यान दे रही है। और जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में किया कि जो पक्षी हमारे यहाँ आते हैं दूसरे देशों से, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें ये सिखाते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपसी प्रेम भाव, सद्भाव और आपसी जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। आगे हम आपसे बातचीत करें, लेकिन आइए उसके पहले सुन लेते हैं गीत।

तो साथियों, अब समय हो चुका है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन ये कहते हुए जाएंगे कि आपस में प्रेम भाव बनाकर रखें और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करते रहें। हम मिलेंगे आपसे फिर से किसी नए दिन एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोता, हम आपको बता दें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वाणी सम्प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम्। शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेको देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70% भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2-2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् 12 राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ

0: पंचो जय हिंद।
1: अनुराधा,
0: हाँ,
1: का हालचाल?
0: हालचाल सब बढ़िया है। और एक चीज बताओ, हम कहा कि यू आज फोटो वो बहुत बढ़िया, हम कल शाम का देखा रहा है कि आप फेसबुक पर डाले रहो। देखो इंटरनेट का आप सबको रही चाहे जहां पर, लेकिन देख सबको सब जगह चाहते, को कहां पर है, को का कही रहा है। अच्छा घर में बताओ सब ठीक ठाक है? लड़का बच्चा भौजी उमरी कैसे हैं? और तुम लड्डू वड्डू बांट रहे हो, ऐसा कह रहा है कि
1: हम ना बांट रहे हैं? जो मौसी है रहती, उनका जो आवा रहा है ग्रामीण आवास,
0: अच्छा
1: प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनका सिले पुले अब तो पड़ी गए रहे, लेकिन रगाई चुगाई नहीं हुई पाई रहे।
0: हाँ।
1: तो ई बार भी सोचिंग चलो रगाई चुगाई कराई दी जाए। तो हम लोग कहा देखो भाई, जब स्लेब पड़ी रहा है तब तो तुम ना खवाए रहो,
0: हाँ।
1: लेकिन अब रंगाई चुंगाई कराए हो तो जरूर भैया देखो लड्डू बटेक चाहिए।
0: तो अच्छा तुम्हारे खुशी के खबर आई रहन, हम तो सोचा कोनो और ही बात है जो लड्डू बट रहा है, लेकिन यह तो भैया बहुत बढ़िया बात बता रहे हो कि देखो खुश रहे। और उनके साथ साथ देखो जो चाची बता रहे हो कि उनकी छत पड़ रहा है, खुश रहे, उनके जैसी तमाम बहनी है ऐसे, मतलब गाँव में यहाँ हर गाँव में है लगभग है जहाँ पर नए आवास बने रहे हैं या बन रहे हैं। तो भैया तमाम देखो कितनी बड़ी खुशी की लहर है कि जहाँ देखो एक सोचा जाए तो जब यू प्रधानमंत्री जी की आवास योजना नहीं चलत रहा है 2014 से पहले, तो देखो कितनी दिक्कतन का सबका सामना करे पड़त रहा। और परेशानी की बात ये रहे कि सब लोग सोचत रहे कि कैसे अपने लड़का बच्चन का पढ़ाई लिखाई और कैसे शादी बारात करे है, तो वही थे जब बच नहीं पावत रहे। तो भैया देखो कच्चे मिट्टी के घरन में यहाँ रहते हैं, छपरक नीचे रहते हैं, तिरपाल तान के रहते हैं, तो बहुत देखो मुसीबतन का सामना करे के यहाँ पड़त है।
1: बिल्कुल सही कहे हो। अच्छा देखो 14 पहले की जो बात कहे हो, तो आजकल का जब मौसम होत रहा है,
0: हाँ,
1: तो वो देखो भैया एक होती है आग बुझाने वाली मशीनें,
0: हाँ,
1: अगर जो वो निकलती रहे तो हम पच डराया जाते रहे कि भैया कोने गांव में आग लग गई हुई,
0: हाँ,
1: क्योंकि लगभग भैया 80 पैसा या 90 पैसा भर मान के चलो झोपड़ी पड़ी होती रहे,
0: हाँ,
1: फूस पतवार के बंगला होत रहे,
0: बिल्कुल
1: एक एक घर में चार चार छह छह बंगला पड़े होत रहे, वह हम जानवर होत रहे,
0: बिल्कुल तो चूल्हे चूल्हे कंडा लकड़ी का देखो खाना पकाना रहे तो वही में थोड़ी सी भी अगर चिंगारी लग रहे तो पूरा घर और परिवार गांव के गांव जल जाते रहे।
1: बिल्कुल, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह योजना लाई गई तब से अब तो देखे थे अपने गांव में यहाँ छप्पर ऊपर भी दिखाई नहीं पड़ा।
0: बिल्कुल भैया देखो एक यह योजना का सरकार की मदद से देखो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही जो हम पंचन का सीधे लाभ कैसे मिले और कैसे कोनो दिक्कत परेशानी का सामना ना उठावे पड़े कि तनको तकलीफ में ना गुजारे के यहाँ पर। तो भैया देखो ऐसा नहीं कि और बहुत सारी जो भी हमारी महिला बहनी बताती है ना, ऐसा नहीं, पुरुष भाई भी बतलाते हैं, सब लोग आपस में जब कमो बैठे थे तो चर्चा नहीं होते रहा थे हर जगह पर, तो चर्चा हो तो भैया देखो बहुत सब बहुत खुश रहा थे कि देखो भैया। दूसरा बात एक बात और है, कभू कदा भैया जो भाई लोग हैं कभू कदा तानो देते हैं कि अरे भैया अब तो तुम तो मलकी नगर तुम्हारे नाम का आवास आवा है,
1: तो इमा देखो कोई बुराई ना है,
0: हाँ।
1: हम यहाँ पर तीन बार तुम बहनी बहनी कहो, चौथी दाम तुम हो कहो भाई,
0: हाँ।
1: तो बहुमत भैया तुम्हारा सबका हैन है इस सरकार में,
0: हाँ।
1: लेकिन एक चीज है कि देखो जब ई प्रकार के कोई काम होते हैं सकारात्मक,
0: हाँ।
1: तो बड़ा दीर्घकालिक असर पड़ता है, क्योंकि पता चलत रहा है तब एक आदमी का सपना होत रहा है कि कैसे वो 50-60 साल की उम्र तक हम एक मकान बनवाए ले, लेकिन ई योजना के आए से दिमाग से यू बोझ तरीके वाला नंबर है कि हमका अपना मकान बनवाना है,
0: बिल्कुल भैया एक सपना जीवन का सपना पूरा होगा,
1: बिल्कुल। अब वह चीज मनई का देखो दूसरी तरफ लगा लाग कि चलो अब मकान तो सरकार की तरफ से बनवा दिया गया है, लेकिन अब बाकी जो पैसा है या और आर्थिक व्यवस्था है इका हम पढ़ाई पर लगाई या कोनो रोजगार में लगाई,
0: बिल्कुल।
1: तो इकी वजह से गांव के जीवन में अपने पंचन के जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं,
0: बिल्कुल भैया। जो देखो गरीब तबके के लोग रहे हैं, सोचते हैं वंचित हैं पिछड़े लोग रहे हैं, तो इतने सारे लोगों का ई तरह तरह लाभ मिलना और आगे आए के देखो अब उनका बचत करे का मौका भी मिल जाती है। देखो ई तरह दिमाग तो होगा जैसे लड़का बच्चन की शादी करे के पढ़ाई करे के, तो वे लोग कुछ काम काज करे के बारे में सोच सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहो। अच्छा देखो बातें तो तमाम होती रहती हैं, लेकिन एक जो सबसे मुख्य विषय है वर्तमान समय में वो है जल

0: संरक्षण और जल संचयन,
1: इससे
0: अपने ग्रामीण जीवन में का का परिवर्तन हो सकते हैं? क्योंकि अब तो हम देखते हैं भैया पिए वाला पानी तक का देखो उनकी दिक्कतें हो लगी हैं, क्योंकि तालाब है, पोखर है, ये सब सूख गए हैं एक प्रकार से।
1: हाँ।
0: और चूंकि जो बरसात का पानी हो तो वो लोग हम लोग संचयित नहीं कर पाए थे, वह कहूँ ना कहूँ अनुपयोगी
1: पानी का जल स्तर भी नीचे जा रहा है।
0: तो आओ यह से एक संबंधित वार्ता सुन ली जाए, जल संचयन में ग्रामीण समृद्धि, इके वार्ताकार है नंद किशोर वर्मा जी।
1: बिल्कुल भैया सुन ली जाए।
2: नदियां झील तालाब सब वसुधा के ये अंग, बिछुड़ गए पुनि ना मिले, बिगड़ेंगे सब रंग, बिगड़ेंगे सब रंग। ये नदियां, ये झील तालाब पोखर हमारी वसुधा के मूल अंग हैं, और इनके बिछुड़ने से हमारी हरियाली बिगड़ जाएंगे। लेकिन आज जल के अति दोहन से धरती की कोख अर्थात भूगर्भ जल बहुत ही तीव्र गति से नीचे जा रहा है, जो लगभग 1 से 1.5 मीटर प्रतिवर्ष होता है। पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रचार प्रसार हेतु अनेक संगठन जल चौपालों एवं हरित चौपालों का आयोजन करते हैं और जनमानस तक अपना संदेश और अध्ययन भी करते हैं कि प्रदेश में जल की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता, जल की उपयोगिता, जल संरक्षण के प्रति उदासीनता, जल से संवेदनशीलता में कमी पहलुओं पर अध्ययन किया गया और पाया कि आज संपूर्ण देश भीषण जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जो कभी कुएं और तालाब पूरे साल पानी से भरे रहते थे, आज वे सूखते जा रहे हैं। इसके लिए हम और आप सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आप स्वयं अपने ही गांव में देख लीजिए कि आज आपके ही गांव के चारों दिशाओं में कम से कम 3 से 4 तालाब हुआ करते थे। आज हमारे अपने निजी लाभ के कारण अतिक्रमण कर पाट पाट कर हमने खत्म कर दिए कुओं की उपयोगिता। खत्म होते ही कुओं को विभिन्न कारणों से पाट बराबर कर दिया गया। एक समय था कि हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत और अपनी समस्त पूंजी लगाकर जिन्हें बनवाया था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये कुआं, पावड़ी, तालाब आदि माँ धरती के श्रीमुख हैं, जिनसे धरती माँ पानी पीती है और अपनी कोख में जमा करती है, जो भविष्य में भूगर्भ जल के रूप में आपको वापस कर सके। आप स्वयं विचार कीजिए, अगर उनके मुख को ही बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। धरती पर उपलब्धता जल का लगभग खेतों व फसलों की सिंचाई में धरती पर उपलब्ध जल का लगभग 70% खेतों व फसलों की सिंचाई में, 20 से 25% जल उद्योगों में और 5 से 10% जल पेयजल एवं अन्य कार्यों में लिया जाता है, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन आदि कृषि से जुड़े उद्योग धंधे। जल के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हम और हमारे किसान भाई हैं। जल की कमी का पहला शिकार हमारे किसान भाई ही होते हैं। सर्वविदित है कि कृषि व पशुपालन ही आपका जीवन, परिवार की समृद्धि का आधार है, राष्ट्र के विकास का मूल है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। समस्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? हमारे प्रदेश में वर्षा तो पर्याप्त होती है, औसतन 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष बारिश होती है। यदि इसका आधा पानी भी हम सहेज लें तो जल संकट कभी नहीं आ सकता। लेकिन समस्या है कि हम उस पानी को सहेज नहीं पाते। बारिश का पानी बहकर नालों और नदियों के जरिए निकल जाता है और हमारे खेत, हमारे गांव पानी के लिए तरसते रह जाते हैं। अपने आसपास के तालाबों, पोखरों को स्वयं

देख लीजिए, अप्रैल आते आते ये जल संसाधन पूर्णतया सूख जाते हैं, जिसके कारण घुमंतु जीव जंतु प्यास से व्याकुल होकर आक्रामक हो जाते हैं, जिसके शिकार हम आपके परिवारजन ही बनते हैं। भूगर्भ जल स्तर का नीचे होना इसका प्रमुख कारण है और यहाँ तक हमारी बोरिंगे हैंडपंप पानी छोड़ देते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, जलन मूल जिन सरितन नाहीं, बरस गए पुन रहाई सुखाई। अर्थात जल स्तर अगर नीचे जाएगा तो सीधी सा उसका फर्क हमारी नदियों और तालाबों के आदि स्रोतों पर जाएगा। जल संचयन समाधान की एक कुंजी है। जल संचयन का अर्थ है बारिश के पानी को रोकना, संचित करना और उसे जमीन में पुनः पहुंचाना। यह कोई नई अवधारणा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने सदियों से पहले इसे अपनाया था। तालाब, बावड़ी, कुएं, जोहड़ आदि ये सब जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान के तरीके हैं, प्रतीक हैं। जल संरक्षण जल संचयन का ग्रामीण समृद्धि से सीधा संबंध है। जब जल से समृद्ध रहेंगे तो फसलों की सिंचाई लागत भी कम आएगी। जब गांव में पानी रुकता है तो उसका प्रभाव कई स्थानों पर दिखता है। खेतों को नियमित सिंचाई मिलती है, फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ता है, किसान की आय में वृद्धि होती है, पशुपालन डेयरी जैसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण गांव से शहर की ओर पलायन भी कम होता है। अर्थात जल संचयन सिर्फ पर्यावरण का ही विषय नहीं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण हम अवश्य ही देना चाहेंगे कि देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे प्रयासों ने बड़े परिवर्तन किए हैं। जहाँ सूखी जमीन पर फिर से उपजाऊ बन गई, जहाँ भूजल स्तर बढ़ा और लोगों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आई। हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर जन भागीदारी से बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन को अपनाना, पुराने तालाबों और कुओं का पुनर्जीवन, खेतों में मेड़बंदी, जल संरक्षण की संरचनाएं बनाना जैसे चौका पद्धति, अपना खेत अपना तालाब, खेत के रकबे के अनुसार हमें बनाना पड़ेगा, नदियों और नालों को प्रदूषण से बचाना और सबसे महत्वपूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करना। क्योंकि जब समाज जुड़ता है तो परिवर्तन अपने आप आता है। एक भावनात्मक दृष्टिकोण, हमारी धरती नदियां सिर्फ संसाधन नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। हम जल बचाते हैं तो हम केवल वर्तमान नहीं अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। और जल संचयन से क्या लाभ होते हैं? नीति आयोग के अनुसार कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कि जिन क्षेत्रों में जल संरचनाएं, तालाब, चेक डैम, कुएं बने, वहां फसल का उत्पादन 20-50% तक बढ़ा। रेन हार्वेस्टिंग से एक साल में फसल चक्र लगभग 135% से बढ़कर 180% तक हुआ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट कहती है जल संचयन के कारण कई राज्यों में भूजल स्तर 1-3 मीटर तक बढ़ा। उदाहरण, राजस्थान के अलवर में 5 सूखी नदियां फिर से बहने लगी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल उपलब्धता बढ़ने से किसानों की आय में 30-100% तक वृद्धि देखी गई। सिंचाई की लागत कम हुई, डीजल व बिजली का खर्च भी घटा। यूएनडी रिपोर्ट कहती है कि जल संचयन वाले क्षेत्रों में ग्रामीण पलायन 20-40% तक कम हुआ। गांव में ही खेती, पशुपालन और छोटे छोटे उद्योग बढ़े। और जल संचयन का पर्यावरणीय लाभ भी समाज को मिला। मिट्टी का कटाव कम हुआ, हरियाली क्षेत्र बढ़ा। जल संरक्षण व संचयन सिर्फ पानी बचाना नहीं अपितु आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिति

0: स्थिरता पर्यावरण संरक्षण तीनों का आधार है। और अंत में एक निवेदन, तो आइए हम सब मिलकर जल संरक्षण को जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएं। आज हम सभी एक संकल्प लें, हर एक बूंद की कद्र करेंगे, एक एक बूंद जल हम बचाने का प्रयास करेंगे। जल संरक्षण व जल संचयन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, साथ ही साथ अपने गांव, प्रदेश एवं राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे। क्योंकि नदियां जीवन दायिनी, जल का यह भंडार, बिन पानी जीवन नहीं, ना बिन नदियां उद्धार। जल संचयन से ही आएगी ग्रामीण समृद्धि। जल हमारी जरूरत है, इसके संचयन की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी होगी, अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए, और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है।
1: अनुराधा।
2: हाँ भैया।
1: देखो कितनी बढ़िया बात बताई, जल संचयन से ग्रामीण समृद्धि हो सकत है।
2: बिल्कुल।
1: देखो हम तो लोग जगह जगह पर लिखा देखे थे, चाहे वो विद्यालय हो या रेलवे स्टेशन हो या अस्पताल हो, देखो लिखा होते जल है तो
2: कल है,
1: स्वच्छ जल सुरक्षित कल, ठीक है ना।
2: हाँ हाँ।
1: और इसके अलावा जिसे जल संरक्षण अपनाए, भविष्य सुरक्षित बनाए।
2: बिल्कुल भैया, देखो जल के बिना जीवन ही है ही नहीं। बिल्कुल
1: बिल्कुल
2: है ना। तो देखो वही की चिंता सबका है, देश का और समाज का, अपन घर गांव कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये बात की देखो चिंता कर रहे हैं। बार बार हम लोग अपनी बतही में भी करत रही थे और चर्चा कीन करी थे, ताकि मतलब जो भी है सब अपने कार्य के प्रति, अपनी चीजन के प्रति सजग रहें। और हर चीज का देखो अब बारिश के दिन आ ही गए हैं, बिल्कुल, और शुरू हो ही गए हैं, कुछ कहा नहीं जा सके। लेकिन ये सब चीजन का अगर ध्यान रखें विशेष करके के, तो भैया देखो कोनो चीज का आगे आवे वाले दिक्कत परेशानी का सामना ना उठावे का पड़े।
1: तो अति बढ़िया जानकारी दे के लिए नंद किशोर वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो समय हो गया है कि अब इस समय पंच बहन का एक गौनी सुनाई दिन जाए।
2: बिल्कुल।
1: जैसा कि तुम जानती हो, तुमरे भी हमने उतार पड़े रहे शादी भी आए के रहे ना।
2: हाँ।
1: तो देखो इससे पहले जनेऊ भी होते थे, और जनेऊ का एक गीत सुन लीजिए, जनेऊ गीत, और इसका स्वर देनी ने नीलम पाठक जी।
2: बिल्कुल भैया सुना जाए।

0: पुर भैया।
1: हाँ राधा
0: भाई, बहुत बढ़िया सुनाया कि मन बिल्कुल झुगम उठा भाई के साथे साथ। अब हम पंचन का देखो खेती किसानी के कार्यक्रम का समय है, तो अपनी खेती पाती की बात तो जरूर कह लीन जाए, मैं बिल्कुल विलम्ब ना करो।
1: नहीं बिल्कुल कह लीन जाए। और तो देखो एक चीज है,
0: हाँ?
1: कि जब अपन खेती बाड़ी सही रहत है,
0: हाँ?
1: तो घर के चाहे जो कार्यक्रम हो, चाहे शादी ब्याह हो, मुंडन हो, भैया जी का कहते हैं परीक्षा हो, गोद भराई हो, सब
0: अपन देखो सब चीज, हाँ देखो नफा मुनाफा देखो सब कुछ अपनी खेती पट्टी का होती है।
1: बिल्कुल खेती बाड़ी में कमी
0: जो ना कहा जाते हो वही का हम कही दिन
1: नहीं वही चीज है भैया, वही चीज है खेती बाड़ी में तनको कमी हो तो जान लो कि तुम्हारी सबकी खरीदारी पर कमी आ जाती है।
0: बिल्कुल ये बात हमको पहले बता चुके रहो, अभी पिछले जब हफ्ता में यहाँ मिले रहो तो बताया रहो कि घर में काम आ रहा है तो हमको पहले ही थे इंगित कर दें कि हाँ नफा मुनाफा देखो सब कुछ अपनी खेती बाड़ी ही से है। और भैया अपने सबके का हमको तो लगे थे कि पूरे देश की जीविका हम पंचन के का पूरे देश यही पर टिका है।
1: लेकिन एक चीज है कि हाँ। देखो जब खेती बाड़ी में कोई इससे पहले नुकसान होता रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होता रहा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जो द्वारा किसान सम्मान निधि योजना लाई गई है,
0: हाँ,
1: तब से कहूँ न कहूँ दिक्कतें दूर हो गई हैं।
0: कहूँ न कहूँ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। देखो जब अपन खेती पाती बोवे का समय होता रहे तो बहुत चिंता होता रहे कि मतलब हम कैसे बुवाई करबे, कैसे जुताई करबे, कैसे खाद पानी की व्यवस्था करबे, तो देखो ये चिंता तो होते रहे। और कई बार नई व्यवस्था हो पावत रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग महाजन से जाके पैसा रुपया भी लीन जाते रहे कि अपन खेती बाड़ी कैसे। अब देखो ये सब चीजों से छुटकारा मिल गया है और चिंता मुक्त हो गई है।
1: बिल्कुल, अगर जो अपने पंचन पास देखो जिनके पास पंच बहन पास खेती है,
0: हाँ।
1: खेती का लेके देखो जो सरकार है वो बहुत गंभीर है और चिंतित रहा है, जो भी उनके हित के कार्य होते हैं उनका करे का प्रयास करते हैं। चाहे देखो किसान क्रेडिट कार्ड हो,
0: हाँ।
1: सरकार का यो शत प्रतिशत लक्ष्य है कि सबका किसान क्रेडिट कार्ड बना हो, उनका फसली ऋण मुहैया करावा जाए।
0: बिल्कुल भैया,
1: यह के साथ साथ में यहाँ उनमें कौनो कमी ना हो पावे या वही ना महसूस कर पावे कि देखो हम किसान हैं ना, वो फलाने भैया देखो हुआ पर काम करते हैं तो उनकी स्थिति ठीक है।
0: हाँ कि अगर
1: के लिए, हाँ
0: बिल्कुल आज हमारे पास भी होते अगर हमारी स्थिति ठीक होते तो हम उनकी तरह से कही पाई थी, तो ये चीजन का महसूस अपन कमी महसूस ना कर पाए, कोई चीज दिक्कत ना उठावे के यहाँ पर है या कोनो महाजन पर। देखो भैया कई बार होते रहे कि हम पंचन की खेती पाती या कोई चीज होते रहे तो गृही भी रखने की जरूरत पड़ जाती है। देखो बहुत सारी चीजें देखी है यही बार बार बार हम उनका शामिल कर रही हैं कि बहुत बड़ा विषय है। तो हर चीज देखो अपन खेती पाती पे ही टिकी रहा थे और तो एक अलावा तो कुछ हो रहा है नहीं। अब प्रधानमंत्री जब से देखो किसान सम्मान निधि योजना आए गए है तो इनसे हमारे बहुत सारी चीजें की बचत भी हो जात और भैया देखो कर्ज पानी तरह भी बच जाए थे।
1: इके देखो जो नाम है वह है अपने आप में यहाँ बहुत बढ़िया लगत है।
0: हाँ।
1: लगत है कि सम्मान दिया जा रहा है हमारी खेती बाड़ी का, ऐसा ना है कि एक प्रश्नवाचक नजर से देखा जा रहा है।
0: हाँ,
1: कि किसान है
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे नाम से लगते है तो या भैया देखो खुशी जब घर में यहाँ आवत है कि भैया देखो खाते पर अब तो सीधे सीधे आ जाते ना पैसा।
0: बिल्कुल भैया देखो बीच का देखो कोनो ले नहीं सकत, एक रुपया भी ऐसी वैसी नहीं कर सकत, पहले तरह नहीं होती है कि नीचे पहुंचत पहुंचत कि 25 पैसा या 10 पैसा बचे कि यहाँ है।
1: नहीं, नहीं,
0: अब तो सीधे देखो बैंक खाता अपन लगा है और सीधे भैया जैसे हुआ तरह आवत है तो सीधे तुम्हारे जेब में मान लो गिरते हैं।
1: बाबा दो दिन पहले चश्मा

0: के देखे लगा तो मैसेज आवा है कि नए मोबाइल में आवा है।
1: हाँ।
0: तो या देखो जागरूकता जो है यू कहूँ ना कहूँ देखो वास्तव में अच्छा भविष्य का संकेत है।
1: हाँ।
0: और यह के साथ साथ देखो अभी देखो हम सुन रहे हैं कि भैया तमाम भाई बहन का कुछ बता रहे हैं नए आवा है।
1: हाँ।
0: उनके में यहाँ बताए कहन की हमारा का भैया वो नए ऑनलाइन नए करा पाए रहन जो किसान आईडी बन नहीं रहे या फार्मर रजिस्ट्री हुई रह रहे हैं। तो इस समय देखो बन नहीं है, जो भी किसान भाई हैं वो अपना फार्मर रजिस्ट्री जरूर बनवा लें, किसान आईडी बनवा लें। देखो किसान आईडी भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है अपने किसान भाई का,
1: बिल्कुल
0: यू एक पहचान पत्र की तरीके से है। अगर जो कोई भी सरकार की सेवा आ रही है उसे लाभ मिल रहा है या मिली है भविष्य में,
1: हाँ।
0: तो तुम्हारे देखो खसरा खतौनी मतलब जो
1: जमीन के कागज, हाँ।
0: तुम्हारा बैंक अकाउंट और तुम्हारा आधार कार्ड या पैन कार्ड,
1: ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी,
0: सारे चीजन में यहाँ भैया कोई देखो नाम मिसमैच ना हो पाए, जीका कहते हैं नाम में यहाँ एक रूपता रहे।
1: हाँ। कि मतलब समान हर चीज के बैंक पासबुक में वहाय हुए, आपके आधार कार्डो पर वहाय हुए, सब चीजन के एक मतलब या के तना के हुए तन को फिर बदल ना हुए।
0: बिल्कुल सही कहो, जैसे तुम्हारा नाम अनुराधा है तो यू ना आधार कार्ड में अनु सिंह लिखा हुआ है।
1: हाँ।
0: और खतौनी में अनुराधा हो,
1: बिल्कुल
0: तो नाम ई प्रकाश से जो नाम देखो एक है तो कोई भी सरकार की योजना में तुम सीधे भागीदार बन सकते हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पीएम किसान निधि हो, या जिका भैया कहते हैं फसल बीमा योजना हो,
1: बिल्कुल,
0: या कोई अनुदान तुमका लेना हो जैसे कृषि यंत्र है या और कुछ है।
1: हाँ।
0: तो ई पर हमका सबका बहुत लाभ मिल सकता है, तो इका ध्यान रखे की
1: बिल्कुल भैया।
0: और जो पंच भाई जैसे नाय कह पा रहे तो हम लोगों ने चाहिए कि उनका हम लोग सहयोग करें।
1: बिल्कुल भैया, अगर जिनका नई जानकारी है तो बता दो। अब तो देखो हर जगह पे सहज जन सेवा केंद्र खुल गए हैं, और दूसरी बात हर घर में लड़का बच्चा पढ़े लिखे अपने फोन से भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। अच्छा देखो तुम बहुत बढ़िया जानकारी की बात बताओ। देखो इस समय खेती बाड़ी की बात की जाए तो तमाम पंच भाई हैं वे ग्रीष्मकालीन मूंगफली की तैयारी कर रहे हैं, और मूंगफली एक बहुत बढ़िया फसल होते हैं, चाहे तुम उइके रूप में ले लो भैया तेली रूप में ही ले लो क्योंकि इसे तेल भी उत्पादन किए जाते हैं।
1: हाँ।
0: या इका भैया मेवा के रूप में भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो
1: देखो
0: आओ इसे सुन वार्ता एक जुड़ी सुन ली जाए।
1: बिल्कुल भैया, तो भेंट वार्ता है ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामायिक कृषि कार्य, जी के वार्ताकार हैं डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र जी, और भैया इसके भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो भैया आओ ई जानकारी का सुना जाए और समझा जाए।
0: बिल्कुल।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां गर्मी में आपके पास सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं और तिलहनी फसल ग्रीष्मकालीन मूंगफली लगाए हैं, तो इस समय फसल खेत में है, सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से सहायक निदेशक ब्यूरो डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां ग्रीष्मकालीन मूंगफली खेत में है तो सामयिक कृषि कार्य में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
3: सबसे पहले किसान भाई बहनों को सादर प्रणाम है। मैं एक चीज़ सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि ग्रीष्मकालीन या समर में या गर्मी में जो मूंगफली की खेती है वो बहुत ही लाभकारी और बहुत ही किसानों के लिए एक अच्छे आय का स्रोत है
2: जी।
3: और वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन मूंगफली को लगा लिया होगा, उन्होंने उनके लगाने का जो समय रहा है वो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में उन्होंने लगा लिया। लेकिन अब उन्हें करना क्या है उसमें, उस पर हम लोग फोकस करेंगे।
2: तो गर्मी का समय है तो फसल की प्यास बुझानी है
3: जी,
2: तो जल प्रबंध कैसे करें, कब करें, कितना करें?
3: जल प्रबंधन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस फसल में हमें लगातार, क्योंकि ये बलुई दोमट मिट्टी में होने वाली फसल है और बलुई दोमट मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पानी ऐसा होना चाहिए कि जो उसमें पानी लगे ना। सामान्यतः इसमें 5 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाई हमारे कम से कम 1 से 2 सिंचाई दे चुके होंगे, ठीक है। शेष 3 सिंचाइयों को उन्हें देना है। उसमें मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों से बहुत विनम्रता से अनुरोध करते हुए ये बता दूं, 3 स्टेजेज ऐसी हैं जो बहुत क्रिटिकल स्टेज हैं,
2: यानी क्रांतिक हैं,
3: बहुत क्रांतिक हैं। इस स्टेज पे हमें पानी जरूर ही देना है,
2: यानी फसल प्यासी न रह जाए।
3: बिल्कुल। उसमें सबसे पहली स्टेज है, अब किसान भाइयों के खेत में जो है मूंगफली में फूल आ रहा होगा, तो फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रांतिक है। एक तो

0: स्टेज पे जरूर सिंचाई करें।
1: यानी फूल आते ही।
0: जी, दूसरी जो स्टेज है वो पेगिंग स्टेज है। पेगिंग स्टेज है,
1: यानी खूंटी बनती
0: खूंटी
1: है।
0: बनती है उसमें, और खूंटी जो है वो फ्लावरिंग के जस्ट बाद जब फूल हमारा झड़ जाता है, झड़ने के बाद फिर उसमें पेगिंग होती है। ये भी स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पेक्स ही नहीं बने और वो ज़मीन में गए ही नहीं तो उससे हमारी यील्ड जो है वो प्रभावित होती है। और तीसरी स्टेज जो है पानी के लिए, वो दाना भरते समय, जब हमारा दाना है, कोई भी दाना है, स्पेशली मूंगफली में देखें तो दाना दूध होता है, उसमें सबसे पहले दूध बनता है, उस दूध के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो उस स्टेज पे किसान भाई जरूर पानी अपनी फसलों में दें, हल्का पानी दें।
1: यानी तीन क्रांतिक अवस्थाएं हैं, फिर फसल की जरूरत, खेत की स्थिति और मौसम को देखते हुए क्रांतिक अवस्थाओं पर पानी का प्रबंध करते रहें।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन भी तो जरूरी है।
0: बहुत ज़रूरी है, खरपतवार हमारी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी मूंगफली वहाँ से हम पोषक तत्वों को और पानी को खींच रही होती है, वो और ज़्यादा तेज़ी से खींचते हैं, इसलिए हमें खरपतवारों का प्रबंधन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैं बताऊँ आपको, अपने किसान भाइयों को, कि उस प्रबंधन के लिए, क्योंकि मूंगफली एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप भी है, हम केमिकल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, खड़ी फसल में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि वो खेतों में जाएं, सामान्यतः रोज जाते ही हैं,
1: नियमित निगरानी करते रहें।
0: नियमित निगरानी करें, जहाँ उन्हें लगता है कि फसल या पौधे के बगल में कोई खरपतवार उगा है तो उसको आसानी से निकाल लें, या उसको जो है लेबर लगा के निकलवा लें। किसी भी केमिकल का प्रयोग सामान्यतः इस स्टेज पे ना करें।
1: यानी खरपतवारों से मुक्त रखें और उसके लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहें,
0: जी
1: ताकि खेत साफ सुथरा रहे।
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर साहब, फसल की भूख भी मिटाना है। वैसे बेसल रोज में जो भी पोषक तत्वों की मात्रा है किसान भाई दिए होंगे, खड़ी फसल में क्या कुछ पानी छिड़काव करना है?
0: खड़ी फसल के लिए मैं बताऊं, इसमें सामान्यतः जो जरूरत होती है पोषक तत्वों की, उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, क्योंकि स्वयं ही ये जो है एक लेगुमिनस क्रॉप है, ये एक जो है फली वाली फसल है, तो इसमें सामान्यतः 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की ही
1: यानी
0: जरूरत
1: दस
0: होती
1: किलो पर एकड़।
0: है। हाँ, और इसमें फास्फोरस की जरूरत जो है लगभग 40, और पोटास की भी जरूरत लगभग 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत होती है, जिसको किसान भाइयों ने हमारे दिया होगा। लेकिन एक यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जिप्सम की आवश्यकता होती है,
1: यानी सल्फर की जरूरत।
0: सल्फर और कैल्शियम। जिप्सम हमारा एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा खाद है जिसमें कैल्शियम भी है और सल्फर भी है,
1: जी
0: और इसको जरूर दिया जाना है। इसके देने से फायदा ये होता है कि हमारे जो पॉट्स हैं वो एकदम सुडौल और मजबूत अच्छे बनते हैं। दूसरा, जो उसमें तेल और प्रोटीन की क्वालिटी है वो सल्फर की के कारण अच्छी हो जाती
1: यानी
0: है,
1: गुणवत्ता बढ़ जाती है।
0: गुणवत्ता बढ़ जाती है। बिल्कुल,
1: तो जिप्सम का प्रयोग अगर बेसल रोज में नहीं किए हैं तो क्या गुड़ाई के समय कर दें?
0: गुड़ाई के समय कर सकते हैं, जैसे अगर जो फ्लावरिंग स्टेज में है, इस समय जो फ्लावरिंग स्टेज में फसलें हैं उनमें गुड़ाई करें और धीरे धीरे वो मिट्टी चढ़ा लें, वही डाल के
1: यानी साइड ड्रेसिंग कर दें।
0: बिल्कुल साइड ड्रेसिंग कर लें। और इसमें मैं अमाउंट बता दूं आपको, 250 से लेके 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको अप्लाई करें।
1: यानी एकड़ की बात करें तो लगभग 100 से 120 किलोग्राम पर्याप्त है।
0: हाँ, 100 किलोग्राम में
1: जिप्सम
0: बिल्कुल।
1: जहाँ उपलब्ध है तो जरूर प्रयोग करें, या फास्फो जिप्सम का भी प्रयोग कर दें अगर जिप्सम नहीं मिल रहा है तो।
0: कर सकते हैं, कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, फसल सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ हानिकारक कीट और बीमारियों के चलते फसल को नुकसान होता है मूंगफली में।
0: बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को बताऊं, एक बहुत ही व्यवहारिक बात बता दूं कि हमारी जो जितनी भी हमारी अच्छी फसलें हैं वो कीटों और रोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करती हैं, क्योंकि इस समय हरी हरी, जहां आप खेत में देखें एकदम हरियाली भरी पड़ी है मूंगफली के खेत में,
1: जी
0: तो वो सामान्यतः कीड़ों और रोगों को अट्रैक्ट करती है। इसमें मुख्य रूप से दो, एक कीट है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसको व्हाइट, अंग्रेजी में व्हाइट ग्रब कहते हैं या सफ़ेद लट कहते हैं। ये एक गिटार होती है जो जो जड़ों को खाती

0: और
1: हाँ
0: जड़ों को खा के वो पौधे को सुखा देती है। जहाँ भी लग रहा है हमारे किसान भाइयों को उनके पौधे सूख रहे हैं, एक दवा है, मैं उस दवा को बता दूं आपको, क्लोरपाइरीफॉस 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से
1: यानी
0: उसको अप्लाई
1: एकड़
0: कर
1: में
0: दें।
1: 10 किलोग्राम
0: बिल्कुल
1: पर्याप्त है,
0: बिल्कुल
1: दानेदार दवा।
0: बिल्कुल दानेदार दवा है, उसका प्रयोग करें।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, इस समय खेत में फसल है तो क्या सिंचाई नाली में भी इसका प्रयोग,
0: कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सिंचाई नाली में ही प्रयोग करेंगे इसका।
1: और घोल वाली दवा का प्रयोग करेंगे?
0: हाँ, घोल वाली दवा की जरूरत नहीं है, इसी दवा से वो कंट्रोल हो जाएगा।
1: इसके अलावा कोई बीमारी?
0: एक बीमारी है जिसको टिक्का रोग कहते हैं, टिक्का रोग कहते हैं, उसको लीफ स्पॉट भी कहते हैं।
1: यानी पत्र दाग।
0: हाँ, उसको जो है उसमें पत्ती में जो है भूरे भूरे स्पॉट्स बनते हैं और वो बाद में काले हो जाते हैं, काले होके फिर वो पत्ती सूखती, उसके सूखने से ये हो जाता है कि हमारा जो फोटोसिंथेटिक एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, उसके कम हो जाने से हमारे हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाता
1: यानी
0: है।
1: भोजन बनने की प्रक्रिया बाधित होती है और उत्पादन पर असर पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे किसान भाई, एक इसमें छोटा सा एक फफूंद नाशक है जिसको मैंकोजेब कहते हैं, 2.5 ग्राम पर लीटर की दर से इसका घोल बनाएं और पत्तियों पे छिड़क दें। जहां उनको लगता है कि ये रोग प्रतीत हो रहा है तो उसको वो छिड़क देंगे तो वो रोग कंट्रोल हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, क्या इस समय गर्मी का मौसम है, मल्चिंग भी फायदेमंद होगा?
0: मल्चिंग, बिल्कुल मल्चिंग सदैव फायदेमंद है। और मल्चिंग में अगर दो तरह की मल्चिंग है, अगर ऑर्गेनिक मल्चिंग कर ले जाए वो जैसे
1: फसल अवशेष है,
0: फसल अवशेष हैं
1: पुराना पुआल है।
0: हाँ, उससे अगर मल्चिंग कर ले जाए तो वो सोने पे सुहागा है। इसलिए सोने पे सुहागा है कि एक तो वो नमी को संरक्षित कर देगा, दूसरे सिंचाई के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके उसी में वो मिल जाएगा, उसके मिलने से जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी के सभी जमीन में चले जाएंगे और पौधों को मिल जाएंगे।
1: और खेत का हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा।
0: बिल्कुल बढ़ जाएगा, एकदम हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। आपकी बात एकदम सत्य है कि बिल्कुल बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो एक तरह से हीमोग्लोबिन ही है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके ब्यूरो कार्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्रा है, मैं सहायक निदेशक हूँ ब्यूरो में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। मेरा मोबाइल नंबर किसान भाई लिखें, 9412116679,
1: हिंदी में?
0: हिंदी में 94121-166-79, 94121-166-79।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं किसान भाइयों से बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करूंगा, ये इस सीजन के लिए बहुत अच्छी फसल है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों में हमारे किसान भाइयों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। हम निवेदन करेंगे कि मैक्सिमम खरीफ और रबी के बीच का जो समय है वो समय आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और हमें न्यूट्रिएंट्स दे सकता है, तो आप इसकी खेती को करें और इसकी खेती को बढ़ावा दें।
1: डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबको, किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अनुराधा,
3: हाँ भैया,
2: देखो कितनी बढ़िया जानकारी दीन ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य के बारे में
3: हाँ
2: डॉक्टर हरकृष्ण मिश्र भैया, और इनसे कितनी बढ़िया तरीके से देखो पूछिन जो हमारे लोगों के सहज सवाल होते हैं खेती बाड़ी संबंधित,
3: बिल्कुल
2: डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो इनके लिए इनका दोनों जन का
3: धन्यवाद।
2: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है
3: हाँ
2: और चूंकि जो हमारे पशु हैं बिना उनके अपन खेती बाड़ी भी अधूरी रहत है, तो उनके लिए चारे का प्रबंधन इस समय और हरे चारे का प्रबंध बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल भैया, अब देखो अपन पंचन के हर चीज़ का अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो देखो अपन जानवर भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में खाना पीना और उनकी देख रेख के बारे में, यह सब चीज़ों के बारे में देखो यहू पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है।
2: बिल्कुल, अगर देखो हम लगातार उनका सिर्फ भूसा दे रहे हैं या सूखा चारा दे रहे हैं सिर्फ दाने के साथ में,
3: हाँ
2: तब भी उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

0: थे या उनके मुख्य प्रकार की चैतन्यता ना रहा थे।
1: बिल्कुल भैया, देखो जैसे अपने खाए पिए में सब चीज की आवश्यकता होती है, वैसे अपन जानवर भी देखो कोई और नहीं है, अपने जैसे एक बच्चन के अपने देख रेख करी थी वही तरह के घर में लोग रहा थे, वही तरह के अगर अगर अपने खूटे पर जानवर हैं तो उनकी भी देख रेख, उनके चारा खाना पानी रहे और सब चीजें देखो सावधानी भी करे और उनका कैसे सुरक्षित रखे कहीं और कैसे उनका प्रबंधन करे उनके बारे में, तो ये सब चीजें का देखो भैया ध्यान में रखे चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा देखो इस हमारे जो पंच भाई है हालांकि ध्यान रखते हैं उमा उई के लिए, देखो चाहे बरसीम हो या फिर ज्वार या बाजरा के रूप में हरा चारा उपलब्ध करावा करते हैं अपने पशुओं का,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: भैया
0: देखो एक है जिसका नेपियर घास भी कहते हैं, या बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि अब तो
1: हाँ
0: देखो
1: भैया देखो
0: गांव में
1: बहुत
0: हर
1: बढ़िया देखो उगत है, देखो बरसीम के बाद अगर है तो ये नेपियर घास बहुत बढ़िया देखो उगत है।
0: बिल्कुल बारामासी एक प्रकार से यू हरा चारा के रूप में उपलब्ध रहा था अपने खेतन में यहाँ, और इका जो अपने पशु हैं उनका बहुत बढ़िया तरीके से देखो खाद भी है सुपाच्य भी होते हैं। तो हम पंचन का बस करे का यूँ है जहाँ अगर जो हम एक एकड़ में अपनी फसलें बोए रहने तो वह मैं देखो बीघा डेढ़ बीघा दो बीघा अपने जितने पशु हैं उनकी क्षमता के अनुसार हरे चारे के प्रबंधन भी अपने खेत में यहाँ जरूर करी।
1: बिल्कुल
0: तो और भैया देखो एक किसानी गीत फिर से सुनवाए दें जाए जब हरे चारे प्रबंधन की बात कर रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, है
1: भैया
0: ना? तो
1: हाँ
0: कोई है गीत
1: हाँ भैया किसानी ही गीत है,
0: सुरभि
1: विवेकानंद
0: का?
1: व्यास भैया सुनाए रहे हैं तो आओ भैया ये किसानी गीत का सुना जाए।
0: बिल्कुल।

0: हाँ भैया,
1: देखो कती बढ़िया बात बताइन कि अपनी जो मेहनत से है
0: हाँ
1: वह से देखो अपन घर परिवार समाज देश यहाँ तक कि दुनिया चल रही है किसानन की।
0: बिल्कुल भैया। देखो मेहनत तो सबसे, अगर मेहनत नहीं करबे, अगर कोनो काम नहीं करबे तो फिर आगे काम कैसे चली। और दूसरी बात ये हो, बहुत लोगन के यहाँ सुना कर रही थी, कहीं है बैठे रही है और कहीं है भगवान है करते नहीं। तो भैया देखो, हर काम करे खातिन कुछ ना कुछ करे चाहिए। घर में अगर अनाज भी रखा है, उका अगर हमका खाए के है तो उका हमका बनावे के परी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: और कोई कामकाज शुरू करे के तो वह खातिन पढ़ाई लिखाई घर के बाहर बाहर और निकरे के परी।
1: बिल्कुल सही कहो। देखो अच्छा, खेती बाड़ी में देखो मौसम का बड़ा महत्व होता है अपने, है ना?
0: हाँ
1: तो मौसम संबंधी कोई जानकारी है?
0: बिल्कुल है। और हम देख रहे हैं अभी, आपको कहूँ जाए के अयोध्या का नक्शा बार बार खोल रहे रहो।
1: तो अरे चलो ठीक है, वो जाए है तो देख ले, लेकिन तुम बताओ इतनी मौसम कैसा रही है।
0: ठीक है भैया, देखो बिल्कुल सुनो, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले आवे वाले 7 दिन का मौसम का पूर्वानुमान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 9, 10 और 11 तारीख का पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 9 तारीख का पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। 10, 11 तारीख का मौसम शुष्क रही। 12, 13, 14 तारीख का पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है।
1: बिल्कुल देखो, और यह के साथ साथ एक जानकारी दे दी जाए कि कल के कार्यक्रम अपन
0: बिल्कुल
1: जो है
0: भैया।
1: सुनिए कहानी पाठ शीर्षक कबहू कम कबहू ज्यादा, और इसके देखो कहानीकार हैं लायक राम मानो भाई,
0: हाँ,
1: और यह के साथ साथ अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त होते हैं। तो पंचवहन से लीन जाए विदा,
0: जय
1: जय हिंद।
0: हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले

0: का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न, कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी वानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय थीम बेस्ड कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष

0: राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
2: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
3: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने आज ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विज्ञान समाचार और एआई अंतरिक्ष तक भारत के बढ़ते तकनीकी कदम। डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रवीण कुमार की भेंटवार्ता।

0: नमस्कार। विज्ञान, तकनीक, आविष्कार और नवाचार से जुड़े विज्ञान जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। इस अंक में हम जानेंगे इस सप्ताह विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुई गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे AI से अंतरिक्ष तक भारत के बढ़ते तकनीकी कदम विषय पर भेंट वार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
1: धन्यवाद प्रवीण। आइए सुनते हैं विज्ञान समाचार। पुराने कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट और अंतरिक्ष का कचरा अब धरती के लिए नई चुनौती बन रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने एक हालिया रिसर्च में दावा किया है कि सूरज की बढ़ती सक्रियता यानी सोलर एक्टिविटी इस कचरे को तेजी से धरती की ओर धकेल रही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, जब सूरज अपने 11 साल के सौर चक्र के चरम पर होता है तो लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद वस्तुएं तेजी से अपनी ऊंचाई खोने लगती हैं। ये पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मलबे के गिरने की रफ्तार बीच एक सीधा और सटीक संबंध खोजा है। ये खोज आने वाले समय में सैटेलाइट ऑपरेटरों और स्पेस एजेंसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स हैंसन ने भविष्यवाणी की है कि साल 2026 पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म साल साबित होगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और एक बहुत शक्तिशाली अलनीनो का मिला जुला प्रभाव इस साल तापमान को नया रिकॉर्ड तोड़ने पर मजबूर कर देगा। अलनीनो एक प्राकृतिक मौसम की घटना है। ये प्रशांत महासागर में होता है। सामान्य दिनों में पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी ठंडा रहता है, लेकिन अलनीनो आने पर ये पानी बहुत गर्म हो जाता है। गर्म पानी फैलता है और हवाओं का रुख बदल जाता है। इससे पूरी दुनिया का मौसम प्रभावित होता है। कुछ जगहों पर भारी बारिश और बाढ़ आती है तो कुछ जगहों पर सूखा भी पड़ता है। खगोलविदों ने सौरमंडल से बाहर एक सुपर अर्थ की पहचान की है। इस एक्सोप्लैनेट की गर्मी वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। इस ग्रह का नाम LHS 3844b है और यहाँ दिन का तापमान 725 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये खोज ब्रह्मांड में मौजूद पथरीली दुनिया की विविधता को समझने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। ये ग्रह पृथ्वी से करीब 48.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी से लगभग 30% बड़ा है। पृथ्वी के विपरीत खोजे गए नए ग्रह LHS 3844b अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है। इस वजह से ग्रह के एक हिस्से में कभी न खत्म होने वाला भीषण दिन रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। इस ग्रह पर पृथ्वी जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और पानी की कमी है।
0: और अब बात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र की। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। यह उस शक्ति का उत्सव है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया है। यह एक ऐसा दिन है जो याद दिलाता है पोखरण की उस गुंज की जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया है। और आज हम AI और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तकनीक के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, कैसे देश की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, इनके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी जी। स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपको हम बताते चलें कि डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी जी लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। तो अनुपम जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस हर एक वर्ष क्यों मनाया जाता है?
2: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एक्चुअली 11 मई 1998 को पहला टेस्ट हुआ हम लोगों का, न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में। पोखरण में 11 मई 1998 को वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, पहला टेस्ट हुआ। उसी दिन एक और स्पेस क्राफ्ट हंसा 3 को लॉन्च किया गया। दो बहुत ही मेजर इफेक्ट एक ही दिन में हुए, साइमल्टेनियसली करीब 1.5 घंटे के अंतराल पे हुए। इसलिए उस दिवस को भारतीय क्रांति के

0: क्षेत्र में अगर आप इनोवेशंस की बात करें तो 11 मई का दिन हम लोगों के लिए एक आत्मनिर्भर भारत के दिन की शुरुआत किया था, क्योंकि एटम के क्षेत्र में, न्यूक्लियस के क्षेत्र में, तमाम रेडिएशन फिजिक्स के क्षेत्र में हम लोग उतना स्वावलंबी नहीं थे जितना होना चाहिए था। उसके बाद से फिर आज की डेट को आप जो है देख ही रहे हैं कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं हम लोग एक नई नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो 11 मई का दिन चुनने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारी जो अपनी आत्मनिर्भरता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वो अपने आप पे डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो
1: जी, यानी स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा,
0: स्वदेशी तकनीक को पूर्ण रूप से स्टेबल किया गया। और तभी से हर साल 11 मई को हम लोग जो है, इस साल का जो थीम है अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इनोवेशंस इन सोशल लाइफ, इनोवेशंस इन डेली लाइफ। तो इन इनोवेशंस का हमारे आम नागरिक पे क्या प्रभाव है, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने हर साल प्रौद्योगिकी दिवस को मनाने का निर्णय लिया
1: जी। तो इससे पोखरण परीक्षण के बाद रक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ खास हुआ है?
0: रक्षा के क्षेत्र में तो इस समय अगर बात करें तो एक बहुत 180 आउट ऑफ फेस चेंज हुआ है, इतना जबरदस्त चेंज है। जैसे मैं इस समय अगर जैसे आप AI का देख रहे हैं, समय हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात चल रहा है, तो रक्षा के क्षेत्र में हमारा जो DRDO है, उस जो DRDO ने अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्पेस के लिए और रक्षा के लिए कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भेजे जाने और वो एयरक्राफ्ट अनमैन्ड होंगे, मतलब आप अपनी लैब से बैठ करके कि कितना डिस्टेंस है, कितना स्पीड रखना है, कुछ सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आप उसको प्लान कर पाएंगे। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए और अनमैन्ड शिप्स के लिए, अनमैन्ड सबमरीन के लिए, तो इनके लिए जो हैकिंग की समस्या थी उसको भी दूर किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अनमैन्ड में एक हैकर्स का काम आ जाता, जो शत्रु देश है हमारे ऊपर है ना, उनका एक हैकिंग का खतरा। तो साइबर सिक्योरिटी को भी लेकर के साथ में चल रहे हैं कि हैकर्स जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा को न भेद पाए, इसके लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। उन AI टूल्स के लिए हो क्या रहा है कि अब जो सैनिक बहुत पहले से जॉब में है उनको भी नए नए AI टूल्स के माध्यम से सेमिनार्स वर्कशॉप के जरिए उनको जो सूचना भेजी जा रही है कि आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको सॉफ्टवेयर से जूझना है
1: जी।
0: तो इस ढंग से अगर आप तब के समय में और आज देखें तो हम लगभग लगभग विश्व के उन गिने चुने 5-6 देशों में आ गए हैं जो अपनी आत्मनिर्भरता 2047 तक पूरा कर लेंगे, सेना के क्षेत्र में भी, स्पेस के क्षेत्र में भी
1: जी।
0: चंद्रयान 4 का टारगेट है 2027 तक है ना, समुद्रयान के लिए भी बात हो रही। तो नए नित नए प्रयोग हो रहे हैं जिससे हम लोग जो है विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहे हैं
1: जी, समुद्र से लेकर के आकाश तक।
0: आकाश तक, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल समुद्र से लेकर के आकाश तक। और लक्ष्य चूंकि हमने लिया है 2047 का, तो समय भी है, क्योंकि जो है पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, नित नए आविष्कार को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस के भाव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक समावयता का सिद्धांत लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो है हम आत्मनिर्भर होने की दशा में हैं
1: जी। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, विज्ञान और तकनीक की भूमिका क्या देखते हैं?
0: तो विकसित भारत के लिए तो विज्ञान, आप अगर जैसे मैं सबसे पहले हेल्थ सेक्टर की बात करूं, हेल्थ सेक्टर में आज आप जो है अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं तो सीधे जो रोबोटिक्स सर्जरी की बात करते हैं, वो सीधे AI टूल्स की मदद से आपकी बॉडी में जहां पे समस्या है सीधे वहीं पे चोट करना चाहिए। बाकी टाइम ट्रायल नहीं था, पहले था कि आप जांच कराइए, ये कराइए, फिर आप डॉक्टर्स को नहीं समझ में आएगा, अपने सीनियर से बात करेंगे। लेकिन रोबोटिक्स क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वार कर रहा है जहां पे हमारी आवश्यकता। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उस प्रॉब्लमेस्टिक टिश्यूज को पकड़ पाने में कामयाब है, जो हेल्थ के बारे में हो गया। और अगर आप इस समय बहुत सारे इनोवेशंस की बात करें, एग्रीकल्चर में आइए आप, है ना, फसलें कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी है, मौसम के लिए तमाम सारी बातें, तो AI तो बहुत इस समय लार्ज स्केल पे यूज किया जा रहा है। AI टूल्स की मदद से हम लोग जो है काफी लाभान्वित कर रहे हैं, लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है लोगों को। तो इस हिसाब से तो AI वरदान भी साबित हो रहा है। कुछ इसके मिसयूज भी हैं, उसमें गवर्नमेंट ने जो है बोला कि नहीं नहीं हम इसके यूज पे ज्यादा ध्यान देंगे। मिसयूज करने वालों को पनिशमेंट का भी प्रावधान है, उनको दंड देने का भी अपना प्रावधान है।
1: अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव देखा?
0: अर्थव्यवस्था में अभी ये मालूम चल रहा है कि पूरे जो है विश्व में ऊर्जा की समस्या, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभी 2035 तक हमें 5 MMT मतलब मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। मोस्टली 50% व्हीकल्स हाइड्रोजन से चलेंगे, जिसमें गैस हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन के लिए हालांकि अभी टारगेट 2035 तक का है, 8 साल का समय है, लेकिन सोचना आज से शुरू किया, कार्यान्वयन 1 साल बाद से हो जाएगा। 67,000 करोड़ का जो है फंड भी अलॉट हो गया, क्योंकि व्हीकल्स, क्योंकि पूरे दुनिया में समस्या ऊर्जा

0: की है, आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी महीने भर से। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब अपनी ऊर्जा पे आत्मनिर्भरता आएगी हमारी, तब हमारी अर्थव्यवस्था और स्ट्रांग, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से ऊर्जा पे दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी है। वहां से ऑयल आता, वहां से सीएनजी आती है, वहां से लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है। तो इकोनॉमिक को बूम करने के लिए ये विज्ञान का क्षेत्र जो है, ये भी बहुत ही आने वाले समय में आप देखेंगे जब आपके पास हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हों
1: जी, और ये कहीं ना कहीं सतत
0: विकास की परंपरा को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हाइड्रोजन का यूज होगा तो पर्यावरण, शरीर पे असर, मन पे उसका जो असर पड़ रहा है ना, तो क्लाइमेट चेंज की दशा में, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
1: अगर और थोड़ी गहराई से जानना चाहें कि जलवायु परिवर्तन में कैसे हमें तकनीक मदद कर सकता है,
0: जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है कि पहली चीज तो वी हैव टू रिमूव, हमें जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस पे काम करना, वो जोन लेयर से जो हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही, जो हमारी हेल्थ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए, बड़ों के हेल्थ के लिए, बूढ़ों के हेल्थ के लिए, वो जैसे नुकसानदायक, उनके लिए क्या हुआ कि हमने एक जो है मार्स के, अब आप देखिए वहां तक पहुंच रहे हैं, तो मार्स पे क्या हुआ कि मार्स से हमने डील करना शुरू कर दिया। मार्स के एटमॉस्फेयर पे हमने देखा कि कौन से गैसेज वहां से रेडिएट होकर के अर्थ तक नहीं जाने, तो वहां पे हमने एक आर्टिफिशियल कंडक्टिंग मीडियम बना दिया। अब वो क्या कह रहा है कि जितनी हानिकारक गैसेज हैं उनको अर्थ पे नहीं आने दे रहा। अभी ये रेशियो 40-50 का है, धीरे धीरे 80-20 भी हो जाएगा, 90-10 हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हम लोगों के लिए जो विज्ञान का क्षेत्र है, वो आए दिन जो एक नई जिम्मेवारियों के साथ भी आया, क्योंकि कैसे हम उसको आम आदमी के लिए सुलभ बना पाए।
1: इस वर्ष विज्ञान दिवस मनाया गया था फरवरी में।
0: जी जी, 28 फरवरी। एक्चुअली मैं भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेनोमेना रमन इफेक्ट, उसकी खोज की, और उसके क्षेत्र में क्या हुआ कि इस साल का जो विज्ञान दिवस था उसमें महिलाओं की भूमिका को खास में इंडिकेट किया गया था। उसमें वोमेन एम्पावरमेंट की बात थी, महिला सशक्तिकरण की बात थी। क्यों? क्योंकि इस समय महिलाओं का योगदान कहीं पुरुषों से कम नहीं है विज्ञान के क्षेत्र में, चूंकि मैं तो विज्ञान के क्षेत्र ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि महिलाएं घर भी देख रही हैं, महिलाएं लैब भी देख रही हैं, प्रयोगशालाएं भी देख। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो विज्ञान के फंडामेंटल लॉज हैं, जैसे हम 8वीं क्लास में न्यूटन्स के लॉ, लेकिन एआई में क्या हुआ कि न्यूटन्स के लॉज का एप्लीकेशन, एआई इज प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड। आप जो जानते हैं, आप जो विज्ञान जानते हैं, आप जो लॉजिक गेट्स जानते हैं, जो बाइनरी कोड्स जानते हैं, उनको कैसे अप्लाई। तो महिलाओं के ऐसी भावना ना हो कि वो पीछे छूट जाएं, इसलिए एक टारगेट दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर महिलाओं को आगे लाने, और आगे आ भी रही हैं। तमाम ऐसी हैं महिलाएं, किरण शाह को आप देखिए, है ना, जो नंदिनी गंगुली को देखिए, वो सब स्पेस के लिए इतना बढ़िया, मार्स पे तो उनका पूरा का पूरा काम था, मार्स ऑर्बिटल मिशन या मोम, जिसको मॉम कहते हैं, इन्हीं के नाम पे उनको मॉम दिया गया, क्योंकि मदर्स के नाम पे उसका नाम जो मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन,
1: यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए।
0: जी, महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए, और उनके अंदर ऐसी भावना ना आए कि हम जो है विज्ञान के क्षेत्र में पीछे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को और बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष का जो थीम था।
1: और क्या देखते हैं, एआई यानी कृत्रिम मेधा और रोबोटिक्स वास्तव में कितना बदलाव लाएंगे हमारे आम नागरिक?
0: देखिए, आम नागरिक के जीवन में अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बदलाव की शुरुआत हो पाई है, अब कितना बदलाव लाएंगे इसका सटीक आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आशा है कि एआई और रोबोटिक्स आम आदमियों के व्यक्तिगत जीवन में बहुत हद तक चेंज लाएंगे। जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल हेल्थ सेक्टर का दिया, हेल्थ सेक्टर चाहे आम हो चाहे खास हो, स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, और जितना बेहतर सेवाओं का लाभ मिलेगा हमारा देश उतना आगे बढ़ेगा, जितने स्वस्थ नागरिक होंगे। अब 35 वर्ष से कम के जितने भी लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्पेशल एआई टूल्स बनाए हैं जितने भी एम्स हैं, जैसे जो इंटर्न्स जो हैं बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं रखते, उनके लिए स्पेशल एआई टूल्स है कि आप कैसे इनसे सीखिए और जो इलाज 3 दिन में हो रहा है उनकी दवाइयां की जो मॉर्फोलॉजी है उसको 1 दिन के अंदर आप समाप्त, ताकि भीड़ ना बढ़ने पाए हॉस्पिटल से। आज के समय में जाइए देखिए कितनी भीड़ है। तो समय लग रहा है, क्योंकि समय डॉक्टर्स उस रोग तक पहुंचने में उनको जो है प्रॉपर समय चाहिए, लेकिन अब का एआई के टूल्स में क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर में उन्होंने उस रोग का नाम डाला, उस रोग के सिम्टम्स उनको खटा खटा आ गए, अब 500 सिम्टम्स आ गए, 500 में से उनको अगर मालूम चला कि इसके अंदर 50 भी होल्ड हो रहा है तो एक प्रॉक्सिमिटी लेके चलते हैं कि हो सकता, तो अब जहां उनका कन्फ्यूजन 100% था अब वो 10% हो गया।
1: आम नागरिक के जीवन में तकनीक का सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते?
0: पर्सनली बात कर रहे हैं तो पे है ना, ये ऑनलाइन है, IRCTC की साइट है, अब लोग जो है गांव में भी ऑनलाइन बुक कर ले रहे हैं टिकटिंग। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि उनके अंदर जो है नई नई चीजों को सीखने का,

0: ऑनलाइन माध्यम जब से इंडिया में लॉन्च हुआ है, इससे क्या हुआ कि वो जो है रोजगार में भी इसका यूज करने लगे, है ना, आदान प्रदान भाषाओं में भी इसका यूज करने लगे। फोन आप जो देख रहे हैं ना, व्हाट्सएप के पॉजिटिव यूजेज आप देखिए, तो उसको भी लोग अब यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हमारी कहीं ना कहीं आगे बढ़ी रही है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कैसे विज्ञान और तकनीक हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम भी इस दिशा में एक कदम बढ़ाएं और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। डॉक्टर अनुपम, आपने देश में हो रही प्रगति और तकनीक से आ रही समृद्धि के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, विज्ञान जगत के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रवीण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: विज्ञान जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से एआई अंतरिक्ष तक भारत के बढ़ते तकनीकी कदम विषय पर भेंटवार्ता। भेंट करता थे प्रवीण कुमार। विज्ञान जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शामे अवध।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शामे अवध। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है कुछ सुकून के पल बिताने का। मधुर गीतों और खूबसूरत बातों के साथ मैं हूं आपकी साथी विभा। तो आइए सुहानी शाम की शुरुआत करते हैं कैसे गीत से, जिसमें प्यार की मासूमियत भी है और दिल की गहराई भी। ये गाना हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। किशोर कुमार की आवाज़ है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: वाह, क्या खूबसूरत एहसास इस गीत में। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में उतर जाते हैं। श्रोताओं, शाम का समय अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर आता है। कभी किसी अपने की मुस्कान याद आ जाती है, तो कभी बीते दिनों की कोई प्यारी बात। अब पेश है अगला गीत, जो ज़िंदगी की उलझनों के बीच भी मुस्कुराने का संदेश देता है। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, फिल्म अंदाज का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: जिंदगी

सच ही तो है, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है और हर पल को मुस्कुराकर जीना ही इसकी असली खूबसूरती है। दोस्तों, संगीत हमारे जीवन का वो साथी है जो हर मौसम हर एहसास में हमारे साथ चलता है, कभी हंसाता है, कभी भावुक कर देता है और कभी नई ऊर्जा से भर देता है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ अब समय है आज के अंतिम गीत का। ये गीत रिश्तों की मिठास और अपनापन अपने सुरों में समेटे हुए है, तो आइए सुनते हैं आंधी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

और इसी मधुर गीत के साथ आप मुझे दीजिए अनुमति। उम्मीद है शाम अवध का ये छोटा सा सफर आपको पसंद आया होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक मोरल की वार्ता। विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य।

0: सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक वार्ता आपको सुनवाते हैं, जिसका विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक मोरल।
1: सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के साथ बताना चाहूंगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम मशीनों को इस प्रकार सिखाते हैं या विकसित करते हैं कि वो मनुष्यों की तरह सोच सकें, मनुष्यों की तरह तर्क कर सकें, मनुष्यों की तरह निर्णय लेने की भी क्षमता कर सकें। जैसा कि आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व 1956 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था। उस समय यह शब्द केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा थी, लेकिन आज के समय में यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आज AI इतनी विकसित हो चुकी है कि वह भाषा समझ सकती है, चित्र बना सकती है, संगीत तैयार कर सकती है और साहित्य लेखन का भी कार्य कर सकती है। क्योंकि आज के समय में हमारे सामने अनेक प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट्स, भाषा अनुवादक, रोबोटिक्स, अपने आप चलने वाले वाहन, डिजिटल शिक्षा प्रणाली, इस तरीके के और भी विभिन्न माध्यम हमारे सामने हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, दिन प्रतिदिन की चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी की सभी AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 15 trillion dollars का योगदान दे सकती है। तो आने वाले समय की विशेषज्ञों की इस बात को ध्यान रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना अब जिंदगी थोड़ा मुश्किल तो होगी। लेकिन हम बात यदि हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में करें तो हिंदी साहित्य का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि कोई भी साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होता है और हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का दर्पण है। तो हिंदी साहित्य ने सदियों से समाज को दिशा देने का कार्य किया है, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अनेक महान साहित्यकारों की छवि उभरती है। जैसा मुंशी प्रेमचंद जी ने गरीबों और किसानों की समस्याओं को उजागर किया, तो वहीं महादेवी वर्मा जी ने संवेदना और नारी की चेतना को स्वर दिया। इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्रभक्ति और वीरता का संदेश दिया, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन दर्शन को सरल शब्दों में हमारे सामने रखा और वह बड़े अच्छे से समझाया। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने स्वतंत्र चेतना और मानवता की बात की, तो कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को आध्यात्मिक और नैतिकता की दिशा प्रदान की। इस प्रकार बहुत सारे हमारे महान साहित्यकारों ने अपने आप में बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी भावनाओं को हमारे समक्ष रखा। लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये तकनीक और हिंदी साहित्य का क्या संबंध है। यदि हम इतिहास को देखें तो हमें लगता है कि तकनीक और इतिहास का संबंध नया नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने छापा खाने का आविष्कार हुआ था तब पुस्तकों का इतने बड़े स्तर पर प्रकाशन संभव हुआ और रेडियो और टेलीविजन ने कविता और कहानियों को घर घर तक पहुंचाया। इसी इंटरनेट के माध्यम से हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच दिया, तो आज उसी AI तकनीक ने विकास की अगली कड़ी है जिसको हमें अपनाना ही होगा। अब प्रश्न यह नहीं है कि AI साहित्य में आएगी कि या नहीं आएगी, बल्कि प्रश्न यह है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक प्रभावों को हम देखें तो ये हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर प्रसार तो करने के साथ साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं उसने निभाई हैं। आज कोई भी व्यक्ति हिंदी की कविता या कहानी का अनुवाद कुछ ही सेकंड में कई भाषाओं में कर सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को यूज करते हुए। इसी से हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है। डिजिटल पुस्तकालय और ई पुस्तकों के माध्यम से आज हमारे पास हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्च पर हमें पाठकों की रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं और उनकी हम ऑडियो बुक्स के रूप में भी साहित्य को लोगों तक पहुंचाया है। जो पढ़ नहीं सकते थे या पढ़ नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित हैं, वो लोग भी आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चीज़ों को सुन सकते हैं। शोध और अध्ययन

0: भी काफी सहायता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मिली है, क्योंकि पहले शोधकर्ताओं को पुस्तकालयों में महीनों एक सामग्री खोजनी पड़ती थी, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम कुछ ही क्षणों में हजारों लेखकों और पुस्तकों का विश्लेषण करके हमारे सामने रख सकती है। बहुत मुश्किल से मुश्किल कविताओं को अर्थ को समझाने में और व्याकरण को सुधारने में, उसके साथ साथ साहित्य के विश्लेषण करने में भी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करती है। नए लेखकों को अवसर प्रदान करती है, क्योंकि आज इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म हैं, उसके कारण गांवों में, शहरों में, कस्बों में छोटे छोटे लेखक अपनी रचनाएं भी दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। और जबकि ये पहले, क्योंकि कई बार पब्लिश करने में, प्रकाशन में बड़ी मुश्किलें आती थी, अब वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको अपने लेखन को बढ़ाने में, उस लेखन को दुनिया तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा में ही क्रांति की है। यदि बात की जाए तो स्मार्ट क्लासरूम में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीखने की मदद मिलती है और कठिन संरचनाओं को भी सरल भाषा में समझाना आसान हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इन सभी लाभों के, इन सभी सकारात्मक प्रभाव के बावजूद हम देखते हैं जो बनता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहित्यकार बन सकती है? यह प्रश्न आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कविता लिख सकती है, कहानी बना सकती है, यहाँ तक कि संगीत भी तैयार कर सकती है। और आप में से काफी श्रोताओं ने वो गाने सुने होंगे जिसके बारे में चर्चा रहती है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए हैं। लेकिन साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, साहित्य एक अनुभव से जन्म लेता है। क्योंकि जब एक कवि दुख लिखता है तो उसके पीछे उसके जीवन का अनुभव होता है, और जब कोई लेखक संघर्ष की कहानी लिखता है तो उसकी आत्मा की पीड़ा उसके पीछे होती है। तो मशीनों के पास ज्ञान तो हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहित्य की सहायक तो बन सकती है लेकिन वास्तविक साहित्यकार नहीं बन सकती। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चुनौतियां हैं उनको बड़ा ध्यान से देने की भी जरूरत है और उनको बड़े अच्छे तरीके से उपयोग करने की भी हमें जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों की सिर्फ यही है कि वो कहीं ना कहीं हमारी मानवीय संवेदनाओं को कमजोर ना कर दे। क्योंकि साहित्य केवल जानकारी नहीं देता बल्कि वे भावनाएं पैदा करता है। जैसा मैंने चर्चा की कि विभिन्न साहित्यकारों ने किस प्रकार से विभिन्न एस्पेक्ट्स को हमारे सामने रखा, उनमें उनकी भावनाएं थी, उनमें उनके विचार थे। क्योंकि मशीनें शब्दों की तो बता सकती हैं लेकिन मनुष्य के दुख, प्रेम, संघर्ष, उन सबको महसूस नहीं कर सकती। इसीलिए भविष्य की चीजों को देखते हुए हमारे पास आज इस बात की जरूर आवश्यकता है कि हम तकनीक को अपनाएं लेकिन अपनी भाषा, संस्कृति की और साहित्यिक मूल्यों को कभी न भूलें। और हम ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो आधुनिक विज्ञान में भी आगे हो, अपनी मातृभाषा और साहित्य में भी जुड़ी रहे। इसीलिए हमें AI का विरोध या इसको अवरोध के अवरोधक के रूप में नहीं लेना चाहिए, हमें उसका सही से प्रयोग सीखना है, जिससे कि हम आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी आने वाला युग है, आधुनिक शक्ति का युग हो, हमें ऐसी पीढ़ी अभी तैयार करनी होगी जो सभी तरीके से आगे रहे।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य, इस विषय पर अभी आप ये विशेष वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर अशोक मोरल। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: हिंदी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के गायक कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के गाए भजन। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म लूटमार का ये गीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गाइड का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीतकार हैं SD बर्मन और गीतकार हैं शैलेंद्र।

0: और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, इस समय रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता

0: शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि वीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे

0: बेलूर से महबूबनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात

0: किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's

0: अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज एसआईआर के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड आईएएस अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के आईएएस अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मधु किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असम्बली इंतखाबात में टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकानी असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के दो दो अरकानी असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निज़ाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहरे हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की

पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की पांच पांच पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए तीन केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधही के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेड चुरु गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेड चुरु गांव के नज़दीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहरीन और दीगर सिविलियन माहरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है, और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुज़ाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुकताचीनी की है और अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमज़ोर कर रहा है। आब नाए हुरमुज और उसके अतराफ ताज़ा वाकयात के पस मंज़र में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेज के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वें मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड

मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्ता खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुज़श्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असम्बली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसी के IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निज़ाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं।

दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करी, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि

0: में कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज
1: जी
0: का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
2: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
3: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
4: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहाँ पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
3: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
4: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
3: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी

0: ICCR
1: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
0: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाओ में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं

0: बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग देशों के दोस्त थे, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
2: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
2: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवांत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीश लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा। फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
6: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम

0: इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
2: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
3: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
2: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
3: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
2: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
4: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
3: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
3: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
5: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए

0: देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं। स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है। एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है, तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहां था, मैं यहां हूं और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Hum. आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, आपको बता दें कल रात 10 बजे से आप सुनेंगे रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन

0: मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from 2 assembly constituencies, will have to vacate 1 seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala.